FM 100.2 MHz पर हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रही हैं। श्रोताओं, आज बुधवार है। शक संवत 1948 के आश्विन मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 7 अक्टूबर सन 2026 प्रातः के 5:58 और 20 सेकंड हुए हैं। हम अपना आज का प्रसारण आरंभ कर रहे हैं।

0: ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। 6 बजने वाले हैं श्रोताओं। आकाशवाणी दिल्ली से अब हम आपके लिए हिंदी में समाचार रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला आज भारत मंडपम में दूसरे भारत EFTA समृद्धि शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। 10 खरब डॉलर की निवेश साझेदारी और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करना विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में TEPA की प्रगति की समीक्षा, नए निवेश की घोषणाएं, उद्योग और सरकार के बीच सहयोग मजबूत करने तथा प्रमुख क्षेत्रों में अवसर तलाशने पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति गी पाहमला 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। भारत और EFTA के बीच TEPA पिछले वर्ष 1 अक्टूबर से लागू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से बीजेपी के वरिष्ठ नेता वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले कल सेवा तीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन GSMA के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। भारत मोबाइल कांग्रेस आज से 10 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी सरकार के प्रमुख के रूप में आज 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम मिलती है।
2: ये जो निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
1: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे विपक्ष की ओर से मार्च का कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई। पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई। पुलिस ने कानून के तहत करीब 260 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें 10 सांसद भी शामिल हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अपने समर्थकों के साथ बिना अनुमति आकाशवाणी भवन परिसर में पहुंचे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कांग्रेस नेताओं और अन्य प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया और हिरासत में लिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी राजबीर घुम्मन और उनके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित पैसे के लेन देन और भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की है। नई सूची में कुल 375 तरह के काम शामिल हैं। इन्हें 4 मुख्य

0: हिस्सों में बांटा गया है। सरकार के अनुसार इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के साथ साथ लंबे समय तक काम आने वाला ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार करना, पानी की सुरक्षा बढ़ाना और आजीविका के अवसर मजबूत करना है। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले टी20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 102 रन बनाए। शानदार शतक के लिए श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का अगला मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में भी तेज हवाएं चलने की संभावना है और आंशिक तौर पर बादल छा सकते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसे ही मौसम की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। 6:05 हुए हैं। विविध भारती के मुंबई केंद्र से अब हम रिले करेंगे आपके लिए भक्ति रचनाओं का कार्यक्रम वंदनवार।

चिंतन। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। ये विचार स्वामी विवेकानंद का है। ये था अब आज का चिंतन और अब भक्ति संगीत।

FM 107.2 MHz पर ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। श्रोतो, इस समय सुबह की 6:30 हुई हैं। झरोखा के अंतर्गत आइए, अब हम आपको अपने अब से लेकर रात तक के प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। अब से बस थोड़ी ही देर में मुंबई केंद्र से रिले करेंगे हम आपके लिए। श्री रामचरित मानस गान प्रातः 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम होगा। आजकल इस कार्यक्रम में आप श्रृंखला सुन रहे हैं शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आज इसकी 7वीं कड़ी होगी। कलाकार हैं गायक और संगीतकार शेखर सेन। कुछ भूले भिसले गीत आप सुनेंगे प्रातः 7 बजे। पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हम है राही प्यार के 7:30 पर मुंबई केंद्र से ही हम रिले करेंगे। आकाशवाणी दिल्ली से आपके लिए हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे प्रातः 8 बजे, प्रातः 10 बजे, दोपहर 12 बजे, दोपहर 2:15 पर, शाम 5 बजे, शाम 6 बजे, रात 8:45 पर और फिर रात 11 बजे भी आकाशवाणी दिल्ली से हम आपके लिए हिंदी में समाचार रिले करेंगे। प्रातः 8:15 पर आप सुना करते हैं कार्यक्रम त्रिवेणी। ये हम विविध भारती के अपने मुंबई केंद्र से रिले करेंगे। वहीं से नई फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रलोक प्रातः 8:30 पर। हमारे केंद्र से आप सुन सकते हैं प्रोग्राम आज का अखबार प्रातः 9:30 पर। 10:05 पर आज होगा प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। आज का विषय है दृढ़ निश्चय सफलता का मूल मंत्र। एक प्रायोजित कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे हम प्रातः 11 बजे, हमारी बेड़ियां। प्रातः 11:30 पर आज संजीवनी कार्यक्रम होगा। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में रोशन योग और आयुर्वेद के संबंध में योगाचार्य रोशन लाल के साथ की भेंटवार्ता सुनवाई जाएगी।

विविध भारती के मुंबई केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम यादों की महफिल आप सुन सकते हैं दोपहर 12:05 पर। हमारे यहाँ से प्रादेशिक हिंदी समाचार आप सुन सकते हैं दोपहर 1:05 पर और फिर शाम 6:10 पर भी। प्रादेशिक पंजाबी समाचार आपके लिए अपने जालंधर केंद्र से हम रिले करेंगे पहले दोपहर 1:10 और फिर शाम 6:20 पर। हमारे केंद्र से फिल्म संगीत सुन सकते हैं दोपहर 1:15 और फिर शाम 5:05 पर भी। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुरीला सफर दोपहर 1:30 पर विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले किया जाएगा। वहीं से दोपहर 2 बजे होगा कार्यक्रम त्रिवेणी और मुंबई केंद्र से ही दोपहर 2:30 पर सुनेंगे सदाबहार नगमे। दोपहर 3 बजे होगा कार्यक्रम सखी सहेली। शाम 4 बजे आप सुना करते हैं कार्यक्रम पिटारा। आज इसमें आज के मेहमान सिलसिले के तहत फिल्म लेखक और निर्देशक डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी के साथ की भेंट वार्ता सुनवाएंगे आपको। हमारे यहाँ से प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे शाम 5:20 पर और NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रसारित करेंगे शाम 5:30 पर।

सुन सकते हैं रात 10:32 पर। विविध भारती के मुंबई केंद्र से हम रिले करेंगे सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जयमाला शाम 7 बजे। हमारे केंद्र से प्रादेशिक मुख्य समाचार सुन सकते हैं आप शाम 7:45 पर और फिर रात 10:30 पर भी। रात 8 बजे मुंबई केंद्र से हवा महल कार्यक्रम में आप सुनेंगे झलकी अक्कल के नाथ। प्रायोजित कार्यक्रम फार्म टू सिटी आप सुन सकते हैं रात 8:15 पर। रात 9:30 पर होगा कार्यक्रम आज के फनकार और फनकार हैं बेगम अख्तर। रात श्रोताओं 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम छाए गीत। ये था विवरण हमारे अब से लेकर रात तक के प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों का। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान।

श्रोताओं, हमारे केंद्र से आपके लिए पंजाबी गीत प्रसारित किए जाएंगे शाम 6:30 पर और फिर 7:47 पर। पंजाबी गीतों का हमारा कार्यक्रम होता है सुर सांझ। ये

श्री राम तथा रावण की सेनाएं एक दूसरे से जूझ रही हैं। एक ओर श्री राम की जय जयकार तो दूसरी ओर रावण का जय घोष गूंज रहा है। वानर और रीच महाबली राक्षसों को मारते काटते धराशायी करके उनके उदर चीर देते हैं, फिर उन्हीं के मुंडों को अस्त्र के रूप में फेंककर औरों के कपाल फोड़ देते हैं। असुरों को कुचलते मसलते वानर मेघ के समान गर्जन करते हैं, जिससे रावण के सैनिक विचलित हो जाते हैं। अपनी सेना को त्रस्त और भयभीत देखकर रावण उनका उत्साह बढ़ाने के लिए भयंकर हुंकार करता आगे आगे दौड़ता है। वानरों द्वारा फेंके गए वज्र के समान पत्थर उसके शरीर से टकराकर चूर चूर हो जाते हैं। भीषण क्रोध से कांपते हुए उसने जब वानर और भालू सेना का संहार करना प्रारंभ किया तो वे त्राही त्राही कर उठे। पूरी सेना श्री राम की शरण लेने को जैसे भाग खड़ी हुई, लेकिन सभी दिशाएं रावण के भांति भांति के अस्त्रों से आच्छादित हैं। वानर भालू भागकर जाएं भी तो किधर, लगता है वे चारों ओर से घिर गए हैं।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन, आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता की अगली कड़ी के साथ हम फिर उपस्थित हैं और शेखर दादा हमारे सामने बैठे हैं। शेखर दादा, हमें बताइए कि आज की इस कड़ी में कौन सी भक्ति रचना को आप शामिल करेंगे और किन गायिका को आप इसमें शामिल करेंगे?
2: दरअसल मैं आपको उस कालखंड में ले जाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि श्रोता इस बात को समझें कि एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद 1947 में जब हमें स्वाधीनता मिली और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सामने आया
1: जी।
2: तो उसी कालखंड में लोगों के उत्साह के साथ साथ एक और बड़ी क्रांतिकारी घटना हुई थी
1: जी जी।
2: और वो घटना ये हुई थी कि एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था मीरा, और उस मीरा फिल्म में अभिनय भी किया और गाया भी एक दक्षिण की गायिका ने, जिसको उस फिल्म के पहले उत्तर भारत में कोई नहीं जानता था
1: जी जी।
2: और वो थी MS सुब्बुलक्ष्मी जी, जिनको बाद में हम सब के लिए बड़े गर्व का विषय है
1: जी।
2: कि हम सब भारतीय कलाकारों में जिन्हें सबसे पहला भारत रत्न का पुरस्कार मिला वो थी श्रीमती MS सुब्बुलक्ष्मी
1: जी जी।
2: तो मेरे लिए तो वो माँ सरस्वती का ही एक अंश है, क्योंकि जितना सुंदर उन्होंने
1: जी जी।
2: गाया है, और श्रोताओं को शायद पता भी नहीं होगा कि जीवन के अधिकांश, जब वो उनको एक बार बहुत उनका नाम हो गया, सब कुछ हो गया, तो फिर उन्होंने पैसे लेने बंद कर दिए
1: जी।
2: पर इससे ये अनुमान मत लगाइए कि वो निशुल्क कार्यक्रम करती थी। उनके कार्यक्रमों के कुछ नियम थे। वो कहती थी कि आप एक काम करिए, आप 2 लाख रुपए कैंसर एसोसिएशन में दान दीजिए और उसकी रसीद मुझे दिखा दीजिए, मैं आपके कार्यक्रम में आकर गाकर जाऊंगी।
1: बहुत बड़ी बात थी।
2: तो इस तरह की चीजें किसी संस्था के लिए या कैंसर पेशेंट्स के लिए, बहुत तरह की चीजें किसी वृद्धाश्रम के लिए। तो उन्होंने अपने जीवन का जो लक्ष्य बनाया था वो ये था कि एक कलाकार के नाते मैं अधिक से अधिक उपयोगी कैसे हूं इस समाज के लिए। समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया, मुझे नाम भी दिया, मुझे यश भी दिया, स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया, तो मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि मैं समाज को कुछ लौटाऊं
1: जी, जी।
2: तो ये एक बहुत अद्भुत चीज है। और जिस तरह के सहस्त्र नाम और जिस तरह के स्तोत्र और मंत्र आज हमें MS सुब्बुलक्ष्मी जी के मिलते हैं
1: जी।
2: लेकिन उस कालखंड की बात मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं, 1947, और ये फिल्म का नाम था मीरा। नायिका भी थी और गायिका भी थी श्रीमती MS सुब्बुलक्ष्मी, और उनका ये प्रसिद्ध भजन मैं चाहता हूं कि हमारे सभी श्रोता सुने। मोरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई,

0: मीरा फिल्म की ये भक्ति रचना थी और MS सुब्बलक्ष्मी के स्वर में हम सुन रहे थे। शेखर दादा, हमें लगता है कि हम सबका बचपन बड़ा हुआ है इस भजन को सुनकर, और इस भजन को सुनकर जो संगीत के विद्यार्थी हैं, शास्त्रीय संगीत के विद्यार्थी चाहे सुगम संगीत के विद्यार्थी, इन्होंने अपने गायन को समृद्ध किया है और शायद इसीलिए उन्हें संगीत की तपस्विनी भी कहा जाता था। MS सुब्बलक्ष्मी की जो स्वर साधना थी बड़ी समृद्ध थी, तो इनके गायन सफर की सबसे क्या खास बात आपको नजर आती है?
1: जो सबसे मुख्य बात है वो ये था कि जो भी अच्छे गायक हुए और जिन्होंने भी भक्ति संगीत पर बहुत ज्यादा जोर रखा, वो धीरे धीरे उनका स्वभाव, उनका व्यक्तित्व जो है वो अपने आप आध्यात्म की ओर उसका रुझान होने लगा।
0: जी जी,
1: तो ये एक चीज थी। और दूसरा जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आदरणीय MS सुब्बलक्ष्मी जी का अगर आप रेपर्टायर सुने भजनों का, तो उनके भजन, जबकि वो कर्नाटक संगीत की विदुषी थी, कर्नाटक संगीत की शास्त्रीय गायिका थी, मूलतः वो उत्तर भारतीय संगीत की गायिका नहीं थी, परंतु अगर आप उनका रेपर्टायर सुनेंगे तो आप देखेंगे कि जब उन्होंने हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के सब राग गाए, अभी जैसे एक राग है बागेश्री, बागेश्री में आपको बिरले भजन सुनाई देंगे, बहुत कम लोग गाते हैं। आपको अधिकांश भजन हमारे यहाँ सुनाई देंगे खमाज में, भैरवी में, पीलू में, काफी में, ये सब राग है। पर भी जैसे ये राग है बागेश्री,

0: तो ये राग बागेश्री है और इसमें मैं चाहता हूँ कि एम एस सुब्बुलक्ष्मी जी की एक बहुत ही सुंदर रचना है, निसदिन बरसत नैन हमार।
1: क्या बात
0: आप सुनिए, एक महान गायिका को हम क्यों महान कहते हैं, ये भजन सुनकर आपको उसका अनुमान होगा
1: जी।

0: एमएस सुब्बलक्ष्मी और राधा विश्वनाथन के स्वर में ये भक्ति रचना।
1: शेखर दादा, आपने सुनवाई हमारे श्रोताओं को। इसके बाद हम चाहते हैं आप कुछ गाकर प्रस्तुत करें।
2: मैं चाहता हूं कि एक पुरानी रचना है, शास्त्रीय संगीत की है
1: जी,
2: पर जब भी मैं गाता हूं तो मुझे लगता है कि ये शास्त्रीय संगीत कम है और भजन अधिक है
1: जी।
2: पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की ये रचना है
1: जी।

0: वाह शेखर दादा, आपने बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर दिया और हम सब सुधबुध खोए आपको सुनते रहे, आपके स्वर को। और एक साधक का स्वर हम सबकी आत्मा तक बैठ करती है, तो आपको हम धन्यवाद कह रहे हैं इस रचना की प्रस्तुति के लिए। अब आज का समय यहीं समाप्त हो रहा है, तो हम लेते हैं श्रोताओं से अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: शताब्दी की भक्ति रचनाएं, ये श्रृंखला आप सुन रहे हैं इन दिनों आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की 7वीं कड़ी आज आपने सुनी। तबला संगत आशीष विश्वास, तकनीकी सहायक HR पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अपना कहना है। एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

0: ये
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस, आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
6: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
7: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
6: पहला, असुरक्षित यौन संबंध यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है, HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
7: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
6: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
8: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: चराग है जलाए जा बुझाए जा, हम तेरे चराग है जलाए जा बुझाए जा।
1: उषा खन्ना का संगीतबद्ध किया एक और ये गीत सुनिए, भरत व्यास के बोल हैं, गीत गाया है लता मंगेशकर ने, फिल्म का नाम हम हिंदुस्तानी।

देर घूम घट न छेड़ जट जाने जो देर तू मुहे भैर देर निरखट समाज तो है आए ना लाज तू है दगाबाज धक धक धक धक धक धड़के जिया थर थर थर थर थर कांप के जिया पर थक सकिया हट जा हट जा हट जा

गोरी गोरी गोरी गोरी कमल किशोरी चंचल चकोरी एक गाँव की छोरी मैं हूँ नवल नवेली अलबेली नार समझाए सके तो है बार बार मन छुई मुई करू कौन जतन छूते ही हाथ सुन लाए बद मेरा तन मुरारी मत छू मत छू मत छू।

0: कहिए
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
1: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022 40

0: 0024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
1: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आइए अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले के स्वरों में दिल देके देखो इस फिल्म का गीत। शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की, सुरों में ढाला है उषा खन्ना ने।
2: Rock, rock, rock, baby, rock.

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
2: नहीं यार, मैं नहीं लाना।
1: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
2: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनु HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
3: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
4: सृजन की बातें साझा करेंगे, सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
5: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है। दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है। वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
4: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
5: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में एग्जैक्टली आफ्टर

0: Yes, I'm making the film, and the success of the film is probably, I think, was destined or decided by him. तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और इस समय वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में। आइए अब आपको सुनवाते हैं मदर इंडिया फिल्म का गीत शमशाद बेगम और साथियों की आवाजों में शकील बदर।

ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में। आइए अब आपको सुनवाते हैं मदर इंडिया फिल्म का गीत शमशाद बेगम और साथियों की आवाजों में। शकील बदायूनी की रचना है, नौशाद का संगीत।

लाजवंती फिल्म का गीत अब सुनिए गीता दत्त और साथियों की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, धुन बनाई है सचिन देव बर्मन ने।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, हाँ जी। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
1: करो वादा,
3: हाँ जी वादा।
4: विविध भारती आप सुन सकते हैं एलेक्सा के जरिए भी। बस आपको ये कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती लाइव, और आप फिर सुन सकते हैं विविध भारती। आइए अब आपको सुनवाते हैं मालिक, इस फिल्म का गीत सुरैया और शमशाद बेगम की आवाजों में। शकील बदायूनी ने इसे लिखा है, गुलाम मोहम्मद का संगीत।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने करते
0: दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

0: और इसी के साथ आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
2: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स

0: संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
1: पहला, असुरक्षित यौन संबंध यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
0: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाँच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
1: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV/AIDS फ्री बनाएं। HIV/AIDS की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ AIDS कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: लीजिए अब पेश है दो मतवाले फिल्म का गीत, मोहम्मद अजीज कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में, संतोष आनंद की रचना।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: दुल्हन एक रात की इस फिल्म से, इसे लिखा है राजा मेहदी अली खान ने, मदन मोहन का संगीत।

दादी माँ। इस फिल्म का गीत अब सुनिए आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में। शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की, तर्ज बनाई रोशन ने।

0: ஆசியா.
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

बहारें फिर भी आएंगी। इस फिल्म का गीत अब सुनिए मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। अजीज कश्मीरी ने इसे लिखा है, ओपी नैयर का संगीत।

0: लेकर तेरा लाल दुपट्टा ले लूंगा मैं फांसी।
1: मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के इस गीत के साथ ही आज का हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को, नमस्कार।
2: हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। आपको बता दें श्रोताओं, आज एफएम लाइफलाइन के लिए दोपहर 3:30 से लेकर 4 तक आपके टेलीफोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग हम करेंगे। आज का विषय है दिल से जुड़ी समस्याएं, दिल से जुड़े रोग। आपके सवालों के जवाब देंगे प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी पीजीआई चंडीगढ़ प्रोफेसर यशपाल शर्मा। टेलीफोन नंबर हैं 2660615, 2660617 और 2660619। अब 8 वाले हैं। आकाशवाणी दिल्ली से हम आपके लिए हिंदी में समाचार रिले करेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत 375 अनुमत कार्यों को अधिसूचित किया। पहले के 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। कहा, प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और भारत ने पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी ने आज ही के दिन 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बने। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का 25 वर्ष का कार्यकाल भारतीय लोकतंत्र की ताकत का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि एक साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति ने स्वयं को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया और लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा जनसेवा, राष्ट्र सेवा और राष्ट्र को सर्वोपरि रखने की भावना के साथ काम किया है। उन्होंने मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के 10 प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख किया। पहला बिंदु गुजरात से पूरे देश तक विकास के दृष्टिकोण का विस्तार है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने गुजरात में अपने कार्यक्रमों और नीतियों के माध्यम से कई बदलाव किए, जिसके लिए उन्हें दुनिया भर में सम्मान मिला।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
0: जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। आज हम अपनी विशेष श्रृंखला में बात करेंगे कि इस दृष्टिकोण को गोवा के सागरमाला कार्यक्रम ने किस तरह साकार किया है।
2: देश की 11,000 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा और करीब 14,500 किलोमीटर संभावित नौगम्य जलमार्गों का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए सरकार ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सागरमाला कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देना है। इसके तहत बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, बेहतर समुद्री संपर्क, तटीय नौवहन को बढ़ावा देने और तटीय समुदायों को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश की समुद्री क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर आर्थिक विकास को गति देने पर जोर दिया है।
3: भारत सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से सागरमाला परियोजना के तहत पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है, पोर्ट कनेक्टिविटी को भी बढ़ाया है।
2: समुद्र और जलमार्ग गोवा की पहचान का अभिन्न हिस्सा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सागरमाला कार्यक्रम के तहत राज्य में बंदरगाहों और जलमार्गों के विकास के साथ साथ क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार काम किया जा रहा है। गोवा के कैप्टन पोर्ट्स ऑक्टोवियो रोड्रिग्स ने आकाशवाणी को बताया कि सागरमाला के तहत राज्य में किस प्रकार की पहलें की जा रही हैं।
4: इट इज गोइंग टू चेंज मेनी जेटीज। नाउ सी अनदर 10 जेटीज वी आर गोइंग टू गेट ऑलरेडी अप्रूव्ड और ओनली थिंग नाउ वी हैव नीड टू इंस्टॉल इट। दे आर ऑल फ्लोटिंग जेटीज व्हिच विल टेक केयर ऑफ द टूरिज्म एक्टिविटीज ओवर देयर, पैसेंजर्स, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, बिकॉज़ वी आर गोइंग टू आल्सो कम अप विद द ऑटो मेट्रो।
2: गोवा में अब तक सागरमाला के तहत 10 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिन पर करीब 841 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। वहीं करीब 98 करोड़ रुपए की 2 अन्य परियोजनाएं फिलहाल कार्यान्वयन के चरण में हैं। इन परियोजनाओं से गोवा के बंदरगाहों और जलमार्गों का आधुनिकीकरण हो रहा है और उनकी क्षमता का बेहतर इस्तेमाल संभव हो रहा है। साथ ही क्रूज पर्यटन और तटीय अर्थव्यवस्था के विस्तार की नई संभावनाएं भी खुल रही हैं। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के अंतर्गत अनुमति

0: कार्यों की सूची अधिसूचित कर दी है। नए ग्रामीण कार्य ढांचे के अंतर्गत कुल 375 कार्यों को अनुमत किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि नई सूची में पहले के ढांचे के तहत शामिल 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट।
1: इन कार्यों को चार विषयगत स्तंभों जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचा तथा अत्यधिक मौसम की घटनाओं और आपदा तैयारी के लिए विशेष कार्य के तहत पुनर्गठित किया गया है। नया ढांचा सिर्फ परिसंपत्तियों के पारंपरिक प्रकारों की सूची तक सीमित रहने के बजाय मजदूरी रोजगार को टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण और विकास परिणामों के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। प्रत्येक कार्य की शुरुआत विकसित ग्राम पंचायत योजना के तहत जमीनी स्तर पर होने वाली विकेंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से होगी, जिसे ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और इसे विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा स्टैक के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले कल सेवा तीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत में ये विचार प्रकट किए।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण आवश्यक है। उन्होंने प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को किफायती और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी ने अल्पविकसित और विकासशील देशों और बढ़ते डिजिटल विभाजन को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी को अंतिम छोर तक पहुंचाने पर भी जोर दिया। डिजिटल और साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौतियों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समस्या के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों की आवश्यकता है। जीएसएमए बोर्ड के सदस्यों ने डिजिटल और मोबाइल कनेक्टिविटी में वैश्विक नेता के रूप में भारत के उदय पर चर्चा की। बैठक में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मा सानी चंद्रशेखर, जीएसएमए बोर्ड के सदस्य और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 10वां संस्करण आज नई दिल्ली के यशोभूमि में शुरू होगा। इस वर्ष इसका विषय है सीमा रहित विस्तार। सम्मेलन में दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रगति को दर्शाया जाएगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 1.5 लाख से अधिक लोग, 500 से अधिक प्रदर्शक और साझेदार, 600 से अधिक स्टार्टअप और 900 से ज्यादा विशेषज्ञ शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसका उद्घाटन करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: जालिम लोशन।
2: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण बढ़ती मुद्रास्फीति के दबाव को देखते हुए लगभग 3.5 साल बाद ब्याज दरों में वृद्धि हो सकती है। वर्तमान में RBI की नीतिगत रेपो दर 5.25% है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन के हिमाचल प्रदेश दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज अटल टनल रोहतांग का दौरा करेंगी।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज अटल टनल रोहतांग का दौरा करने का कार्यक्रम है। वे सुरंग के उत्तर और दक्षिण दोनों पोर्टल पर जाएंगी और इस ऐतिहासिक टनल के बारे में सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों से जानकारी हासिल करेंगी। दोपहर बाद राष्ट्रपति मुर्मू मनाली के प्रसिद्ध हिडिम्बा मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर मनाली, अटल टनल रोहतांग और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, मनाली।
3: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब प्रत्येक व्यक्ति की आवाज सुनी जाए। श्री बिरला ने पोरवोरिम में गोवा विधानसभा परिसर के रजत जयंती समारोह में ये बात कही। एक रिपोर्ट।
5: गोवा ने अपनी विरासत और प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए देश की आर्थिक प्रगति के साथ कदम मिलाया है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सहमति और असहमति दोनों लोकतंत्र का

0: हिस्सा है। आजादी के बाद से भारत का लोकतंत्र इसलिए मजबूत हुआ है क्योंकि लोकतांत्रिक संस्थाओं ने विभिन्न विचारों, मतों और दृष्टिकोणों को साथ लाने का काम किया है। श्री बिरला ने कहा कि देश और विदेश में आपदा के समय भारत के लोग हमेशा एकजुट होकर खड़े रहे हैं। उन्होंने युवाओं से लोकतांत्रिक संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी की अपील की। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक कल विरोध मार्च निकाला। हालांकि निर्वाचन आयोग की ओर जाते समय सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें आकाशवाणी भवन के पास रोक दिया। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य दलों के विपक्षी सांसदों ने संसद मार्ग पर धरना दिया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रही है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों ने सांसदों ने संसद मार्ग पर धरना दिया। बाद में शाम को SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आकाशवाणी भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे विपक्ष की ओर से मार्च का कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई थी। पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई है। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में आज बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 क्रिकेट मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। कल रात लखनऊ में खेले गए मैच में भारत की ओर से नमन धीर ने 3 और अक्षर पटेल तथा कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का दूसरा मैच शुक्रवार को रांची में खेला जाएगा। नोवाक जोकोविच ने पेचिंग में एलेक्स डी मिनोर के चोट के कारण फाइनल से हटने के बाद 7वीं बार चाइना ओपन का खिताब जीत लिया है। ये जोकोविच के करियर का 102वां टूर स्तर का खिताब है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
2: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में जनसेवा के 25 साल पूरे होने को अखबारों ने मुखपृष्ठ पर दिया है। उपलब्धि शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, मोदी का अनूठा रिकॉर्ड, लगातार सत्ता में 25 साल पूरे, कोई चुनाव नहीं हारे। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने दैनिक जागरण में लिखा है, असाधारण जनसेवक हैं प्रधानमंत्री मोदी। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अमर उजाला में लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदलाव को संभव बनाया है, उन्होंने अपने कामों से यह दिखाया कि सार्वजनिक जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे हल न किया जा सके। छोटे उद्योगों के लिए केंद्र सरकार ने खोला खजाना, हिंदुस्तान की सुर्खी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए के SME विकास कोष को दी मंजूरी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कैंप ऑफिस समेत 8 स्थानों पर CBI के छापे को दैनिक ट्रिब्यून ने सुर्खी बनाया है। पंजाब और हरियाणा कोर्ट के निर्देश और प्रवर्तन निदेशालय की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री के OSD सहित 6 के खिलाफ FIR दर्ज। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित होंगे अब नए वायुसेना प्रमुख। लोकसत्य में एयर मार्शल मौजूदा वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का स्थान लेंगे को प्रमुखता दी गई है। विश्व बैंक ने भारत का वृद्धि अनुमान बढ़ाया, दैनिक जागरण की सुर्खी है, चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7.1% किया।
1: धन्यवाद देवेंद्र। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत 375 अनुमत कार्यों को अधिसूचित किया, पहले के 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की, कहा प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। और मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, 8:15 हुए हैं। अब हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे विविध भारती के मुंबई के।

देता है। ऐसे में मन में शिकायत, गुस्सा और नाराजगी जमा होने लगती है। अगर कोई अपनी गलती को स्वीकार कर ले और उसे सुधारने का प्रयास कर रहा है तो ज़रूर उसे माफ़ करने का साहस दिखाना चाहिए ताकि दिल पर कोई बोझ ना रह जाए। यदि कोई अपनी भूल स्वीकार कर ले और उसे सुधारने का प्रयास करे तो उसे क्षमा कर देना रिश्तों को मजबूत बनाता है। माफ़ कर देने का अर्थ गलत को सही ठहराना नहीं बल्कि अपने मन को क्रोध, द्वेष और बोझ से मुक्त करना है।

जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो सबसे अधिक शांति हमें ही मिलती है। मन हल्का रहता है, रिश्तों में अपनापन बना रहता है और जीवन सकारात्मकता की दिशा में आगे बढ़ता है। इसीलिए जहां भी संभव हो क्षमा को अपनाइए। दिल में किसी के लिए कटुता कभी ना रखें। क्षमा करने वाला व्यक्ति सबसे पहले स्वयं को मुक्त करता है। क्षमा सबसे बड़ा साहस है। किसी की भूल को माफ कर देने से ना केवल रिश्ते बचते हैं बल्कि अपने मन का हर बोझ कटुता से मुक्त हो जाता है। इसीलिए जहां संभव हो क्षमा को अपनाएं और मुस्कुराते हुए जीवन जिएं।

क्षमा रिश्तों को जोड़ती है, मन को सुकून देती है। इसीलिए क्षमा को अपनी ताकत बनाएं, प्रेम और सद्भाव के साथ रिश्तों को लेकर आगे बढ़ें। जब दिल हल्का होता है तो रिश्तों में मिठास बढ़ती है और जीवन अधिक सुखद बन जाता है। तो आज एक छोटा सा संकल्प हम सभी लें, जहाँ संभव हो माफ़ करें, मुस्कुराएं और प्रेम के साथ आगे बढ़ें। तो हम भी आज एक छोटा सा संकल्प लेंगे, नफरत नहीं प्रेम बांटेंगे, शिकायत नहीं समझदारी अपनाएंगे और जहाँ संभव होगा दिल से माफ़ करेंगे। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और दूसरों की ज़िंदगी में भी खुशियों की रोशनी बिखेरते रहिए।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज।
3: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
4: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
5: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
4: पहला, असुरक्षित यौन संबंध यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है, HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
5: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
4: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। साथियों, कहते हैं हर सुबह अपने साथ एक नई कहानी लेकर आती है और हर गीत उस कहानी में एक नया रंग भर देता है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में बातों के रंग और संगीत की धुनों के साथ कुछ खूबसूरत पल अपने नाम करते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में और आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में ये गीत फिल्म 83 से। इस गीत को गाया है प्रीतम और अरिजीत सिंह ने।
1: India in deep trouble now, having lost two matches in a row.
2: अपना है दिल ये आज का।
3: मैं मैच देखने आऊँ।

0: अरे मीहा, तू इतनी रिलैक्स लग रही है आजकल, क्या सीक्रेट है यार?
1: सीक्रेट नहीं, स्मार्ट मूव है। मैंने लिया है LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
0: ओह रियली, क्या स्पेशल है इसमें?
1: देख, छोटी बचत से बड़ी सेविंग होती है और इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। इसमें गारंटीड एडिशंस मिलते हैं, एडिशनल सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलता है 3 अट्रैक्टिव ऑप्शंस के साथ, और तो और ऑटो कवर भी है। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये प्लान केवल महिलाओं के लिए है, एक्सक्लूसिव।
0: वाह, मुझे भी लेना है यार LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
1: तो अभी विजिट करें LIC.in या अपने नजदीक की LIC शाखा में संपर्क करें। LIC, हर पल आपके साथ।
2: मैं तो टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
3: नहीं यार, मैं नहीं लाना।
2: ए तो फिर यार मार वाली गल होगी।
3: नशा करन ले मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं, दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
4: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा

साथियों, कभी गौर किया है, एक अच्छा गीत सुनते ही हमारा मूड बदल जाता है। वजह गीत है या उससे जुड़ी कोई याद, ये तय करना थोड़ा मुश्किल है। बहरहाल सुनते हैं हसीन दिलरुबा फिल्म का गीत असीस कौर और देवेंद्र पाल सिंह की आवाजों में। सिद्धांत ने इसे लिखा है, अमित त्रिवेदी का संगीत।

0: कहिए
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
0: शुक्रिया, शुक्रिया।
1: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में अब वक्त है छोटे से ब्रेक का।

साथियों, इन दिनों विश्व अंतरिक्ष सप्ताह चल रहा है। हमें ये सप्ताह हमें सिर्फ चांद, सितारों और अंतरिक्ष यात्राओं की याद नहीं दिलाता, बल्कि ये भी समझाने का अवसर देता है कि अंतरिक्ष हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कितना जुड़ा हुआ है। मोबाइल से लेकर मौसम की जानकारी, GPS, संचार और आपदा प्रबंधन, कई सुविधाओं में अंतरिक्ष तकनीकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस सप्ताह के माध्यम से नई पीढ़ी को ये सोचने के लिए प्रेरित किया जाता है कि अंतरिक्ष की खोज केवल वैज्ञानिकों का विषय नहीं, बल्कि हमारे भविष्य की संभावना से जुड़ी यात्रा है। 2026 की थीम रॉकेट रिवॉल्यूशन है, जो रॉकेट और अंतरिक्ष प्रक्षेपण तकनीक में हो रहे बदलावों तथा अंतरिक्ष तक बढ़ती पहुंच को रेखांकित करती है। अंतरिक्ष की ओर बढ़ता हर कदम मानवता के भविष्य की नई संभावनाओं का द्वार खोल देता है। आइए अब आपको सुनवाते हैं RRR फिल्म का गीत अमित त्रिवेदी की आवाज में। रिया मुखर्जी ने इसे लिखा है, MM क्रीम का संगीत।

0: एड्स, एचआईवी, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
1: एचआईवी एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं एचआईवी एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
0: पहला, असुरक्षित यौन संबंध, यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है, एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। एचआईवी एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं एचआईवी टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को एचआईवी एड्स फ्री बनाएं। एचआईवी एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: लापता लेडीज फिल्म का गीत अर्जित सिंह की आवाज, प्रशांत पांडे ने इसे लिखा है, राम संपत का संगीत।

0: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
1: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
0: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
1: BIS केयर ऐप से, जहाँ आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
2: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
3: मैदा टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
4: नहीं यार, मैं नहीं लाना।
3: ए तां फिर यार मार वाली गल होगी।
4: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं, दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा वी खतरा हो सकदा है।
5: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है तां सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच जारी।
6: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।

साथियों, क्या आपको पता है कपास का एक छोटा सा पौधा हमारे जीवन में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है? शायद हम अक्सर इस पर ध्यान नहीं देते। खेतों में उगने वाला यही सफेद रेशा हमारे कपड़ों से लेकर कई जरूरी उत्पादों तक पहुंचता है और किसानों तथा लाखों लोगों की आजीविका का आधार बनता है। अब आप सोच रहे होंगे, आज अचानक इस कपास की बात क्यों? तो ऐसा है कि 7 अक्टूबर को कपास यानी कि विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस इसी सफेद रेशे

0: से जुड़े पूरे संसार को समझने का अवसर देता है। साथ ही ये कपास की खेती को अधिक टिकाऊ बनाने और किसानों के हितों पर ध्यान देने की भी जरूरत को याद दिलाता है। आइए सुनते हैं अगला गीत, पर उससे पहले ये संदेश।
1: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं?
2: हाँ जी।
1: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं?
2: हाँ जी, हाँ।
1: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
1: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
2: है ना, बोलो, बोलो।
1: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा,
1: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
0: तो इंस्टाग्राम पर विविध भारती के पेज को फॉलो किया या नहीं? अगर नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। और आपको सुनवाते हैं सूर्यवंशी फिल्म का ये गीत, अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाजों में। रचना रश्मि विराग की और धुन बनाई है कौशिक गुड्डू आकाश ने।

आपने ट्यून किया है विविध भारती, कार्यक्रम है चित्रलोक। साथियों, कुछ बातें कहने के लिए कभी कभी शब्द कम पड़ जाते हैं और कुछ एहसास सिर्फ संगीत के

आपने ट्यून किया है विविध भारती, कार्यक्रम है चित्रलोक। साथियों, कुछ बातें कहने के लिए कभी कभी शब्द कम पड़ जाते हैं और कुछ एहसास सिर्फ संगीत कह देता है। तो ऐसे ही खूबसूरत एहसास के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं शिद्दत फिल्म का गीत अंकित तिवारी की आवाज में। कुंवर जुनेजा ने इसे लिखा है और गौरव दास गुप्ता का संगीत।

तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। इस फिल्म का गीत सुनिए वरुण जैन और राघव चैतन्य की आवाजों में। इंद्रनील ने इसे लिखा है, सचिन जिगर का संगीत।

आइए अब आपको सुनवाते हैं भूल भुलैया 3। इस फिल्म का गीत आदित्य रिखारी तुलसी कुमार की आवाजों में, आदित्य रिखारी ने इसे लिखा है और संगीत है लिजो सरिजो का।

0: आदित्य रिखारी और लीजो जॉर्ज डीजे चीट्स इनकी संगीत निर्देशन में ये गीत आपने सुना फिल्म भूल भुलैया 3 से। इसी के साथ दीजिए चित्रलोक कार्यक्रम से नेहा अगरकर देसाई को इजाजत। नमस्कार।
1: हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आप सुन रहे थे हमारी मुंबई केंद्र से नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। 9:30 हुए हैं तो हमारे केंद्र से अब आप सुनेंगे प्रोग्राम आज का अखबार, लेकिन इस संदेश के बाद।
2: मैदा टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
3: नहीं यार, मैं नहीं लाना।
2: ए तां फिर यार मार वाली गल होगी।
3: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है।
4: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
1: विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से अब हमारे श्रोता सुनेंगे प्रोग्राम आज का अखबार।
5: आज का अखबार।
1: आज का अखबार सुन रही सभी श्रोताओं को नमस्कार, शुभ प्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग। भाई सभी सुनने वालों का इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। तो आज इस कार्यक्रम में मैं सुनीता भगत हूँ आपके साथ, और मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ है ये प्यारी सी सुबह, सूरज की सुनहरी किरणें भी हैं, एक नया दिन है भाई, और साथ में है ढेर सारी आशाएं, बहुत सारी उम्मीदें। उम्मीदें किस बात की? जिंदगी को भरपूर जी लेने की। और आप सब हमारे श्रोता सुबह सुबह की इस ताजगी और पॉजिटिविटी को महसूस करते हुए सुन रहे हैं ना हमारा ये प्रोग्राम आज का अखबार। जी हाँ, यही है वो प्रोग्राम जहाँ देश दुनिया की ताज़ा हलचल से लेकर कुछ और जानकारियाँ भी हम आप

साथ बांट लिया करते हैं। तो आप जुड़े रहिएगा आकाशवाणी के साथ, विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र के साथ। समाचारों की सुर्खियां पहुंचाएंगे आप तक, और ढेर सारी बातों के साथ साथ कुछ संगीत की मधुर धुनें भी तो सुनवाएंगे आपको, थोड़ा और खुशनुमा बनाएंगे आपकी इस सुबह को। तो चलिए सबसे पहले प्यारा सा गाना सुनते हैं। ये गाना है फुल ऑफ पॉजिटिविटी।

जी, तो कहने का मतलब ये है कि अपनी ज़िंदगी को प्यार करना सीखिए और भरपूर ज़िंदगी जी लीजिए। अब ज़िंदगी मिली है ना, तो इसे सिर्फ गुजारिए मत, हर पल को मुस्कुरा कर और उस ईश्वर को धन्यवाद देकर पूरे दिल से जीना सीख लीजिए। खुशियाँ जो छोटी हैं या बड़ी हैं ये मत देखिए, बस दिल से महसूस कीजिए। और जो असली खुशी है ना ज़िंदगी की, यही है कि जिंदा दिली से हम इसे जी लें। तो भाई, सुबह की ताज़ा खबरों की सुर्खियों से लेकर अच्छे विचारों तक और फिर हमारे कार्यक्रमों के बारे में, जानकारियों के बारे में भी सब बताने वाले हैं हम आपको। बस आप सुनते रहिए विविध भारती का ये चंडीगढ़ केंद्र। वैसे आज विश्व कपास दिवस भी है श्रोताओं, जानते थे आप? चलिए कोई बात नहीं, हम ज़रूर आपको इसके बारे में भी बताएंगे, बात करेंगे, लेकिन पहले देश की हलचल के बारे में जान लें। तो चलिए बताते हैं आपको देश में कल क्या क्या हुआ। चलते हैं समाचारों की ताज़ा सुर्खियों की ओर।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन का हुआ प्रदर्शन, 8 घंटे धरने के बाद राहुल गांधी और प्रियंका समेत कई नेता हिरासत में लिए गए, बाद में इन सबको छोड़ दिया गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, करीब 300 सांसद मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों निर्वाचन आयुक्तों से मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन उन्हें मिलने का अवसर नहीं दिया गया। उधर आयोग ने कहा है, बैठक के लिए किसी दल ने समय नहीं मांगा।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्वदेशी हाई अल्टीट्यूड एयरशिप का किया सफल परीक्षण। देश की निगरानी और एरोस्पेस क्षमताओं को मिलेगी मजबूती। समंदर में बढ़ेगी भारतीय नौसेना की ताकत। युद्ध पोतों के लिए खरीदे जाएंगे ब्रह्मोस लॉन्चर सिस्टम। रक्षा मंत्रालय ने कहा, देश की समुद्री व्यवस्था होगी और भी मजबूत। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय हिमाचल दौरे पर पहुंची। कल बिलासपुर में एम्स के दीक्षांत समारोह में डिग्रियां देते हुए डॉक्टरों से दुर्गम क्षेत्रों में भी जाने का आह्वान किया उन्होंने। आज राष्ट्रपति मनाली के दौरे पर रहेंगी। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित बनेंगे देश के नए वायुसेना प्रमुख। 31 अक्टूबर को संभालेंगे कमान। कारगिल जंग से ऑपरेशन सिंदूर तक का है उन्हें अनुभव। आंध्र प्रदेश में पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे नौसेना कर्मी समेत 2 संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों ने डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी गोपनीय जानकारी साझा की थी। नोएडा में भाजपा सेवा संकल्प अभियान की सेवा ज्योति यात्रा कार्यक्रम को आज प्रधानमंत्री वर्चुअली संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। फ्री राशन का दुरुपयोग रोकने को सरकार करेगी अंत्योदय योजना में बड़ा बदलाव। परिवार के सदस्यों के हिसाब से ही तय होगा अब राशन कोटा। वित्त व्यय समिति को भेजा गया है संशोधन प्रस्ताव। सुप्रीम कोर्ट में हुई 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सुनीता अग्रवाल, देवेंद्र कुमार उपाध्याय और अपरेश कुमार सिंह को शपथ दिलाई। और श्रोताओ, भारतीय महिला क्रिकेट की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने क्रिकेट के 3 फॉर्मेट्स की छोड़ी कप्तानी। कहा, केवल खिलाड़ी बनकर ही अब खेलेंगी। समृति मंधाना को बनाया गया है नया कप्तान। अच्छा, तो हम आपसे बात कर रहे थे, आज विश्व कपास दिवस भी है, लेकिन लगे हाथ आपको अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की जो सुर्खियां हैं वो भी पहले बता देते हैं। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में माता जोग माया मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया गया है। 1 संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है। ओमान तट के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे पनामा के झंडे वाले व्यापारिक जहाज पर हमला हुआ। 19 सदस्यीय चालक दल में 12 घायल हुए हैं। इनमें से 11 भारतीय नागरिक शामिल हैं। भारत ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कमर्शियल जहाजों के साथ साथ नाविकों और नागरिक ढांचे को निशाना बनाने पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है।

ट्रंप सरकार ने उठाया बड़ा कदम, एक भारतीय समेत 40 लोगों की नागरिकता छीनने की कार्रवाई हुई शुरू, सबके खिलाफ है आपराधिक मामला।

अमरीकी संसद में भारतीय पायलट स्मिथ मच्छार के सम्मान में एक प्रस्ताव पास किया गया। इसमें 30 सितंबर को फ्लाई दुबे की फ्लाइट में हुए हमले के दौरान कैप्टन मच्छार की बहादुरी की तारीफ करते हुए इस घटना को आतंकी हमला बताया गया। आप सुन रहे हैं इस समय प्रोग्राम आज का अखबार, और अब हम आपको बताएंगे कि आज 7 अक्टूबर है, तो वैसे तो ये एक आम सा ही दिन है, लेकिन आज विश्व कपास दिवस हम मना रहे हैं। लेकिन उससे भी पहले एक जानकारी हम आप तक पहुंचा दी हमारे कार्यक्रमों संबंधी।

0: श्रोतो, FM लाइफलाइन प्रोग्राम होता है हमारा, आप जानते ही हैं। तो आज बाद दोपहर 3:30 से लेकर 4 तक आपके टेलीफोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग हम करेंगे। प्रोफेसर यशपाल शर्मा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी PGI चंडीगढ़, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद रहेंगे। आज दिल से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं, किसी रोग से अगर आप ग्रस्त हैं, दिल के बारे में कोई भी जानकारी हासिल करना चाहें, सवाल करना चाहें, तो दोपहर 3:30 से लेकर शाम 4 तक आप हमें कॉल कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर हमारे आप नोट कर लें, 2660615 2660617 और 2660619 2660615 2660617 और 2660619। अब करते हैं कपास दिवस के बारे में बात। साथियों, आपने कभी सोचा है ये सफ़ेद सोना जो है हमारी ज़िंदगी को कितना आराम देता है? अब गर्मियों की ये जो चिलचिलाती धूप में हम निकलते हैं ना, तो इसमें कपास का आप अगर परिधान पहनते हैं तो उसका कोई मुकाबला नहीं, और कितना राहत ये हमें देती है। आज इस कपास दिवस पर उन किसानों का शुक्रिया अदा हमें करना चाहिए जो दिन रात खेतों में पसीना बहाकर इस सफ़ेद सोने को उगाते हैं। तो आज अपनी अलमारी से खूबसूरत सा कॉटन का कपड़ा निकालिए, उसे पहनिए और गर्व से कहिए, आई लव कॉटन। जी, तो अब चलते हैं हम इस प्रोग्राम में आगे और बात करते हैं ट्राइसिटी की। लेकिन उससे पहले एक संदेश आप तक पहुंचा देते हैं।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश, या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
0: SIR का हंगामा चंडीगढ़ तक पहुंचा। यहां 99 दिनों की प्रक्रिया में रोजाना औसतन 587 वोटर्स डिलीट हुए हैं। 7 से 11 अक्टूबर तक लगेगा एक विशेष कैंप, BLO करेंगे वोटर वेरिफिकेशन। हाइब्रिड धान की खरीद पर प्रति क्विंटल 5 किलो कटौती के विरोध में किसानों ने चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर धरना दिया। करीब 4 घंटे तक बंद रहा हाईवे, प्रशासन के साथ बैठक के बाद बहाल किया गया यातायात।

चंडीगढ़ में शिवसेना पंजाब की हुई महत्वपूर्ण बैठक। चुनाव के लिए विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे, जागरण कमेटियां भी बनाई जाएंगी। आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आसान होगी, घर बैठे ऑनलाइन ही भरे जाएंगे ड्राफ्ट डीड। 3 दिन में तहसीलदार को करना होगा वेरीफाई और ऑनलाइन ही मिलेगी नागरिकों को अपॉइंटमेंट भी। चंडीगढ़ में 2 दिन चली 118वीं ऑल इंडिया मेयर कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई। देश भर के मेयर बोले, अफसरों की ACR लिखने की पावर मिलनी चाहिए और कार्यकाल कम से कम 5 साल का हो। सम्मानजनक वेतन और पेंशन का भी प्रावधान होना चाहिए।

मोहाली में 7 अक्टूबर तक यानी आज तक पटाखों की अस्थायी दुकानों के लाइसेंस के लिए आवेदन किया जाएगा। शाम 5 बजे तक पटाखों की अस्थायी दुकानों के लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। मोहाली में ही जारी खेड़ा वतन पंजाब दियां 2026-27 में जिला स्तरीय एथलेटिक्स

0: कबड्डी समेत 5 खेलों में खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। आयोजकों द्वारा खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। मोहाली के फेज 6 शहीद मेजर हरमिंदर पाल सिंह सरकारी कॉलेज में बीए इंग्लिश की परीक्षा के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने का आज है अंतिम दिन। बात कर लेते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के कैंप ऑफिस पर सीबीआई का छापा पड़ा। मान के ऑफिस पहुंची जांच एजेंसी संगरूर में विशेष ड्यूटी अधिकारी राजबीर घुमन के घर भी की गई छापेमारी। सीबीआई ने पंजाब के 7 शहरों में एक साथ कार्रवाई की। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और डॉक्यूमेंट्स को कब्जे में लिया गया। रिश्वतखोरी और नियम विरुद्ध कार्य करने के तलाशे जाएंगे सबूत। मुख्यमंत्री बोले, भाजपा में है घबराहट। पंजाब के कर्मचारियों और पेंशनरों को बकाया डीए भुगतान के मामले में मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है। अदालत को गुमराह करने के आरोप में पेश होने का निर्देश दिया। किसानों को 781 करोड़ रुपए का किया जा चुका है भुगतान। पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालचंद ने दावा किया, 5 लाख क्विंटल से अधिक धान किसानों से खरीदी गई है। सर हिंद मंडी का दौरा किया गया। अधिकारियों को दिए गए निर्देश, किसानों, आढ़तियों और मजदूरों को ना हो कोई परेशानी। जालंधर में सांसद हरभजन सिंह के घर के बाहर आंगनवाड़ी वर्करों ने प्रदर्शन किया। नारेबाजी की बड़ी संख्या में पहुंची महिलाएं 12 साल से मानदेय ना बढ़ाने पर भाजपा और केंद्र सरकार के खिलाफ रोष जताया। अब एक संदेश सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
1: ऐता टीका ला लिया, और तू भी ला ले।
2: नहीं यार, मैं नहीं लौना।
1: ऐता फिर यार मार वाली गल होगी।
2: नशा करन ले मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है।
3: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
0: अच्छा, कुछ और संदेश भी सुनवाते हैं आपको।
4: एड्स, एचआईवी, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
5: एचआईवी एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं एचआईवी एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
4: पहला, असुरक्षित यौन संबंध यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
5: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। एचआईवी एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं एचआईवी टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
4: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को एचआईवी एड्स फ्री बनाएं। एचआईवी एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
6: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं प्रोग्राम आज का अखबार। मैं हूं आपके साथ सुनीता भगत। अच्छा, तो आपको ये बता दें, आज 10:05 पर जानते हैं ना आप, प्रोग्राम होगा हेलो चंडीगढ़। आज का विषय है दृढ़ निश्चय सफलता का मूल मंत्र। तो अपने विचारों के साथ आप क्या सोचते हैं इसके बारे में तैयार रहिएगा, बात करेंगे आपके साथ 10:05 पर। तो ये भी बता दें आपको, आज सुबह 11:30 पर संजीवनी कार्यक्रम है हमारा। आज का विषय है योग और आयुर्वेद, और बातचीत की जाएगी योगाचार्य रोशनलाल जी से। तो चलिए अब चलते हैं इस कार्यक्रम में आगे, और हरियाणा और हिमाचल

की खबरें आप तक पहुंचाते हैं। हरियाणा में सिंगापुर से आएगा 5,500 करोड़ का निवेश। मुख्यमंत्री का सिंगापुर दौरा हुआ संपन्न। मुख्यमंत्री ने कहा, युवाओं के आधुनिक कौशल के लिए राज्य सरकार सिंगापुर के साथ बढ़ाएगी सहयोग। हरियाणा में साइबर अपराध रोकने के लिए 204 नए पदों के साथ पुलिस के भीतर एक नया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर किया जाएगा तैयार। राज्य में 1,80,000 से ज्यादा कमाई वालों को भी चिरायु पुलिस पॉलिसी का लाभ मिलेगा। नई पॉलिसी 1 नवंबर से 1 साल के लिए लागू होगी। हरियाणा सरकार ने कहा, अब शिकायतों पर एक्शन टेकन रिपोर्ट ही काफी नहीं, फरियादी से भी बात की जाएगी। राज्य में बढ़ते हुए ट्रैफिक वाले रास्तों की बढ़ेगी क्षमता, लेन विस्तार की बनाई जाएगी योजना। नितिन गडकरी से मिले लोक निर्माण मंत्री रणवीर गंगवा। हिमाचल की बात करें तो नवरात्र में धर्मपुर से चलेंगी अतिरिक्त रेलगाड़ी, शिमला जाने वालों के लिए राहत की खबर। विधानसभा मानसून सत्र में हुई घोषणा के बाद सचिवालय ने व्यवस्था की लागू। विधायकों की गाड़ियों पर लहराने लगी नीली झंडियां। एचपीवी टीकाकरण अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कुल्लू जिले के जरी ब्लॉक को पुरस्कार मिला। कसौली में अवैध निर्माण और पेड़ कटाई की होगी जांच, एसडीएम को जांच के मिले निर्देश। सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी। हिमाचल हाईकोर्ट का फैसला, पदों का गठन और योग्यता तय करना सरकार का है फैसला, प्रमोशन कर्मचारी का अधिकार नहीं।

मणिमहेश परिक्रमा मार्ग पर बिगड़ा मौसम। चंबा प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए जारी की एडवाइजरी। ऊंचाई वाले इलाकों पर सावधानी बरतने की सलाह दी। खेल समाचारों में, क्रिकेट वर्तमान श्रृंखला में वेस्टइंडीज को कल भारत ने पहले T20 मैच में 8 विकेट से हराया। कप्तान श्रेयस अय्यर ने बनाया पहला T20 शतक। चाइना ओपन लॉन टेनिस में नोवाक जोकोविच ने जीता 102वां एकल खिताब। फीफी अंतर्राष्ट्रीय मैत्री फुटबॉल मैच में उरुग्वे से 28 मिनट तक लड़ने के बाद 1-6 से हारा भारत। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया अंडर 19 ने यूथ टेस्ट में बनाया 335 रनों का टोटल, 141 रनों की मिली बढ़त।

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
2: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
1: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
2: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
3: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।

0: अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: मौसम का हाल अब हम आपको बता देते हैं। चंडीगढ़ और पंजाब में मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों में मौसम बदलने की पूरी संभावना है। इसी बीच कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। विशेषकर 10 अक्टूबर को आंधी और आसमानी बिजली को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आज बूंदाबांदी की संभावना है। चंडीगढ़ में दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट हो सकती है। कल शहर का दिन का अधिकतम तापमान रहा 34.8 डिग्री सेल्सियस, रात का न्यूनतम तापमान था 24.6 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त होगा शाम 6:01 पर और कल सूर्योदय होगा 6:19 पर। और अब इसके साथ ही कार्यक्रम का समय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। सुनीता भगत को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
4: आज का अखबार।
5: आज का अखबार कार्यक्रम के प्रायोजक थे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
6: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
7: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
8: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट bis.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
3: आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज का अखबार। हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 10 बजने वाले हैं आकाशवाणी दिल्ली से। अब हम आपके लिए समाचार रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी ने आज ही के दिन 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बने। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 13 वर्ष और पिछले 12 वर्ष से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोदी लगातार जनसेवा के लिए समर्पित रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एक साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति ने खुद को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया और लगातार देश की सेवा कर रहे हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से

0: कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह नई दिल्ली के सरोजिनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर में पूजा अर्चना की। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर उनकी सराहना की है। एक हिंदी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री तोबगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा का महत्व अब केवल भारत ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देशों और ग्लोबल साउथ के लिए भी बढ़ गया है। श्री तोबगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की विदेश नीति में पड़ोसी देशों को विशेष महत्व दिया है। उन्होंने ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने के लिए भारत के प्रयासों की भी सराहना की। सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के अंतर्गत अनुमत कार्यों की सूची अधिसूचित कर दी है। नए ग्रामीण कार्य ढांचे के अंतर्गत कुल 375 कार्यों को अनुमत किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि नई सूची में पूर्व में शामिल 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि हुई है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 10वां संस्करण आज नई दिल्ली के यशोभूमि में शुरू होगा। इस वर्ष इसका विषय है सीमा रहित विस्तार। सम्मेलन में दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले कल सेवा तीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण आवश्यक है। उन्होंने प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को किफायती और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी ने अल्पविकसित और विकासशील देशों और बढ़ते डिजिटल विभाजन को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी को अंतिम छोर तक पहुंचाने पर भी जोर दिया। डिजिटल और साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौतियों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समस्या के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों की आवश्यकता है। जीएसएमए बोर्ड के सदस्यों ने डिजिटल और मोबाइल कनेक्टिविटी में वैश्विक नेता के रूप में भारत के उदय पर चर्चा की। बैठक में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मा सानी चंद्रशेखर, जीएसएमए बोर्ड के सदस्य और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण बढ़ती मुद्रास्फीति के दबाव को देखते हुए लगभग 3.5 साल बाद ब्याज दरों में वृद्धि हो सकती है। वर्तमान में आरबीआई की नीतिगत रेपो दर 5.25% है। भारत और घाना ने वैज्ञानिक अनुसंधान, अकादमिक क्षेत्र, क्षमता निर्माण, कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर की घाना यात्रा के दौरान हुए। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले टी20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का दूसरा मैच शुक्रवार को रांची में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज ऐसे मौसम की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। श्रोताओ, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़।
4: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
5: अब

0: टाना पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: ओली जी, अब सुनिए प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़।
2: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं वर्सटाइल मशीन बद्दी।
3: आपके सपनों का घर हो, फैक्ट्री हो या हो ग्राहकों से भरा शोरूम, हर मंजिल तक आसान और सुरक्षित पहुंच, वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी के साथ।
4: आपकी जरूरत के अनुसार हर तरह के लिफ्ट बनाएं, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और भरोसेमंद सर्विस

0: प्रोवाइड कराएं।
1: वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी।
0: अपनी जरूरत के लिफ्ट बनवाने के लिए आज ही संपर्क करें 9736183070।
2: वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी, भरोसा सुरक्षा का।
3: हेलो
4: हेलो,
3: कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़।
4: हेलो चंडीगढ़।
5: हेलो चंडीगढ़ सुन रही सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार, और सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय हमने आपको पहले भी बताया, एक बार फिर से बता देते हैं, दृढ़ निश्चय सफलता का मूल मंत्र है। तो श्रोताओ, हमारा तो ये मानना है कि दृढ़ संकल्प या दृढ़ निश्चय वो शक्ति है जो हमें मुश्किल से मुश्किल जो परिस्थितियां हैं ना, उनमें भी अपने लक्ष्य से भटकने नहीं देती। अब रास्ते में चाहे कितनी भी रुकावटें आ जाएं, लेकिन मन में अगर विश्वास हो और आपका जो निश्चय है, आपका जो संकल्प है वो एकदम दृढ़ हो, तो फिर मंजिल तक पहुँचना संभव हो जाता है। ये तो है हमारा विचार। हमारी श्रोता क्या समझते हैं इस बात से, और क्या उनके विचार हैं इस बारे, चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो चंडीगढ़। हेलो हेलो चंडीगढ़। हेलो चंडीगढ़। हेलो जी, नाम बताएं अपना।
6: हेलो
5: जी जी, अपना नाम बताएं।
6: हेलो
5: हेलो
6: हेलो जी,
5: अपना नाम बताएं।
6: नमस्ते
5: जी। नमस्ते, अपना नाम बताएं।
6: हाँ हेलो
5: हेलो, आप हमें सुन पा रहे हैं?
6: आवाज नहीं आता।
5: आप हमें सुन पा रहे हैं?
6: आवाज आता नहीं।
5: आप अपना नाम बताएं, हम सुन रहे हैं आपको। हेलो। अच्छा जी, हमारे इन श्रोताओं को हमारा स्वर है जो शायद नहीं पहुंच पा रहा है, तो हम अगली कॉल लेते हैं। हेलो चंडीगढ़।
7: हेलो
5: जी,
7: संजय बोल रहा हूँ जी, नाभा से।
5: अच्छा जी, नाभा से हमारे श्रोता बात कर रहे हैं, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
7: आपका प्रोग्राम का क्या विषय है जी आज का?
5: हमारे प्रोग्राम का विषय है कि दृढ़ निश्चय अगर आपके मन में हो तो फिर आप सफल हो सकते हैं।
7: ये तो बहुत अच्छा टॉपिक है आपका
5: जी। धन्यवाद
7: जी। कहने का मतलब है कि जो आपके मन में इच्छा है कोई भी काम करने की या पढ़ने की, कोई एनीवे कोई भी
5: जी
7: जी, जब आपके मन में है तो फिर आप कहीं भी नहीं फेल हो सकते।
5: जी बिल्कुल सही कहा आपने, यानी अगर आप मन में ठान लें तो जीवन में कोई भी काम कर सकते हैं।
7: कर सकते हैं, पर जैद काम करें मन में तो ये ठान, तो ये मन है ना जो, ये शैतान का है ये मन।
5: नहीं देखिए, जब
7: अच्छे,
5: हम बात करते
7: अच्छे
5: हैं
7: काम, अच्छे, अच्छे काम में अपना योगदान डालना चाहिए, चाहे मन करे ना करे, गलत कामों में कभी नहीं डालना चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ।
5: सही कह रहे हैं आप, हम जब भी कोई बात करते हैं ना, तो हमारा मकसद ये होता है कि हम उस बारे में कुछ पॉजिटिव ही बात कर रहे हैं, है ना?
7: हाँ, जी जी।
5: तो आपने बिल्कुल सही कहा, मन में अगर हम ठान लें तो कुछ भी कर सकते हैं, और गलत काम तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
7: नहीं करना चाहिए, वो अपने अंदर जो मन है ना, वो एक बार इजाजत देता है गलत काम करने से। आप गलत काम करोगे ना, वो अंदर से आवाज आएगी, भाई नहीं ये तेरे लिए ठीक नहीं है।
5: तो देखिए ना, इसमें भी दृढ़ निश्चय का होना बहुत जरूरी है। अगर आप में दृढ़ निश्चय होगा कि हमें गलत रास्ते पे नहीं जाना है, सही काम करना है, सही जो रास्ता है उसी पर चलना है, तो ही आप सफल हो सकते हैं।
7: जी
5: जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने हमें कॉल किया, धन्यवाद आपका। हेलो चंडीगढ़। हेलो हेलो चंडीगढ़। हेलो चंडीगढ़।
8: हेलो मैडम, नमस्कार
5: जी। नमस्कार, अपना नाम बताएं।
8: मैडम मैं प्रदीप संकट मोचन शिमला से बात कर रहा हूँ।
5: अच्छा जी प्रदीप जी, कैसे हैं आप?
8: मैडम मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हैं?
5: जी हम बिल्कुल अच्छे हैं, और बताएं आज आपने ये जो विषय हमारा सुन ही लिया होगा, इसके बारे में क्या जानना है आपका, क्या सोचना है आपका?
8: मैडम मैं तो ये बोलूंगा कि हमारी सफलता

0: के पीछे दृढ़ निश्चय की एक अहम भूमिका है। अगर हम दृढ़ निश्चय कर ले कि हमें ये काम जरूर करना है तो उसमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। विश्वास के साथ जो हम कार्य करते हैं मैडम, उसमें सफलता मिलना निश्चित है। समय जैसा भी हो, अगर हम दृढ़ निश्चय के साथ कोई भी काम करने का संकल्प ले तो हम उसमें अवश्य कामयाब रहते हैं, और दृढ़ निश्चय ही हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। कठिन से कठिन काम भी हम आसानी से कर सकते हैं, और हम उस काम की शुरुआत दृढ़ निश्चय के साथ करें। यदि
1: जी आप सही कह रहे हैं, देखिए ना कई बार ना निश्चय होता है हमारा, हम संकल्प कर लेते हैं, दृढ़ता से कर लेते हैं, लेकिन मेहनत नहीं करते उतनी, है ना। हम सोच तो लेते हैं कि ऐसा करेंगे, ऐसा करना है हमें, लेकिन मेहनत करने से हम कतराते हैं। तो मन को एकाग्र करके एक जगह पर लाकर दृढ़ निश्चय तो है ही, लेकिन अब मेहनत करना भी बहुत जरूरी है उसके साथ।
0: जी मैम, जी मैम,
1: तभी हम सफल हो सकते हैं।
0: जी मैडम, जी मैडम,
1: जी मैडम। अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने हमें फोन किया,
0: थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू मैडम,
1: धन्यवाद आपका। हेलो चंडीगढ़,
2: गुड मॉर्निंग मैम।
1: गुड मॉर्निंग, नाम बताइए अपना।
2: मैं किरण बात कर रही हूँ मैम।
1: जी किरण जी, कहाँ से बोल रही हैं आप?
2: मैम मैं शिमला से बोल रही हूँ, कुफरी से।
1: अच्छा जी, कुफरी से बोल रही हैं, आपको एक बात बताएं।
2: थैंक यू मैम।
1: कुफरी हमें बहुत अच्छा लगता है।
2: जी मैम।
1: अच्छा तो ये बताएं आप, अब वहाँ पे तो ठंडक हो गई होगी अभी तक?
2: जी मैम, दस्तक दे चुका है।
1: जी जी, मौसम बदल चुका है, और वैसे भी आने वाले दो चार दिनों में मौसम बदलने ही वाला है, हमने पहले भी श्रोताओं से बात की है। तो आप क्या करती हैं?
2: जी मैम।
1: आप क्या करती हैं?
2: मैम मैं हाउसवाइफ हूँ।
1: अच्छा जी, तो अभी हमने जिस विषय पर बातचीत शुरू की है उसके बारे में आपका क्या मानना है, क्या सोचती हैं आप इसके बारे में?
2: मैम मैं तो यही कहना चाहूंगी, जब तक हमारे मन में, हमारे दिलो दिमाग में हमें संकल्प लेना चाहिए कि हमें, मतलब चाहे वो छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो
1: जी,
2: तो मैम हमें अगर हमें उसमें मन लग जाता है हमारा किसी चीज में, तो हम उसे पूरा करना ही चाहिए, बल्कि हम कर भी लेते हैं पूरा।
1: अच्छा ये बताएं, आप कभी किसी चीज के लिए निश्चय करती हैं और फिर उस पे अड़िग रहती हैं?
2: जी मैम बिल्कुल।
1: और आपके घर में छोटे बच्चे होंगे?
2: जी मैम बिल्कुल है।
1: उन्हें भी आप ये बात सिखाती हैं?
2: जी मैम बिल्कुल, क्योंकि मेरे बच्चे, मतलब तीन बच्चे हैं मेरे, तो मैं तो यही कहती हूँ जब तक तुम्हारा संकल्प ठीक ढंग से नहीं होगा तब तक तुम कुछ भी कर पाओगे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए बच्चों को कल के लिए तैयार करना बहुत जरूरी है ना, हम अभी से उनमें अच्छी आदत डालेंगे।
2: मैम उनको समझाना थोड़ा मुश्किल भी होता है, लेकिन जो मेरे बड़े वाली मतलब लड़की है वो थोड़ी समझती है।
1: अच्छा जी, देखिए बच्चे तो बच्चे हैं ना, नादान हैं, और कहती भी हैं कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं वो, तो ये तो हमारे अपने हाथ में है कि हम किस तरह से उन्हें ढाल लेते हैं। ठीक है, हमारे अपने ही हाथों में है उनको मनवाना कि किस तरह से हम अपनी बात मनवाते हैं। चलिए आपने हमें फोन किया, हमसे बात की, आपका बेहद धन्यवाद।
2: थैंक यू मैम।
1: हमारी श्रोता इस समय सुन रहे हैं प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़, तो अगली कॉल हम लेते हैं, उससे पहले ये एक संदेश सुन लेते हैं।

0: चलिए अब सुनते हैं कौन से हमारे श्रोता हैं जो इस समय कॉल पर हैं। हेलो चंडीगढ़, हेलो हेलो चंडीगढ़।
1: हेलो दीदी, नमस्ते।
0: जी नमस्ते, अपना नाम बताएं।
1: हमारा नाम तो मैं दीदी शिवा तिवारी, होटल।
0: अच्छा जी, शिवा तिवारी जी, आप तो हमारी नियमित श्रोता हैं।
1: क्योंकि मैं जब गांव में था फिर भी फोन में जो है आपको तो करता रहता था, और फिर जब जो है यहाँ आ गया 20 तारीख को तो चंडीगढ़ आ गया यहाँ पंचकूला।
0: अच्छा चलिए,
1: हाँ तो यहाँ से भी क्योंकि मैं तो कहीं भी रहूंगा तो बात तो होता ही रहेगा।
0: देखिए आप जैसे श्रोता है ना जो हमारी,

0: तो बस आपको देखकर आपको सुनकर ही ना हमें और ज़्यादा हिम्मत आती है कि हम आपके लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स बनाएं और अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स पेश करें और आप तक हर मुमकिन जो है वो जानकारी अच्छे से अच्छी पहुंचाएं। अच्छा जी,
1: हाँ तो नहीं, ये तो आइए दीदी, देखो ऐसा है कि जब तक गंगा जमुना में पानी रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तब तक विविध भारती का नाम रहेगा।
0: जी, विविध भारती का नाम रहेगा, आकाशवाणी का नाम रहेगा।
1: विविध भारती दीदी एक ही है। हाँ, आकाशवाणी और विविध भारती। देखो विविध भारती तो

0: क्या कहना चाहते हैं आप इस विषय पर?
1: आज के थोड़े ये दीदी विषय की देखो, कोई भी काम जो आदमी चाहता है तो उसको जो तो चाह लिए कि इसको होना है तो फिर वो तो होके रहेगा, कर लेगा, लेकिन जो वो पहले हिम्मत हार देता है तो वो जो होने वाला भी होगा तो वो होता नहीं है।
0: हाँ जी, अब देखिए ना, रास्ते कभी कभी कठिन हो जाते हैं जीवन में, चलते चलते लगता है कि रास्ता बहुत कठिन है, शायद आगे कदम नहीं चलेगा, लेकिन कदम रुकने नहीं चाहिए।
1: हाँ, रुकना से देखो दीदी, ये तो गाना भी है इसमें कि तुम्हें हिम्मत न हार, अकेला चल चला चल, वो जो पिक्चर का नाम मैं भूल गया हूँ,
0: फकीरा, तो फकीरा पिक्चर का नाम है, फकीरा।
1: तो फकीरा तो आज है की दीदी ये है कि हिम्मत, आदमी बहुत आदमी हार जाते, पहले बोलते नहीं होगा हमसे ये काम, पहले करके तो देखो कैसे नहीं होगा, नहीं होने वाला होगा, जो होके रहता।
0: और वैसे भी कहते हैं ना, मंजिल तो उन्हीं को मिलती है जो ठोकर खाने के बाद भी बढ़ते रहते हैं, और तो और जीवन जो है फिर इसी तरह से चलता रहता है।
1: दीदी देखो ऐसा है, मैं जब मैं पढ़ता था तो देखो आदमी बोलते हैं कि जब आपन बीती कहूँ कि जग बीती, तो फिर हम जग बीती नहीं गई थी, आपन बीती गई थी। देखो हमारे साथ में एक लड़का था तो वो पढ़ने में बिल्कुल कच्चा था, तो उसको वो सब कोई लड़के पीछे जो है बिछाते थे, लेकिन हमने कहा कि नहीं ये जो है डरता है तो उसको आगे मैं जो बिठाता था। और वो एक दिन वहाँ गांव में कुआं हुआ था, कुआं पर बैठा था, तो वो सोच रहा था कि इसका पानी भरते हैं तो वे ईट का ये कट जाता है रस्सी से, तो फिर क्यों ना मैं दिमाग लगाऊ तो मैं पढ़ लू, तो वो ऐसा सोचा तो दिमाग लगाया तो वो सबसे आगे निकल गया, वो स्कूल का मैनेजर बन गया।
0: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उस दृढ़ निश्चय उसने किया और सबसे आगे वो पहुंच गया, और इसी तरह से जो हमारा जीवन है चलता रहता है अगर हम अपना निश्चय एकदम अपना संकल्प जो है वो दृढ़ कर लें। फोन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: हाँ।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
2: चलिए अब अगली टेलीफोन कॉल लेते हैं। हेलो चंडीगढ़। हेलो
3: मैडम, नमस्कार।
2: नमस्कार, कौन नमस्कार कर रहे हैं, हमें नाम तो बताएं अपना।
3: सतपाल सिंह मिंद्रा चंडीगढ़ से ही बोल रहा हूँ।
2: अच्छा जी, सतपाल जी चंडीगढ़ में कहाँ हैं आप, कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: सेक्टर 21A चंडीगढ़।
2: अच्छा जी, तो कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं?
3: बहुत बढ़िया, आपके पड़ोस में है, मौसम सुहावना हो रहा है, आजकल आनंद ले रहे हैं मौसम का।
2: जी बिल्कुल, आज तो मौसम वाकई बहुत अच्छा हो गया है।
3: जी,
2: और अभी हमने कुछ देर पहले आज का अखबार प्रोग्राम में भी बात की थी कि मौसम विभाग के अनुसार आने वाले ये जो 4-5 दिन हैं तो मौसम अच्छा हो जाएगा, कुछ बारिश भी होगी, बूंदाबांदी आसार हैं उसके, थोड़े बादल छाएंगे, तो चलिए उम्मीद पे दुनिया कायम है।
3: जी मैं तो ये कह रहा हूँ मैडम, भगत जब से आई हैं जम्मू से अच्छा मौसम लेकर आई हैं।
2: जी जी, देखिए ना, हमारे जम्मू कश्मीर में वैसे भी मौसम इसलिए अच्छा होता है क्योंकि हम पहाड़ों में रहते हैं, पहाड़ों पे तो मौसम अच्छा होता ही है, जैसे अपने हिमाचल में होता है ना। चलिए धन्यवाद आपका, अब चलते हैं अपने इस विषय की ओर। आपने जरूर सुन ही लिया होगा आज हमारा आज का क्या विषय है।
3: दृढ़ निश्चय, जहाँ तक संकल्प हम किसी काम करने का अगर कर लें ढंग से।
2: जी,
3: और संकल्प लेना ही काफी नहीं होता, उसके लिए तैयारी, हमारी प्रिपेयरनेस भी होनी चाहिए।
2: एग्जैक्टली, सही कहा आपने, हमने बात की पहले की मेहनत करनी भी बहुत ज़रूरी है, और मेहनत हम इसीलिए ऑर्गेनाइज तरीके में बहुत अच्छे से तभी कर सकते हैं जब पहले से ही हमारी तैयारी हो कि कब कब हमें क्या क्या करना है।
3: जी, हमारी प्लानिंग मैडम ऐसा है, कोई हम नया काम करना चाह रहे हैं तो किसी के अंडर में हम कुछ दिन ट्रेनिंग ले लें, काम को समझ लें, और उसके बाद निर्णय ले कि मैं यही काम में क्या रुचि हो सकती है और किस तरह से मैं काम को आगे बढ़ा पाऊंगा। मजार में काम को ना छोड़े,
2: जी
3: सोच विचार का किसी काम को हाथ में ले और उसे सिरे चढ़ाएं।
2: जी बिल्कुल सही आपने कहा। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर ही जो हमारे अपने जीवन में घट रहा है या घटने वाला है उसी के लिए हम कोई दृढ़ निश्चय करें, हम सार्वजनिक तौर पर भी इस बात को अपना सकते हैं, जैसे साफ सफाई रखनी हो अपने आसपास, है ना, तो उसका भी हम दृढ़ निश्चय कर सकते हैं। और अगर हम ये मन में ठान लें कि समाज में कुछ अच्छे काम करने हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने, तो वो दृढ़ निश्चय करके भी हम सफल हो सकते हैं। अगर 4 लोग हमारी बात सुन के अपना जीवन सुधार लेते हैं तो उसमें भी हमारी सफलता ही है।
3: तो वही कहना है कि अपने घर से, अपने से काम को लोगों को हम बताने के पहले हमारी क्या आदतें हैं, हम सफाई रखते हैं कि नहीं, हमारे अंदर कोई संवेदना है कि नहीं, पहले इन बातों की जानकारी होनी चाहिए हमें खुद को।
2: जी जी बिल्कुल सही कहा आपने,
3: अगर हम अपने पहले खुद अपनाएं सफाई को, फिर लोगों को प्रेरित करें तो वो भी सफाई रखें।
2: जी बिल्कुल सही कहा आपने, यही बात हम कह रहे हैं कि दृढ़ निश्चय सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर नहीं अपनाना है हमें, सामाजिक जीवन में भी हमें उसे जरूर अपनाना चाहिए। चलिए, आपने समय निकाला हमसे बात की, आपका बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू मैम, थैंक।
2: हेलो चंडीगढ़। हेलो चंडीगढ़।
4: हेलो चंडीगढ़, नमस्कार।
2: नमस्ते जी, नाम बताएं अपना।
4: मैं राकेश बात कर रहा हूँ।
2: अच्छा जी, राकेश जी कहाँ से बात कर रहे हैं, कहाँ रहते हैं आप?
4: मैं कोटखाई शिमला में रहता हूँ।
2: अच्छा जी, शिमला से हमें बहुत सारे कॉल्स आते हैं, हमारे नियमित श्रोता हैं, तो अच्छा लगता है हमें इनसे बात करके। चलिए बताएं, क्या सोचना है आपका आज के विषय के बारे में?
4: आज के विषय के बारे में थोड़ा मैंने रेडियो थोड़ा ऑन किया, लेट किया था, थोड़ा विस्तार से अगर आप बता पाएंगे।
2: कोई बात नहीं, अगर आपने थोड़ा लेट ऑन किया है तो हम हैं ना आपको बताने के लिए। वही हमारा आज का विषय है कि दृढ़ निश्चय होना चाहिए हमारी

विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। हमारा आज का विषय है दृढ़ निश्चय सफलता का मूल मंत्र है। तो श्रोताओं, इसी विषय पर आज हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। कुछ कॉल्स हमें आ चुके हैं और कुछ कॉल्स अभी श्रोता हमें कर रहे हैं, तो चलिए सुनते हैं अब कौन से श्रोता हैं हमारे जो टेलीफोन लाइन पर हैं। लेकिन उससे पहले कुछ संदेश सुन लेते हैं।

0: जीवन में कोई भी अगर हमें काम करना है
1: जी,
0: तो
1: जी,
0: तभी
1: जी,
0: हम
1: जी.
0: सफल हो सकते हैं।
1: तो मैं इस टॉपिक में ये कहना चाहता हूँ, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये, अगर हम कोई भी काम करते हैं, सबसे बड़ी बात है काम करने के लिए पहले तो हमें धैर्य बनाए रखना होता है कि अगर हम कोई भी काम करना है तो धैर्य बनाना चाहिए और संयम से काम लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जब हम कोई भी काम करते हैं तो काम करते समय मन में ये ख्याल नहीं रहना चाहिए कि पता नहीं ये हमारा काम सफल होगा या नहीं होगा, लेकिन हमें ये सोचना है कि हम मुझे ये काम करना है, चाहे किसी भी हालत में करना होगा, लेकिन मैं
0: जी
1: करके रहूंगा या
0: जी
1: करके
0: जी
1: रहूंगी।
0: हाँ, दृढ़ निश्चय तो इसी को कहते हैं ना, कि जो आपने दिमाग में सोचा है, मन में आपने ठाना है, तो आप
1: जी
0: फिर
1: जी
0: उस पे कायम भी रहेंगे।
1: टाइम भी रहेंगे, लेकिन ये है कि हमारा मन यहाँ से उदास हो जाता था कि देखो मैंने ये काम तो मैंने अपने हाथ में ले लिया, पता नहीं पूरा होगा कि नहीं होगा। लेकिन पूरा तो होगा हो, ऐसी बात नहीं, पूरा होगा हो, लेकिन
0: जी
1: जो मन में जो है टेंशन रहता है कि अरे कहीं गलती नहीं होनी चाहिए, कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस सोचते सोचते फिर जो है हमारा जो काम जो है कभी पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन
0: जी
1: हमने ये देखना है कि हमने ये करना है, सच्चे लगन से करना है और सच्चे दिल से करना है, और एक ना एक दिन चलो मानो कि मिस्टेक भी हो गई तो फिर भी हमने प्रयास करना है उस काम का, तब जाके हमारा काम जो है सफल हो जाएगा और हमारे जो है काम में जो है निखार भी आ जाएगा।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही कि प्रयास करना तो बहुत ज़रूरी है ना, और जब हम प्रयास करते हैं, मन से करते हैं, दृढ़ संकल्प के साथ करते हैं, तो निखार जो है हमारे काम में आता है और साथ ही साथ हमारे जीवन में भी आता है। चलिए,
1: जी।
0: आपने अपने विचार हम तक पहुंचाए, बेहद शुक्रिया आपका।
1: जी, धन्यवाद।
2: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
0: हेलो चंडीगढ़। हेलो
3: नमस्कार जी, मैं रविंदर शर्मा सेक्टर 9 पंचकुला से बोल रहा हूँ।
0: जी, रविंदर जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
3: ठीक है जी।
0: और बताएं क्या सोचते हैं आप हमारे आज के विषय के बारे में?
3: इसके बारे में मैं थोड़ा सा विचार अपना बताना चाहता था।
0: जी
3: जब हम स्टूडेंट होते हैं तो हमारा संकल्प होना चाहिए कि हमने दब के पढ़ना है और पढ़ाई से अपना कैरियर बनाना है।
0: जी
3: ये उस समय संकल्प पर बच गया होना चाहिए। माता पिता को भी उस समय उसकी हेल्प करनी चाहिए। फिर हम बड़े हो जाते हैं, नौकरी लग जाते हैं, फैमिली मैन हो जाते हैं, तो उस समय हमारी जो ड्यूटी है वो दफ्तर की तरफ भी होती है। वहां भी हमने ठीक ऑनेस्टली काम करना है, सिंसियरली,
0: जी
3: और सेम टाइप हमारी फैमिली में वैसे ही हमने एक्ट करना है।
0: हाँ जी
3: तो इन इन चरम पे आपका दृढ़ निश्चय रहना चाहिए भी, फेलियर्स भी हों लेकिन उसको आगे बढ़ाते हुए सक्सेस की तरफ जाना ही चाहिए।
0: जी बिल्कुल। देखिए ना, फेलियर जो है यानी असफलता जो है वो तो जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। ऐसा तो नहीं है कि हम चलो खुश ही रहते हैं और कभी दुखी नहीं होते, या फिर हम सफल ही सफल होते हैं, असफल नहीं होते। तो आपका
3: जी
0: कहना ठीक है कि असफलता तो आएगी ही आएगी हमारे जीवन में, कभी ना कभी तो उसका सामना होगा ही, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने मन से जो दृढ़ निश्चय है हमारा कुछ भी करने का वो हम निकाल दें।
3: हाँ जी, हाँ जी,
0: जी,
3: ठीक
0: चलिए,
3: है जी।
0: अच्छे विचार थे हमारे आपके, आपने हम तक पहुंचाए, हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: हेलो चंडीगढ़,
4: नमस्कार जी,
0: नमस्ते जी, नाम बताएं अपना।
4: मैं सुशील शर्मा बोल रहा था, ठियोग हिमाचल से।
0: हिमाचल से सुनील जी के, सुशील जी,
4: सुशील शर्मा
0: सुशील जी जी
4: जी सर
0: नमस्ते, कार्यक्रम में आपका स्वागत है
4: जी। आपसे शायद पहली बार मेरी बात हो रही है
0: जी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, आपसे पहली बार बात हो रही है
4: जी। आप सुनीता बोल रहे हैं
0: जी। मैं सुनीता बोल रही हूँ
4: जी। विषय पे आते हैं क्योंकि
0: जी
4: समय
0: जी
4: की बाध्यता भी रहती है। मेरा तो यही कहना है कि दृढ़ निश्चय तो होना ही चाहिए, और इसमें जो है माता पिता और टीचर की जो है
0: बहुत बड़ी
4: भूमिका
0: भूमिका है जी।
4: अहम रहती है, क्योंकि घर का जो है माँ तो होती है पहली, जो है पहली गुरु, पहली पाठशाला घर से ही सीखता है, तो बच्चों को घर से ही ऐसे संस्कार दिए जाए। और दूसरा टीचर का तो रोल बहुत ही अहम है,
0: जी
4: बच्चे को शेप देनी, बच्चे के
0: बच्चे का जो भविष्य है उसको

0: संपादने में माता पिता के साथ साथ गुरु का बहुत बड़ा हाथ होता है।
1: बच्चे के जीवन को दिशा और दशा देने में अहम भूमिका टीचर की है, इसलिए बच्चों को शुरू से इस तरह की वो दी जाए कि हमारी लाइफ में जो है, मैं कहता हूँ तीन तीन डी की अहम भूमिका है, डिवोशन, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन।
0: जी बहुत अच्छी बात कही आपने। जी जी,
1: तीन डी इसमें बच्चों को जो है शुरू से हम बच्चों को क्योंकि छोटी छोटी जो असफलताओं से बच्चे घबरा जाते हैं, जैसे मार्क्स अच्छे नहीं आ पाए
0: जी,
1: इसलिए डिप्रेशन में चले गए, जो खासकर टीनएजर है
0: जी,
1: जो ये मतलब 15-16 साल की आयु होती है, इसमें बहुत ही
0: युवा जो हमारे हैं जो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। जी जी,
1: ये बच्चों को बताया जाए कि मार्क्स अहम रखते ऐसी बात नहीं है, अहमियत तो रखते, लेकिन मार्क्स देखकर ही हम सक्सेस हो पाएंगे ये
0: ऐसा नहीं,
1: पूरी तरह सही नहीं है।
0: जी जी, जीवन समाप्त नहीं हो जाता उससे, अगर आपके कहीं अंक थोड़े कम आ गए हैं, मार्क्स आपके कुछ कम आए हैं, तो इसमें भी हम यही कहेंगे कि माता पिता का इसमें बहुत ज्यादा रोल है और साथ ही साथ अध्यापक का भी
1: बहुत बहुत बहुत अहम रोल है।
0: बच्चों को उस समय दिलासा देना और फिर से एक पॉजिटिविटी की तरफ उनको लेकर जाना और फिर से उठकर वो पूरे उत्साह के साथ फिर से वो पढ़ाई करें, मेहनत करें।
1: टीनेज में यूथ में एनर्जी बहुत होती है, इसलिए इस एनर्जी को सिर्फ चैनलाइज करना होता है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने,
1: गलत दिशा में भी भटक जाते हैं बच्चे।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: जैसी होती हम जो है नशों की तरफ
0: जी जी,
1: बच्चों को
0: जी
1: ये शुरू से ही टीचर और घर से ही इस तरह का माहौल दिया जाए, मेरा
0: जी जी। तो बात फिर घूम फिर कर वहीं पर आ जाती है कि बच्चों को अगर हम ये सिखा देना और वो भी समय पर, कि अगर आप असफल हो भी गए हैं किसी चीज़ में किसी काम में तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मन में अगर आप दृढ़ता रख लेते हैं, एक कोई संकल्प कर लेते हैं कि इस बार हम असफल हो गए तो कोई बात नहीं, आगे हम एकदम दृढ़ हो जाएंगे, अच्छे से संकल्प ले लेंगे, तो फिर उन्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।
1: बच्चों को ही नहीं, मैं कई बार बड़ों को भी जीवन में इस तरह की परिस्थितियां बन जाती है क्योंकि हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं, तो ऐसे में जो है आपका कोई दोस्त अच्छी भूमिका निभा सकता है, जो आपको कदम कदम पे जीवन की परिस्थितियां आ जाती
0: जीवन में, वो कोई भी हो सकता है जो आपको गिरते हुए संभाल ले, वही आपका सबसे बड़ा दोस्त है। आपने बहुत अच्छे विचार हमारे साथ साझा किए हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि श्रोताओं ने जरूर इन बातों से कुछ ना कुछ सीखा होगा। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका,
1: बहुत बहुत आभार आपका समय देने के लिए,
0: बहुत धन्यवाद,
1: थैंक यू।
2: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे वर्सेटाइल मशीन बद्दी।
3: आपके सपनों का घर हो, फैक्ट्री हो या हो ग्राहकों से भरा शोरूम, हर मंजिल तक आसान और सुरक्षित पहुंच, वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी के साथ
4: आपकी जरूरत के अनुसार हर तरह के लिफ्ट बनाएं, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और भरोसेमंद सर्विस प्रोवाइड कराएं।
3: वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी,
4: अपनी जरूरत के लिफ्ट बनवाने के लिए आज ही संपर्क करें 9736183070।
2: वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी, भरोसा सुरक्षा का।
0: हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। आज हम बात कर रहे हैं कि जीवन में अगर हमें सफल होना हो, सफलता का जो मूल मंत्र है उसको अगर हमें जानना हो तो दृढ़ निश्चय का होना बहुत ज़रूरी है। इसी बारे में हमारे श्रोता हमसे बातचीत कर रहे हैं। चलिए अगली टेलीफोन कॉल लेते हैं। हेलो चंडीगढ़।
5: हेलो चंडीगढ़
0: जी, नाम बताएं अपना।
5: राजपाल सिंह जी।
0: राजपाल जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं पहले ये बताएं।
5: तहसील मरेकोलाई, पिंड चक सिखुपुरकला।
0: अच्छा जी, एक बार फिर से बताएंगे अपनी जगह का नाम।
5: पिंड चक सिखुपुरकला।
0: अच्छा, तो ये कहाँ पर है ये गांव आपका?
5: ये तहसील मरेकोटला से। अच्छा,
0: मरेकोटला।
5: हाँ जी हाँ जी।
0: अच्छा जी, अच्छा, तो आप ठीक हैं?
5: हाँ जी हाँ, छोटे नाम से पहली बार गल हो रही है।
0: जी जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
5: हाँ जी।
0: अच्छा जी, बताएं आप सुन रहे हैं हमारा ये प्रोग्राम?
5: हाँ जी हाँ जी।
0: तो बातचीत का विषय भी जानते ही होंगे।
5: हाँ जी हाँ जी।
0: तो बताएं फिर, कहीं आपको क्या कहना है?
5: हम काम तो जी करने की, काम दी की व्यस्तता करने कोई उम्र नहीं होती सिखाने के कारण दी। हाँ, कहने भी गुमराह था वो, नहीं जो कहने घर से निकले नहीं।

0: जी, तो परीक्षाएं जो है ना ज़िंदगी में आती रहती हैं, मुश्किलें जो हैं वो भी हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं, लेकिन हमारा जो दृढ़ संकल्प है ना, हमारा जो दृढ़ निश्चय है ना कि पार पा लेंगे हम हर परिस्थिति से, वही हमें हारने नहीं देता और बस यही हमें सीखना है इस ज़िंदगी से। अगली टेलीफोन कॉल लेने से पहले एक संदेश आपके लिए प्रस्तुत कर रही हैं, उसके बाद एक सूचना देंगे आपको अपने कार्यक्रमों की और फिर ले लेंगे एक टेलीफोन कॉल।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
0: तो जी, हमारे श्रोता सुन रहे हैं इस समय लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। ये प्रोग्राम आपके लिए विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से प्रसारित किया जा रहा है। आगे बढ़ें उससे पहले आपको याद दिला दें फिर से एक बार कि आज 3:03 से लेकर 4 बजे तक आपके टेलीफोन कॉल्स की हम रिकॉर्डिंग करेंगे FM लाइफलाइन प्रोग्राम के लिए। आज का जो विषय है वो दिल से जुड़ा हुआ है, आपके दिल की जो समस्याएं हैं, दिल के रोग से अगर आप पीड़ित हैं, दिल के बारे में कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं, कुछ भी बातचीत करना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, तो प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी PGI चंडीगढ़ प्रोफेसर यशपाल शर्मा हमारे साथ मौजूद रहेंगे हमारे स्टूडियोज़ में। आप उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, टेलीफोन कीजिएगा हमें आज बाद दोपहर 3:30 से लेकर 4 बजे तक, और टेलीफोन नंबर आप हमारे नोट करें 2660615 2660617 और 2660619। फिर से बताते हैं 2660615 2660617 और 2660619, और STD कोड है चंडीगढ़ का 0172। तो याद रखिएगा, आपको हमें टेलीफोन करना है आज दोपहर 3:30 से लेकर शाम 4 बजे तक। और अब चलिए देखते हैं कौन से हमारे श्रोता टेलीफोन लाइन पर हैं। हेलो चंडीगढ़, हेलो हेलो चंडीगढ़ जी, कौन बोल रहे हैं?
2: नमस्कार मैम, गुड मॉर्निंग।
0: नमस्ते, गुड मॉर्निंग। ये नन्ही सी गुड़िया लग रही है, कोई छोटी बच्ची नाम बताएंगी आप अपना?
2: मैम मैं ममता बात कर रही हूँ।
0: अच्छा ममता जी, पहले तो ये बताएं, पढ़ती हैं आप?
2: नो मैम, मैं हाउस वाइफ हूँ।
0: ओके, तो चलिए फिर तो ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट हो गया।

0: आपकी आवाज़ एकदम ऐसी लगी जैसे कोई छोटा बच्चा बोल रहा है। चलिए ममता जी, अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। कहाँ से बोल रही हैं ये तो बताएं
1: जी मैम।
0: कहाँ रहती हैं आप?
1: मैम मैं बालूगंज शिमला से बोल रही हूँ।
0: शिमला से। अच्छा जी, शिमला से एक और श्रोता का फोन आ गया। चलिए कहीं क्या कहना चाहती हैं?
1: मैम मैं तो यही कहना चाहूंगी सबसे पहले,
0: उससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं कुछ कहूँ, आप थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगी ताकि आपकी आवाज ऊंची भी हो और साफ सुनाई दे हमारे श्रोताओं को।
1: जी मैम अब आ रही है।
0: हाँ जी, हाँ जी बोलिए।
1: मैम मैं ये कहना चाह रही थी कि हम जब तक अपना जन ही कर लेती, चाहे वो पढ़ाई के बारे में हो चाहे वो खेल कूद के बारे में हो। हेलो।
0: हाँ जी, हाँ जी बोलो, सुन रहे हैं हम, बोलिए आप।
1: चाहे वो पढ़ाई के बारे में हो चाहे खेल के बारे में हो।
0: हाँ हाँ
1: तो मैम मैं अपनी बात कहना चाहूंगी। मैम मैं कबड्डी प्लेयर हूँ।
0: अच्छा, आप कबड्डी प्लेयर हैं आप?
1: जी मैम।
0: जी बहुत बढ़िया, तब तो आपको पता होगा अभी एशियन गेम्स हो रहे थे जापान में, है ना, और हमारी भारत की जो कबड्डी की टीम है वो जीत कर आई है।
1: जी मैम बिल्कुल।
0: अच्छा जी, चलिए बताइए।
1: तो मैम मैं ये कहना चाहती हूँ, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कोई भी हो, हमें मतलब जिस तरह से संकल्प लेते हैं उन्हें पूरा करते भी है, क्योंकि उसमें चढ़ाव भी आते हैं मैम।
0: हाँ हाँ
1: तो मैम हमें कई लोग ऐसा करते हैं कि वो जो चुनौती आती है उसके पीछे हट जाते हैं।
0: सही
1: तो
0: कहा, सही कहा आपने। देखो क्या होता है कि जो सफलता है ना, वो सिर्फ इसलिए आप हासिल नहीं कर सकते कि किसी चीज़ का आप में कोई टैलेंट है, उसको हासिल करने के लिए करनी पड़ती है मेहनत, है ना, हार्डवर्क करना पड़ता है, और वो करने के लिए आपके मन में होना चाहिए दृढ़ निश्चय।
1: मैं एक बात और कहना चाहूंगी। मैं अपनी ही बात कहना चाहूंगी। मैं 4 बार एग्जाम छोड़ चुकी थी,
0: हाँ हाँ
1: फिर भी मैंने अपना दिल ये रखा कि नहीं मुझे बैठना नहीं है, मतलब मुझे वापस नहीं जाना घर, मतलब जिस तरीके से काम कर रही है हमें पूरा करना ही है।
0: जी बहुत अच्छी बात आपने कही, और आपने जो प्रयास किया उसकी सराहना हम करते हैं। आपने हमें कॉल किया, हमसे बात की, बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। श्रोतो आज हम बात कर रहे हैं दृढ़ निश्चय के बारे में। हेलो चंडीगढ़।
2: नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ फैक्ट्री कॉमन से।
0: जी नमस्कार, स्वागत
2: जी,
0: है आपका इस कार्यक्रम
2: में। आज के विषय
0: में
2: मैं ये कहना चाहता हूँ
0: जी,
2: कि मन में हो विश्वास तो हम होंगे कामयाब।
0: बिल्कुल बिल्कुल, पूरा है विश्वास
2: जी, मेहनत करनी चाहिए और हमें आलस नहीं करना चाहिए। जो हमारे जिम्मे काम है उसके बारे में हमें पूरा पूरा विश्वास होगा कि ये हो जाएगा अगर हम लगन से काम करेंगे तो।
0: जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखिए ना, जैसे अभी हम बात कर रहे थे अपने पिछले श्रोता से कि सफलता जो है वो सिर्फ आप में अगर कोई प्रतिभा है या आपको कोई अवसर मिले हैं, कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, तो सिर्फ उसी से आपको सफलता नहीं मिलती है, उसके
2: जी,
0: पीछे लगातार प्रयास रहता है,
2: जी,
0: और
2: जी,
0: एक जो हार ना मानने का जो जज्बा है ना वो
2: हाँ
0: भी
2: जी,
0: रहता है। तो
2: जी,
0: ये
2: जी,
0: हार ना मानने का जज्बा हमें लगता है कि वहीं से आता है, जब आप दृढ़
2: हाँ
0: निश्चय
2: जी
0: कर लेते हैं मन में कि
2: जी
0: हमें हार
2: जी
0: नहीं माननी है।
2: इरादा पक्का होना चाहिए जी हमारा।
0: जी
2: और
0: जी जी
2: हम इस विषय में यह कहना चाहते हैं जी कि परीक्षा कोई भी हो, चाहे वो पढ़ाई की हो चाहे वो सर्विस की हो चाहे वो किसी भी काम की कला कौशल की हो, हमें उसे पूरी लगन से करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। हमें आलस नहीं करना कि चलो नहीं हम सफल हुए तो हम छोड़ दें, तो ये विश्वास हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि ये विश्वास करना है कि हमें सफलता मिलेगी, बार बार हम इस प्रयत्न करेंगे जी।
0: इसके लिए बहुत जरूरी है पॉजिटिव रहना। पॉजिटिव सोच नहीं होगी हमारी जब तक, तब तक हम कोई भी निश्चय नहीं कर पाएंगे,
2: जी जी
0: है ना जी। बहुत
2: जी
0: अच्छी बात आपने कही है,
2: हाँ जी, थैंक यू वेरी,
0: थैंक यू सो मच जी। देखिए श्रोता कितनी अच्छी बातें हम तक पहुंचा रहे हैं, और कितनी अच्छी और कितनी सकारात्मक सोच है हमारी श्रोताओं की। हमें पूरी उम्मीद है कि ये प्रोग्राम जो श्रोता सुन रहे हैं, जो हमें कॉल नहीं कर पाए, कनेक्ट नहीं कर पाए, उन तक ये बातें तो ज़रूर पहुंच रही हैं, तो वो अपनी जीवन को इन बातों के आधार पर ज़रूर ढालने का प्रयास करेंगे। हेलो।

0: हेलो चंडीगढ़ जी, तो हम बात कर रहे थे कि दृढ़ संकल्प अगर हो, अगर आप में ये सोच है कि जो भी मुश्किल परिस्थिति हमारे सामने आएगी उससे हम ज़रा भी इधर से उधर नहीं होंगे, अपना जो लक्ष्य हमने एक साधा है उससे हम भटकेंगे नहीं, तो फिर रास्ते में कितनी भी रुकावटें आएँ आप सफलता पा ही लेंगे। हेलो चंडीगढ़
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं अपना। हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, अपना नाम बताएं।
1: हेलो
0: हेलो, हम सुन रहे हैं आपको, अपना नाम बताइए।
1: जी, मेरा नाम अशोक है।
0: अशोक जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: हाँ जी, आपका विषय बहुत अच्छा है, संकल्प पे।
0: जी, आपका क्या विचार है इसके बारे में,
1: हाँ जी,
0: आप क्या सोचते हैं इस बारे में?
1: हाँ, संकल्प ऐसा है जी, जैसे हमारा कोई बर्थडे होता है या नया साल करता है तो
0: जी, हम संकल्प
1: हम
0: कर
1: अपने
0: लेते हैं।
1: अपने आप से संकल्प करते
0: हाँ
1: हैं
0: जी, हाँ जी, बिल्कुल।
1: कि मैं रेगुलर स्टडी करूँगा
0: हाँ,
1: या कोई बुरी आदत को छोड़ दूंगा। तो संकल्प एक ऐसा वर्ड है, इसमें ही बहुत शक्ति है।
0: जी
1: अगर हमने जो निश्चय किया है उसको, उस पर हम कायम रहें, निश्चय कर जीत
0: जी
1: कायम रहें, जो हमारे अंदर बुरी आदतें हैं तो हम उसको छोड़ने की कोशिश करें।
0: जी, प्रयास करना बहुत ज़रूरी है।
1: हाँ, प्रयास तो कम से कम प्रयास तो करें। हाँ,
0: जी, अब देखिए ना, हर
1: प्रयास,
0: बार तो परिस्थितियां हमारे पक्ष में नहीं हो सकती ना।
1: हाँ, नहीं हो सकती, इसलिए उनको कोशिश करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार
0: हार
1: नहीं
0: नहीं
1: होती।
0: होती, और जो हमारा दृढ़ निश्चय है ना भाई, हमें तो लगता है कि वही हमें परिस्थितियों से लड़ने की ताकत भी देता है।
1: हाँ, बस कोशिश करने से ही कामयाबी मिलती है। पढ़ने
0: जी,
1: वाले पढ़े, और जो कारोबार कर रहे हैं या उनमें तो कोई बुरी लत है तो उनको कम से कम छोड़ने की कोशिश करें।
0: जी बिल्कुल। अब कई बार हम गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं, तो
1: हाँ,
0: उससे भी हम सही रास्ते पे, अच्छे रास्ते पे वापस मुड़ सकते हैं, अगर
1: मुड़
0: हमने
1: सकते
0: निश्चय कर
1: हैं।
0: लिया है, सफल हो सकते
1: हाँ,
0: हैं उसमें भी।
1: अगर संगति बुरी है ना, उनको छोड़ दो,
0: जी
1: जो हमारे संगति में बैठना उठना है ना,
0: जी जी
1: तो उनको छोड़ दो और संकल्प करो कि उनसे ज्यादा बातचीत या ना करें, और अपने निश्चय की तरफ बढ़ते चलें।
0: और अपने जीवन को और भी थोड़ा सा सुंदर बना ले हम, है ना,
1: हाँ,
0: ईश्वर
1: बस
0: की देन है इतनी
1: यही
0: अच्छी।
1: मैं कहना चाहता था
0: जी,
1: संकल्प के बारे में। हाँ
0: बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छी बातें की हैं। फोन करने के
1: जी,
0: लिए
1: धन्यवाद
0: आपका बेहद धन्यवाद।
1: जी।

0: जी, मंजिल कितनी दूर है ये शायद उतना मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हमारे कदम कितने दृढ़ हैं। संकल्प मजबूत होना, दृढ़ निश्चय होना, तो मुश्किल रास्ते भी आसान से लगने लगते हैं, है ना श्रोताओं? तो आज हमने इसी दृढ़ निश्चय के बारे में बातचीत की हेलो चंडीगढ़ में। अब इस कार्यक्रम का जो समय है यहाँ पर समाप्त हो रहा है। सुनीता भगत को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: हेलो हेलो, कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़,
2: हेलो चंडीगढ़,
1: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे वर्सेटाइल मशीन बद्दी।
3: आपके सपनों का घर हो, फैक्ट्री हो या हो ग्राहकों से भरा शोरूम, हर मंजिल तक आसान और सुरक्षित पहुंच, वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी के साथ।
4: आपकी जरूरत के अनुसार हर तरह के लिफ्ट बनाएं, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और भरोसेमंद सर्विस प्रोवाइड कराएं।
5: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
6: क्या ऐसी कोई पॉलिसी है जो दे लाइफ टाइम सम अशर्ड के 10% का एनुअल इनकम और शॉर्ट और फ्लेक्सिबल पेमेंट टर्म चूज करने की फ्रीडम?
7: है ना, LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी।
6: अच्छा, और अगर मुझे लिक्विडिटी की फैसिलिटी जैसे लोन अगेंस्ट पॉलिसी, टैक्स बेनिफिट और डेथ कवर भी चाहिए हो तो?
7: है ना, LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी।
6: अरे इतना सब कुछ एक ही पॉलिसी में? ये पॉलिसी है ऑलराउंडर।
8: LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी यानी आपके सेलिब्रेशन का रीजन और गारंटीड खुशियां, सभी का भरोसा और LIC की गारंटी। बिक्री समापन के पूर्व अधिक जानकारी और जोखिम घटकों, नियम और शर्तों के लिए विक्री पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
0: ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। आइए अब सुनते हैं।

0: हैं। यदि ऐसे लोगों को अपने आसपास में ढूंढा जाए तो शराब की लत से जूझ रहे या शराब के आदी हो गए लोगों को ढूंढ पाना ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। शराब की लत आज केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति, परिवार और पूरे समाज को प्रभावित करने वाली गंभीर समस्या है। जब कोई व्यक्ति बार बार शराब का सेवन करता है और धीरे धीरे शराब उसके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है, तो वह अपनी इच्छा और नियंत्रण को खोने लगता है। इसका प्रभाव उसके शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति, पारिवारिक आर्थिक जीवन, सामाजिक संबंधों और आत्मिक जीवन पर भी पड़ सकता है। कैसे एक व्यक्ति शराब की लत में पड़ जाता है और अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है, जी हाँ श्रोताओं, इन सभी पहलुओं पर हम विचार करने वाले हैं। आज का कार्यक्रम इसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर है, जिसमें हम इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे और शराब की लत से कैसे छुटकारा पाएं इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। प्रिय श्रोताओं नमस्कार, मैं प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम आशा करते हैं कि आप सभी अपने परिवार के साथ आनंदित होंगे। दोस्तों, इससे पहले हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़े, हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है
1: 8527449955। जी हाँ, 8527449955।
2: और हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 110001।
0: आज का कार्यक्रम शराब की लत से कैसे छुटकारा पाएं इसके विषय में चर्चा करेंगे।
3: एक छोटे से शहर में रमेश नाम का एक सीधा साधा आदमी रहता था। रमेश एक कंपनी में काम करता था और अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ खुशी खुशी रहता था। एक दिन दफ्तर के दोस्तों के दबाव में रमेश ने पहली बार थोड़ी सी शराब चखी। उसे यह अजीब लगा, लेकिन दोस्तों की देखा देखी उसने इसे शान की बात मान लिया। धीरे धीरे कभी कभी की जाने वाली यह पार्टी हर हफ्ते की आदत बन गई। हर दिन पूरे मन से रमेश पास की शराब की दुकान पर जाता था, चाहे सुबह का समय हो या शाम का, या दुकान बंद होने का समय हो। रमेश हमेशा उसी दिशा में दृढ़ निश्चय के साथ बढ़ता रहता था। उसके मन में बस एक ही विचार बार बार घूमता रहता था, हे भगवान, काश दुकान बंद हो। लेकिन फिर दुकान खुलते ही चमकती बोतल उसे अपनी ओर खींच लेती। कुछ ही मिनटों में एक प्लास्टिक की थैली में बोतल लिए रमेश वहां से निकला। कभी खरीदारी से खुश होता तो कभी खुद को कोसता।
4: दरवाजा खोलो।
0: अरे रमेश, तुझे क्या हुआ? तू तो पहचानने में भी नहीं आ रहा। ये क्या हाल बना रखा है भाई, तू तो बहुत कमजोर हो गया है।
4: हाँ भाई कमल, थोड़ा बीमार हो गया हूँ, हॉस्पिटल जा रहा हूँ। और तू सुना, तू कैसा है?
0: और तेरी नौकरी कैसी चल रही है? पिछली बार तो तूने बताया था कि तेरी प्रमोशन हो गई है और तनख्वाह भी डबल हो गई है।
4: क्या बताऊँ भाई, शराब के कारण नौकरी भी चली गई और बच्चे का नाम भी स्कूल से कट गया, बीमार और हो गया।
0: यार जितना मैं तुझे जानता हूँ, तू तो शराब, सिगरेट, पान, तम्बाकू जैसी चीजों को हाथ भी नहीं लगाता था।
4: हाँ भाई कमल, था तो ऐसा ही, लेकिन दोस्तों की संगति के कारण एक दो बार शराब पी फिर लत लग गई। अब शराब छोड़ना चाहता हूँ ताकि सब ठीक हो जाए।
0: भाई अपना ख्याल रख, और मैं तो चाहूंगा कि तू जल्दी ठीक हो जाए।

0: इनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है और दोनों लीवर पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। इनको बचाना मुश्किल होगा।
1: कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, किसी भी तरह इन्हें बचाने की कोशिश कीजिए।
0: देखिए, हमने अपनी ओर से सारी कोशिश कर ली है, लेकिन अब स्थिति हमारे हाथ से बाहर जा चुकी है। अब हम कुछ नहीं कर सकते।
2: सुनीता, मुझसे बड़ी भूल हो गई, जो मैंने केवल शौक

के लिए शराब पीना शुरू किया। अब मैं चाहकर भी अपने आप को नहीं बचा सकता। मुझे माफ़ कर देना, काश मैं तुम्हारी बात मान लेता और शराब छोड़कर अपने परिवार पर ध्यान देता।

प्रिय श्रोताओं, शराब की लत अचानक नहीं लगती। कई बार व्यक्ति मजे में या फिर तनाव में आकर या फिर दोस्तों के साथ बैठकर या परिवार के वातावरण में बहुत सी समस्याओं का सामना करते हुए अपने जीवन में परेशान होकर शराब पीना शुरू कर देता है। शराब में उसे लगता है कि वह जब चाहे शराब छोड़ सकता है, लेकिन धीरे धीरे इसका यह सेवन आदत और फिर निर्भरता में बदल सकता है। किसी भी व्यक्ति के शराबी होने के कई कारण हो सकते हैं। किसी व्यक्ति के शराब का आदि होने का एक बड़ा कारण उसका वातावरण भी हो सकता है, परिवार, समाज या वो स्थान जहां वह रहता है, और बुरी संगति उसके जीवन को प्रभावित कर सकती है। जो बच्चे शराब पीने वाले परिवारों में बड़े होते हैं, उनमें ये डर हो सकता है कि वे भी अपने माता पिता जैसे बन जाएंगे। कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि अगर मेरे पिता शराब पीते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इस प्रकार बच्चे अपने माता पिता के व्यवहार से बहुत कुछ सीखते हैं। इसी तरह संस्कृति और समाज का प्रभाव भी व्यक्ति पर पड़ता है। कुछ संस्कृतियों या समाजों में शराब पीना बहुत बड़ी बात मानी जाती है और इसे बहुत सामान्य रूप से देखा भी जाता है। इससे विशेषकर युवाओं को शराब पीने के लिए प्रोत्साहन मिलता है और बाद में वे इसके आदी बन जाते हैं। कई बार वर्तमान में तनाव के कारण व्यक्ति शराब की लत में पड़ जाता है। बहुत से लोग किशोरावस्था में शराब पीना शुरू कर देते हैं। इस उम्र में व्यक्ति के जीवन में चिंताएं, डर, अपराध, निराशा और कई अन्य समस्याएं आ सकती हैं। कभी कभी परिवार में तनाव होने के कारण भी व्यक्ति शराब का सेवन करना शुरू कर देता है। ऐसी परिस्थितियों में वह शराब को तनाव से बचने या खुशी पाने का एक साधन समझ लेता है। कई बार टेलीविजन और फिल्मों में भी लोग ये देखते हैं कि कुछ पात्र शराब पीकर अपना तनाव कम करते हैं। इसके अलावा जब कोई व्यक्ति अपने दोस्तों को शराब पीते हुए आनंद लेते देखता है तो वह भी उनके साथ शामिल हो जाता है। इसी प्रकार मानसिक तनाव के कारण विशेषकर कुछ युवा खुशी पाने या तनाव से राहत पाने के लिए शराब पीना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में वे उसे केवल आराम या तनाव कम करने के लिए लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे इसके आदी हो जाते हैं और उनका जीवन प्रभावित होने लगता है। लेकिन ये शराब की लत कैसे छूट सकती है, ये एक सबसे बड़ा विषय है। प्रिय श्रोताओं, कभी कभी बहुत से लोग बिना किसी ट्रीटमेंट के शराब छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को डॉक्टर की सहायता की आवश्यकता होती है। जब कोई व्यक्ति अचानक शराब छोड़ने की कोशिश करता है तो उसे कमजोरी, अधिक पसीना आना, घबराहट, बेचैनी और निराशा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ मामलों में शराब छोड़ना गंभीर और खतरनाक भी हो सकता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए ताकि वो अपनी समस्याओं को उसे बता सके और वो उसका इलाज सही तरीके से कर सके। कई बार जब शराब का आदि व्यक्ति घर पर शराब छोड़ने की कोशिश करता है तो वह कुछ दिनों तक अपने आप को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन जब वो फिर उसी वातावरण में जाता है या पुराने दोस्तों से मिलता है तो उसे दोबारा शराब पीने की इच्छा हो सकती है। पुनर्वास केंद्र यानी कि रिहैबिलिटेशन सेंटर, उस स्थान पर ऐसे लोग एक साथ रहते हैं जो शराब छोड़ने का प्रयास कर रहे होते हैं। इसमें वह एक दूसरे को समझ सकते हैं, अपनी समस्याएं साझा कर सकते हैं और एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं। वहां प्रशिक्षित काउंसलर भी होते हैं जो उन्हें समय समय पर मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करते हैं। शराब छोड़ना हर व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता। लंबे समय से अधिक मात्रा में शराब पीने वाले व्यक्ति को अचानक शराब बंद करने पर गंभीर समस्याएं हो सकती हैं और ऐसे समय में उन्हें पुनर्वास केंद्र जाकर अपना इलाज कराना जरूरी हो जाता है। बहुत से लोग तनाव, अकेलापन या जीवन की कठिन परिस्थितियों के कारण शराब का सहारा लेने लगते हैं। इसलिए जो व्यक्ति शराब छोड़ना चाहता है उसे केवल डांटना या उससे दूरी बनाना पर्याप्त नहीं है। हमें उसके करीब जाना चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए और भावनात्मक सहायता देनी चाहिए। हर क्षेत्र में लोगों को शराब और नशीले पदार्थों के प्रभाव और उनके नुकसान के बारे में उचित शिक्षा देने की आवश्यकता होती है। कई बार लोग शराब के वास्तविक प्रभावों को

जाने बिना इसे पीना शुरू कर देते हैं। जो व्यक्ति शराब छोड़ना चाहता है उसके लिए भी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे व्यक्ति को शिक्षा देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। साथ ही उसे यह भी जानना चाहिए कि शराब की निर्भरता से बाहर आने के लिए कहां से सहायता प्राप्त की जा सकती है और किन परिस्थितियों से उसे बचना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, एक बहुत पुरानी कहावत है और इस कहावत में कहा गया है कि शराब ठट्टा करने वाली और हुल्लड़ मचाने वाली है। जो कोई इसके कारण भटक जाता है वह बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। शराब व्यक्ति के निर्णय और व्यवहार को प्रभावित करती है। जो व्यक्ति शराब के कारण अपने विवेक और नियंत्रण को खो देता है वह व्यक्ति बुद्धिमानी से काम नहीं कर रहा। कई बार शराब पीने वाला व्यक्ति सोचता है कि वो शराब को नियंत्रित कर रहा है, लेकिन असल में जब शराब उस व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण करने लग जाती है तब वह उसके जीवन की आदत नहीं बल्कि वो उसके जीवन की जंजीर बन जाती है। समस्या तब शुरू होती है जब जिस चीज को हम नियंत्रण करने की सोचते हैं वही हमें धीरे धीरे नियंत्रित करने लगती है। प्रिय श्रोताओं, इसके कई बुरे परिणाम होते हैं। दुख, झगड़ा, शिकायत, चोट, गलत निर्णय, शराब की लालसा, शराब को छोड़ने में कठिनाई उत्पन्न होना, ये तमाम चीजें व्यक्ति को अपने जीवन में सहनी पड़ती है। यहाँ तक कि वो आर्थिक रूप से भी कमजोर हो जाता है। बहुत सारे लोग शराब पीने के लिए चोरी करने लगते हैं, गलत काम करने लगते हैं, घर से पैसा चुराने लगते हैं। ये तमाम चीज़ें उनकी डिग्निटी यानी कि उनके गौरव पर भी प्रभाव डालती है और साथ ही साथ समाज में उसे अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। हर व्यक्ति को समाज में एक अच्छी पहचान बनानी चाहिए।

अभी आपने सुना ऐश्वर्या पंडित की आवाज़ में ये गीत। आप सुन रहे हैं इस समय कार्यक्रम सुरबहार। अब आप सुनेंगे कैलाश खेर की आवाज़ में ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरबहार। ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम संजीवनी।
1: नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस, आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
2: श्रोताओ नमस्कार, संजीवनी प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अनिल पुंज, और आज इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं योगाचार्य रोशन लाल जी। रोशन जी रोशनी डालेंगे जिस विषय पर, वो है योग और आयुर्वेद। इनका आपसी क्या संबंध है और किस तरह से आयुर्वेद का जो आधार है वात पित्त कफ, इसको संतुलित करने के लिए योग किस तरह से अपना योगदान देता है, बस इसी विषय पर आज हम बातचीत करेंगे, विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
3: धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस प्रोग्राम में आने का मौका दिया
2: जी। और जब जब हमने बुलाया आप थोड़े से समय में चले आए हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारे दूर दराज रहने वाले जो श्रोता हैं वो लाभान्वित होते हैं, घर बैठे उनको जानकारी मिलती है। तो चलिए रोशन जी, फिर हमें विस्तार से समझाइए योग और आयुर्वेद का संबंध।
3: तो सर, जैसे हम योग की बात करते हैं, योग में हम अलग अलग कंपोनेंट्स, टूल्स, आजकल के संदर्भ में देखें तो फिजिकल एस्पेक्ट को अगर हम लेके बात करें, और फिर दूसरा अगर मन को लेके, और फिर प्राणों को लेके, तो अगर हम बिल्कुल आधार बेस की बात करें शरीर की, तो आयुर्वेद के हिसाब से योग कार्य करता है। जैसे आयुर्वेद के तीन पिलर हैं, तीन स्तंभ हैं, जिसको आयुर्वेद में

0: त्रिदोष कहा जाता है। वात, पित्त और कफ, ये तीन हमारे शरीर के पिलर हैं, और इन तीनों में अगर किसी तरह का इम्बैलेंस, असंतुलन आता है तो शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं।
1: जी,
0: तो एक तो उपचार होता है कि हम अपने खान पान से उसको ठीक करें, आयुर्वेद के आधार के हिसाब से वात है तो
1: हाँ, वो तो आयुर्वेद में बताया गया है कि अगर आपको वात है तो ये करना है या ये नहीं करना है, पित्त है तो ये करना है या नहीं करना है,
0: जी।
1: ऐसे ही कफ के बारे में भी है,
0: कफ के बारे में।
1: लेकिन आज इस प्रोग्राम में हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप योगाचार्य हैं, कि इन तीनों को बैलेंस करने के लिए हमें योग का किस तरह से सहारा मिलता है।
0: जी,
1: तो पहले हम बात करते हैं वात के बारे में।
0: तो जैसे आपने बात की कि वात शरीर के अंदर उस हिस्से में होती है जहां खाली स्पेस है। शरीर की बात करें तो इसमें लार्ज इंटेस्टाइन, हमारी बड़ी आंत, इसमें माना जाता है कि वात का स्थान है मुख्य रूप से। यूं तो पूरे शरीर में सारे में कहीं ना कहीं हवा है,
1: जी,
0: पर अगर हम मुख्य रूप में माने तो वात जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत का थोड़ा हिस्सा और बड़ी आंत पूरी।
1: बड़ी आंत में जो है वात रहती है,
0: वात का स्थान है, मुख्य स्थान है।
1: अच्छा।
0: और बढ़ती आयु के अनुसार ये जोड़ों में भी चली जाती है, तो बुजुर्गों को हम कहते हैं कि अब गठिया की प्रॉब्लम होगी, जोड़ दर्द शुरू होगी, तो वो वात इम्बैलेंस, वात असंतुलित होने के कारण होता है। तो जैसे हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, बड़ी आंत की बात कर रहे हैं, तो योग कहता है कि वात को पहले बैलेंस में लाने के लिए थोड़ा खाने पर ध्यान दें। जो गैस्ट्रिक बनाती है वो चीज ना खाएं, गोभी ना
1: वो
0: खाएं,
1: तो आयुर्वेद में बताया गया है,
0: चने ना खाएं, ऐसा ऐसा। फिर भी आपकी वात अगर बढ़ गई या कम हो गई, स्टूल ठीक से पास नहीं हो रहा, कॉन्स्टिपेशन हो गई,
1: पेट भारी भारी गैस
0: बहुत ज्यादा बन गई, तो योग में इमीडिएट रिलीफ के लिए 2-3 आसन हम रिकमेंड करते हैं।
1: अच्छा।
0: तो इसमें वज्रासन रिकमेंड किया जाता है कि जैसे ही आप वज्रासन में बैठे तो
1: मतलब ये फर्स्ट एड के रूप में काम करेगा,
0: फर्स्ट एड के रूप में इमीडिएट विद इन 2-3 मिनट्स काम करेगा। और मेरी बात का विश्वास नहीं करना है, आपने भी नहीं करना, जो सुन रहे हैं उन्होंने भी नहीं करना है। पहले आपने बैठ के देखना है, 2-3 दिन बैठो, चौथे दिन आप कहोगे इसके बिना मैं रह नहीं सकता।
1: और अगर आप अभी अभी बैठ के देखना चाहते हैं तो बात करते करते बैठ के देख ले,
0: बिल्कुल बिल्कुल बैठ सकते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद तो इसमें बैठना ही चाहिए। तो खाने में अगर हमने कोई वात की चीज खा ली है,
1: मतलब जैसे ही खाना हमने खत्म किया
0: जी,
1: उसके तुरंत बाद हमें वज्रासन में
0: बैठना,
1: बैठ जाना
0: तो वात का रोग नहीं होगा। वात यहाँ तो हमारे गुदा द्वार से पास हो जाएगी या डकार के रूप में मुंह से पास हो जाएगी,
1: मतलब अपने अड्डे से ही गायब हो जाएगी
0: जी। तो जो एक्स्ट्रा जो वात है, इस बात का ध्यान रखें, हम वात शरीर से खत्म नहीं होगी, लेकिन जो इम्बैलेंस है वो क्योर होगा,
1: मतलब कंट्रोल हो जाएगा,
0: बैलेंस हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, ना ज्यादा रहेगी ना कम रहेगी। वात शरीर में ज्यादा तो भी नुकसान करेगी, कम है तो भी नुकसान करेगी। योग संतुलन लेके आता है।
1: बिल्कुल सही। हम आज योग के द्वारा इस संतुलन को कैसे बनाया जा सकता है उसी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आप हमें ये बता दीजिए कि वज्र आसन में बैठना कैसे है, क्योंकि बहुत से लोग बैठते तो हैं
0: जी,
1: लेकिन सही तरीका क्या है वो आमतौर पर मालूम नहीं होता।
0: वज्रासन में हम दोनों घुटनों को मोड़ के पीछे की तरफ पंजे निकाल देते हैं, दोनों घुटनों के ऊपर, जैसे हम बच्चा खड़ा होता है तो घुटनों के बल खड़े होना है, और अपने नितंबों को, पेल्विक को पीछे अपनी एड़ियों पर टिका देना है। एड़ियां खुली होनी चाहिए, पैरों के अंगूठे मिले हो सकते हैं।
1: हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था कि आमतौर से कुछ लोग जो बैठते हैं पीछे पैर जो है आपस में मुड़े होते हैं
0: जी,
1: मुड़ने के आकार में होते हैं,
0: एक दूसरे के ऊपर होते हैं,
1: ऊपर होते हैं या मुड़े
0: नहीं
1: होते हैं,
0: रखने
1: पीछे वो बिल्कुल सीधे नहीं होते हैं,
0: सीधे भी नहीं करने, थोड़े से टिल्टेड, एड़ियां बाहर निकल जाएंगी।
1: अच्छा, एड़ियां बाहर निकल जाएंगी,
0: एड़ियां बाहर,
1: दोनों में गैप रहे,
0: थोड़ा एड़ियों में गैप रहेगा, पैरों के अंगूठे मिले रहेंगे,
1: पैरों के अंगूठे मिले रहेंगे और एड़ियां बाहर होंगी,
0: एड़ियां बाहर हो जाएंगी। फिर भी ध्यान रखना है कि अगर आपके एंकल में, टखनों में दर्द आता है तो आप नीचे तकिया रख सकते हैं उसके, या बेड के कॉर्नर पे बैठ सकते हैं पंजे थोड़े नीचे करके।
1: वैसे रोशन जी, जो कभी बैठा नहीं
0: उसके लिए
1: आज अगर वो शुरुआत करेगा तो दर्द तो निश्चित है। एक बार
0: उसको लगता है कि अगर एज है, ज्यादा स्टिफ है बॉडी, शरीर अगर थोड़ा लचीला नहीं है, जकड़न है, तो मुश्किल आएगी, नहीं तो मुश्किल नहीं आएगी।
1: तो ये तरीका है वज्रासन में बैठने का
0: जी,
1: जो आपने बताया
0: जी। एक तकिया टखनों के नीचे रख ले, दूसरा जो है तकिया बीच में, घुटनों के पास बीच में रख ले।
1: कितनी देर के लिए बैठ?
0: 2 मिनट से शुरू कर ले और धीरे धीरे 10 मिनट तक लेके जाए।
1: और फिर भी बात नहीं बनती?
0: बनेगी, ऐसा हो गया ना बने,
1: मान लीजिए नहीं बनी,
0: टाइम बढ़ा दीजिए।
1: अच्छा,
0: एक तो ये है, दूसरा फिर और उपचार बहुत है,
1: उसमें योग की कोई और क्रिया हो
0: जी। अगर गैस्ट्रिक हमारे

0: ज्यादा हो जाती है। गैस्ट्रिक एक होता है, गैस की प्रॉब्लम एक होता है गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक मतलब हमारे एसिड भी बन रहा है और गैस भी बन रही है।
1: अब वो तो विषय एक्सपर्ट का हो गया ना।
0: हाँ जी, तो उसमें योग में बहुत इमीडिएट रिलीफ है दवाई से भी पहले, यानी दवाई तो बहुत देर बाद काम करेगी, चाहे आयुर्वेद की है चाहे,
1: क्योंकि आज हम फर्स्ट एड के रूप में जानना चाह रहे हैं। ये जो आसन है जो आपको तुरंत प्रभाव से जो है राहत देते हैं।
0: जैसे योग में कहते हैं कि कुछ चीजें चमत्कार करती हैं, तो वज्रासन एक चमत्कार की तरह है। इसी तरह से अगर आप बात करें कि एक क्रिया होती है कुंजल क्रिया, क्योंकि आज जब बात कर रहे हैं हम वात पित्त कफ पे बेस कर रहे हैं, कोई आसन पे बेस आपा नहीं कर रही, तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम खत्म करने के लिए फिर हम कुंजल क्रिया कहते हैं कि पानी पीना है 2-3-4 गिलास कोसा पानी, हल्का नमक डाल के। ये ध्यान रखना है कि बीपी हाई ना हो।
1: ये जो क्रिया है ये भी योग के अंतर्गत कुंजल क्रिया
0: कहते हैं। कुंजल जो है वो हाथी शब्द से लिया गया, हाथी को कुंजर कहा जाता है
1: जी,
0: तो इसे व्याघ्र क्रिया भी कहते हैं, इसे वमन क्रिया भी कहते हैं। तो इसमें पानी पी के निकालना होता है, नॉर्मल भाषा में हम कहते हैं उल्टी करना कह देते हैं
1: कि पानी पीना है,
0: और राइट हैंड की पहली दो उंगलियां नाखून ना हो, जीभ पे रगड़नी है बैठ के,
1: अच्छा,
0: तो वो पानी सारा पिया हो बाहर आ जाएगा।
1: हाँ।
0: तो जो अंदर गैस्ट्रिक है एसिड है वो सारा बाहर आ जाएगा, जलन हो गई बाहर आ जाएगी। जब एसिड नहीं बनेगा तो फिर गैस नहीं बनेगी
1: जी,
0: और उसके ठीक आधे घंटे बाद दलिया या खिचड़ी खाना है। तो ये हम ऐसे नहीं कह सकते कि कुंजल क्रिया करने से हमारा एकदम ठीक हो जाएगा। उसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि उसकी कितनी देर बाद और क्या खाना है, फिर कुंजल अच्छे से काम करेगा
1: जी।
0: तो कुंजल क्रिया तो योग की हो गई, वात आयुर्वेद की हो गई, और खाना फिर आयुर्वेद का हो गया कि अगर आपका वात बढ़ता है तो गोभी
1: नहीं खानी और माँ की दाल
0: जिससे आपको गैस बनती है। जो हो सकता है किसी को गोभी से ना बने, तो आपने अपने आप को जानने की कोशिश करनी है कि आपको किस चीज से गैस बनती है। दलिया और खिचड़ी खाने से ज्यादातर नहीं बनती, तो कुंजल के बाद वो खाएं, 3 दिन करके देखें, हो सकता है आपकी गैस की समस्या खत्म हो जाए।
1: तो ये संबंध है
0: वात पित्त कफ में, वात
1: आयुर्वेद और
0: योग का
1: जी जी। तो ये वात की बात आपने बताई, अब हम बात करते हैं पित्त के बारे में
0: जी।
1: कुछ लोगों की प्रकृति जो है वो पित्त की होती है
0: जी,
1: तो ऐसे लोगों में ज्यादा क्या होता है और कौन कौन से योग क्रियाएं हैं, आसन हैं, जिन्हें करके वो इसे शांत कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं।
0: तो सिंपल है, एक तो हमने पहले डिस्कस किया कि कुंजल क्रिया, इसलिए मैंने कहा गैस्ट्रिक, कि एसिड बनेगा तो पित्त और गैस, अच्छा, बनेगी
1: पित्त में भी कुंजल क्रिया
0: तो तीनों में काम करेगा, वात पित्त और कफ तीनों को बैलेंस, अच्छा, करेगा। लेकिन फिर भी अगर हम प्रॉपर पित्त की बात करें तो पित्त में एक क्रिया होती है, हम शंख प्रक्षालन कहते हैं, योग की भाषा में कहते हैं हम शंख प्रक्षालन, शंख की तरह, शंख अंदर से कितना गुंजल
1: प्रक्षालन
0: जी। उसमें पानी पीते हैं और 5 आसनों का अभ्यास करते हैं, 2 गिलास पानी पीते हैं, 5 आसनों का अभ्यास करते हैं। तो वो जो पानी पीते हैं हम, वो हमारे यूरिनरी पाइप की बजाय वो गुदा द्वार से पास होता है,
1: अच्छा,
0: एनस से पास होता है। तो शरीर के अंदर जितनी जो वेस्ट मटेरियल है, जो बचा हुआ पदार्थ जो पचा नहीं, उसको सारे को बाहर ले आते हैं, तो वो पित्त को बैलेंस करने में बहुत हेल्प करता है। उसके बाद हम कहते हैं दलिया खाइए, खिचड़ी खाइए, और अगर आपके पित्त ज्यादा बनी है तो सुबह उठते ही सौंफ का पानी लीजिए। तो सौंफ का पानी तो हो गया हमारे खाने पीने का हिस्सा,
1: आयुर्वेद का हिस्सा हो गया।
0: और जो
1: 5 आसन आपने बताए,
0: ये ताड़ासन,
1: अच्छा,
0: तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, कटी भुजंग कहते हैं इसको, तिर्यक भुजंग भी कह देते हैं, और कौवा चाल कहते हैं, कागासन
1: जी।
0: तो ये 5 आसनों का अभ्यास करें तो संख्या।
1: इन आसनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दें, क्योंकि ताड़ासन तो आमतौर से लोग जानते हैं
0: जी, और तिर्यक ताड़ होता है पैर खोल के बॉडी को, शरीर को लेफ्ट राइट टेढ़ा करना, साइड बेंड कहते हैं उसको,
1: अच्छा।
0: और कटी चक्रासन होता है शरीर को ट्विस्ट करना, मोड़ना, कंधे घुमाना लेकिन पैर नहीं घुमाना, खड़े खड़े पैर खोल के
1: जी,
0: दोनों तरफ से लेफ्ट राइट। और भुजंग आसन होता है, भुजंग आसन नॉर्मल जैसे करते हैं, उसमें कंधों को मोड़ के पीछे की तरफ दूसरे पैर को देखना, पहले दाईं तरफ फिर बाईं तरफ,
1: पैर खुले
0: रहेंगे और कंधे के ऊपर से पीछे देखना है भुजंग आसन में जाके। और 5वां कौवा चाल काग आसन, जैसे काग चलता है, हाँ, ऐसे बैठ के हम
1: मटक मटक के,
0: हाँ, नीचे, हाँ, पैरों के भार बैठ के,
1: हाँ,
0: और पैरों के भार चलना है, थोड़ा सा गर्दन पीछे घुमा देनी है, जो पैर आगे गया उस तरफ गर्दन पीछे, फिर जो पैर आगे गया उस तरफ गर्दन पीछे।
1: इन 5ों को करने में समय कितना देना है?
0: इन
1: 5ों
0: को करने में कम से कम 5 मिनट लगेंगे, 5 से 10 मिनट लगा लीजिए आप। और 2 गिलास पानी पिया, फिर तीन तीन

0: चार चार बार कीजिए, मैक्सिमम पांच पांच, फिर दो गिलास पानी पिया, ऐसे काफी पानी पिलाते हैं। लेकिन मेरी ये गुजारिश है कि आप इनको किसी की निगरानी में करें, किसी योग शिक्षक की।
1: वो तो हम कहेंगे
0: जी जी,
1: ये तो ये प्रोग्राम तो मात्र आपको जानकारी देने के लिए, तो लेकिन कुछ भी शुरुआत करनी है तो योगाचार्य को मिला जाए और पहले सीख लिया जाए, उसके बाद किया जाए।
0: आपके आसपास कहीं भी योगा स्कूल है, योगा आश्रम है, कोई शिक्षक सिखा रहा है तो उसके पास जाके आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने आप कोशिश करें कि ना करें
1: जी।
0: तो ये संघ प्रशासन के
1: आज रोशन जी ने कहा और आपने करना शुरू कर दिया,
0: करना शुरू कर दिया,
1: कल को गलत हो गया जी, तो फिर आपने कहा कि रोशन जी ने बताया था।
0: हाँ जी, यूट्यूब पे देख लिया, कहीं और सोशल मीडिया से देख लिया। कोशिश करें वन टू वन, जहां आपकी बात हो रही हो, कोई समस्या आती है, जहां प्रश्न पूछ सकते हो, क्योंकि इसके बाद कई बार संघ प्रशालन करने के बाद बॉडी में गैस बनती है।
1: अच्छा,
0: इसलिए ये विशेष रूप से देखा जाता है कि हम उसके बाद खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, तो उसके बाद दलिया या खिचड़ी खाना है, हल्का घी डाल के, फिर वो गैस नहीं बनेगी।
1: 100 बातों की एक बात है कि कोई भी आसन करें, चाहे वात वाले हों, पित्त वाले हों या कफ वाले हों, उसके बाद आपने हल्का और सुपाच्य भोजन लेना,
0: भोजन लेना।
1: ये नहीं कि उसके बाद आपने पकौड़े समोसे,
0: ये तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे जो स्टमक की जो आमाशय की जो दीवार है वो बहुत सॉफ्ट हो गई, बहुत नरम हो गई। अब उस नरम दीवार पे क्या डालेंगे आप, समोसा पकौड़ा पिज्जा क्या डालेंगे? हाँ। तो दलिया खिचड़ी शरीर के लिए स्वस्थ है।
1: कितनी गहरी बातें हैं
0: जी,
1: इनको सबसे पहले समझना कितना जरूरी है, उसके बाद जीवन में ढालना, फिर उसके अनुरूप अपने जीवन को बनाना
0: जी,
1: तो ये अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है।
0: पैकेज पित्त के बारे में जो हम बात कर रहे थे, उसमें योग में और क्रियाएं भी हैं और पित्त को बैलेंस करने के, बट जो जड़ की बात, जो जड़ से खत्म करने की बात है या उसकी जड़ पे काम करने का, वो संघ प्रशालन और कुंजल क्रिया, कुंजल क्रिया से शुरू करें, फिर धीरे धीरे संघ प्रशालन तक जाए, तो पित्त का हमारा यहाँ खत्म होता है। फिर भी एक चीज और ऐड करना चाहूंगा इसमें, क्योंकि योगिक टूल्स की बात कर रहे हैं तो सिर्फ आसन बेस नहीं कर सकते, छठ क्रिया के बेस नहीं कर सकते, प्राणायाम भी बहुत अहम रोल निभाते हैं।
1: प्राणायाम तो मुझे लगता है कि तीनों के लिए काम करता होगा ना?
0: जी जी, तीनों के लिए काम करते हैं। जैसे हम पित्त बढ़िए किसी की तो हम कहते हैं शीतली शीतकारी प्राणायाम करो, शरीर में ठंडक प्रदान करेंगे, चंद्रभेदी प्राणायाम करो, तो ये प्राणायाम भी उतना ही लाभ करते हैं जितना आसन करते हैं। शरीर में ठंडक प्रदान करने वाली जितनी क्रियाएं हैं, आसन है, जो भी टूल्स है, वो सारे के सारे हमारे पित्त को संतुलित करने में सहयोगी होंगे।
1: तो इनको करने का तरीका जल्दी से बता दीजिए।
0: शीतकारी प्राणायाम मैं एक बताना चाहूंगा, जिसमें जैसे हम पेस्ट करते हैं, ब्रश करते हैं, तो हम अपने होंठ खोल के मुंह से सांस लेते हैं, ऐसे मुंह बंद किया, नाक से छोड़ दिया,
1: ठंडक ठंडक लगती है,
0: ठंडक लगती है। इसको अभी प्रोग्राम सुनते सुनते 5 बार करके देखेंगे तो चेहरा अंदर से ठंडा हो जाएगा।
1: इस तरह से
0: बिल्कुल ठीक है। तो ये पित्त को कम करने में, खास तौर पर अगर किसी का बीपी हाई रहता हो पित्त करके, तो उसमें बहुत सहयोगी होता है।
1: वैसे कितना आसान है ये?
0: बहुत आसान है, लेकिन हमें गोली की आदत है।
1: और दूसरा?
0: दूसरा चंद्रभेदी प्राणायाम। इसके साथ ही एक शीतली प्राणायाम होता है, जीभ को रोल करके, पर वो एक ही बात है, शीतली शीतकारी में से कोई भी कर लीजिए आप। चंद्रभेदी में क्या है, हमारी दो नाड़ियां हैं, सूर्य और चंद्र। राइट नोस्टल हमारी सूर्य है और लेफ्ट नोस्टल चंद्र है।
1: चंद्र है,
0: तो योग की भाषा में इसे पिंगला और ईड़ा कहते हैं। हम सिंपल भाषा में समझें कि दाई नासिका राइट नोस्टल सूर्य नाड़ी है और लेफ्ट नोस्टल चंद्र नाड़ी है। तो राइट को बंद कर लेना है, लेफ्ट से सांस लेना है और राइट से बाहर छोड़ देना है, फिर लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ देना है। तो इसे हम चंद्र भेदी प्राणायाम करते हैं।
1: तो शुरुआत 5-5 मिनट काफी है इनका ना?
0: 5-5 बार,
1: 5-5 बार ही काफी,
0: 5-5 बार काफी है शुरू में
1: जी।
0: तो ये
1: योग की क्रियाओं के द्वारा, आसन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा,
0: वात और पित्त
1: के बारे में इन्हें किस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं। तो रोशन जी, इतनी अच्छी बातें आपने बताई, उन पर रोशनी डाली, तो यहाँ हमें भी लगता है कि आपकी पसंद का एक गाना भी शामिल कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर कफ के बारे में बात करेंगे
0: जी।
1: कोई गाना बताइए अपनी पसंद का।
0: गाना मैं आजकल गुनगुनाता होता हूँ एक।
1: अच्छा।
0: और अभी मेरी बेटियां हैं, 2 ट्विन्स
1: जी,
0: तो जब भी वो बहुत रो रही होती हैं किसी भी कारण से, और मैं ये गाना गुनगुनाने लगता हूँ, तो वो दोनों चुप हो जाती हैं।
1: वेरी गुड।
0: तो मुझे गाना बड़ा अच्छा लगता है आजकल, तो बहुत अच्छा लगता है। एक प्यार का नगमा है।
1: मौजों की रवानी,
0: मौजों की रवानी है।
1: क्या बात है,
0: क्या संबंध है, पर ये नहीं पता।
1: हाँ,
0: परिवार को डेडिकेटेड है।
1: जी जी जी, ये गाना

0: तो श्रोताओं एक बार फिर से हम आपका प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। आज के संजीवनी प्रोग्राम में हमारे साथ हैं योगाचार्य रोशन लाल जी, जो आज हमें योग और आयुर्वेद में जो आपसी संबंध है, गहरा संबंध है, उसके बारे में बता रहे हैं। वात पित्त और कफ, इसे किस तरह से योगिक क्रियाओं के द्वारा, आसन के द्वारा हम बैलेंस कर सकते हैं, इनकी जो व्याधियां उनको दूर कर सकते हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। रोशनलाल जी, प्रोग्राम में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं।
1: जी शुक्रिया।
0: और अब बारी है कफ के बारे में।
1: जी,
0: तो जो कफ प्रकृति के व्यक्ति हैं
1: जी,
0: वो क्या करें?
1: कफ का पहले स्थान जानना जरूरी है। जैसे वात और पित्त का हमने स्थान जाना, लार्ज इंटेस्टाइन और लीवर का एरिया,
0: जो इनके अड्डे हैं,
1: अड्डे हैं जिनके मुख्य अड्डे हैं। इसी तरह से कफ का मुख्य स्थान है हमारे फेफड़े, हमारी छाती जहां से सांस जाती है, हमारा गला और नाक का रीजन, साइनस रीजन कहते हैं, साइनस का क्षेत्र है, ये कफ का स्थान है। कभी भी देखो हमें जब खांसी होती है, यहां कफ खांसी से मतलब नहीं है, कफ यहां म्यूकस, अंग्रेजी में अगर बात करें तो म्यूकस से रिलेटेड है,
0: जो तो बनता रहता है,
1: जो बनता रहता है। और ये शरीर के लिए तीनों जरूरी है। शरीर
0: और बार बार लोग आपको ऐसा करते मिलेंगे जिनकी ये समस्या होती है।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके कफ गले में है, अटका हुआ है, कफ बनता रहता है, झरता रहता है ऊपर से साइनस रीजन से, तो उनको इस तरह से इरिटेशन होती है गले में, तो फिर वो इरिटेशन को खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे खींचेंगे अंदर सांस, नाक से खींचेंगे, गले से खींचेंगे, तो ये कफ की प्रॉब्लम है। कफ प्रॉब्लम का मतलब है ये असंतुलित है, कफ बढ़ गया है,
0: उसको संतुलन में लेके आना है,
1: उसको संतुलन में लेके आना है। और संतुलन में लाने के लिए योग से बढ़िया मेरे को कुछ दिखता नहीं है।
0: बिल्कुल, आपकी बातों से ये जाहिर हो गया।

0: तो कफ जो है वो नाक से बहता है हमारे, ध्यान से अगर हम देखें तो नाक का जो रीजन है, रास्ता जो है कफ का वो नाक है। तो योग में एक क्रिया है जल नेति, जिसे हम एक जल नेति का स्पेशल लोटा आता है, उस लोटे में हम थोड़ा कोसा गुनगुना पानी नमक वाला डालते हैं
1: जी,
0: और उसको नाक में फिट करते हैं, थोड़ा आगे झुकते हैं मुंह खोल के और लोटे को थोड़ा ऊपर उठाते हैं, तो एक नाक से पानी जाता है और दूसरी नाक से बाहर आ जाता है।
1: आराम से आ जाता है,
0: बिल्कुल आराम से आ जाता है। फिर भी मैं ये कहूंगा कि किसी योग शिक्षक की निगरानी में करें।
1: हाँ, अपने जो लोग पहली बार सोच रहे हैं करने के लिए उन्हें थोड़ा सा मुश्किल लग सकता
0: थोड़ा
1: है,
0: थोड़ा मुश्किल लग सकता
1: शुरुआत
0: है
1: में
0: जी जी।
1: एक लेकिन अगर किसी विशेषज्ञ के पास बैठेंगे
0: जी जी
1: तो उन्हें अच्छे से सिखा देंगे, कैसे करना
0: सिखा देंगे। दो तीन बार कर ले फिर आप घर पे ट्राई कर सकते हैं इसको, तो ये म्यूकस को धीरे धीरे धीरे धीरे निकालती जाएगी। अगर किसी को नेजल एलर्जी है, आइज में एलर्जी है, हेडेक हो रही है, तो ये सारा इस कफ का जो रीजन है, साइनस रीजन, इसके अंदर ब्लॉकेज आने से, इसके अंदर रुकावट आने से होता है। तो सिर्फ जल नेति अगर हम करें तो कफ को तो बैलेंस करे ही करेगी, और कफ की वजह से जो और प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको ठीक करने में ये हेल्प करेगी सिर्फ जल नेति,
1: कंट्रोल करेगी,
0: कंट्रोल करेगी।
1: तो जल नेति जो लोग शुरुआत करेंगे, वैसे तो विशेषज्ञ बता ही देते हैं
0: जी जी,
1: आप भी बताइए कि वो कितना करना है हमें जल नेति को।
0: जल नेति एक लोटे से, आधा लोटा एक तरफ से निकालो, आधा लोटा
1: पूरा हो जाए।
0: हाँ, थोड़ी एडवांस प्रैक्टिस हो जाए, दो तीन चार दिन 15 दिन हो जाए, महीना हो जाए, लगे कि एक लोटा पूरा निकाल के देखते हैं तो एक लोटा पूरा आराम से निकल जाए।
1: फिर तो आनंद भी आने लगता है,
0: आनंद भी आने लगता है, फिर लगता है ये पानी आ कहाँ से रहा है।
1: अल्टीमेट जो एम है
0: जी जी,
1: वो है आपको आनंद की प्राप्ति कराना,
0: प्राप्ति कराना। तो जो जल नीति है ये तो ऊपर से हमने चीज को साफ किया
1: जी।
0: अब जो हम थोड़ा आगे जाके बात करते हैं, जैसे पहले मैंने बात की थी कुंजल की, तो कुंजल कफ में भी मैंने कहा था कि सहयोगी है, तो कुंजल की बात तो हम कर चुके पहले, अभी हम बात करेंगे प्राणायाम की।
1: अच्छा, यहाँ फिर से प्राणायाम,
0: प्राणायाम की। तो जैसे प्राणायाम चार तरह के होते हैं, एक शरीर को गर्मी देते हैं, एक शरीर को ठंडक देते हैं, एक शरीर को संतुलित करते हैं और एक शरीर को शांत करते हैं।
1: तो यहां गर्मी वाले होंगे,
0: यहां हम गर्मी वाले प्राणायाम का अभ्यास
1: क्योंकि
0: करेंगे,
1: कफ की बात है ना,
0: कफ की बात है। तो फेफड़ों में कफ अक्सर रहता ही रहता है, तो जो भी जिसको भी कफ की प्रॉब्लम है या नहीं भी है तो वो अपने फेफड़ों को फैलाएं, लंग्स को एक्सपेंड करना है, फैलाना है, और फिर उनको कॉन्ट्रैक्ट करना है, फिर फैलाना है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो ये हम सांस की क्रिया से, योगिक ब्रीदिंग से, लंबी सांस लेनी है, छोड़नी है, ज्यादा फोकस हमारा सांस छोड़ने पे होना चाहिए। लंग्स जितने खाली होंगे वो संकुचित होंगे, बिल्कुल सिकुड़ जाएंगे, फिर सांस अंदर जाएगी तो फूलेंगे। तो जो एक्स्ट्रा
1: जितना लेना है उतना छोड़ना है, या लेना कम है और छोड़ना ज्यादा है?
0: छोड़ना है पूरा, पहले खाली करना है। जैसे पतीला है, हमने खाली कर दिया तो उसमें ठीक से पानी भर पाएंगे, लेकिन आधा छोड़ा, पतीला आधा खाली किया तो आधा भर पाएगा ना बाहर से, तो ऑक्सीजन ज्यादा जाए, इसलिए अच्छे से सांस को बाहर छोड़ना है। तो सांस बाहर छोड़ दी पूरी, फिर सांस अंदर गई। इस क्रिया को अगर हम तेजी से करते हैं सांस छोड़ना और लेना तेजी से हो, इसे हम भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं
1: जी।
0: इसकी फिर अलग अलग विधियां हैं बहुत सारी,
1: वो तो अलग बात होगी,
0: अलग बात होगी।
1: तो ये जिन लोगों को बीपी की समस्या है
0: वो स्पीड कम रखेंगे,
1: वो अगर, स्पीड कम रखेंगे
0: हाँ, वो शुरुआत में देख लें, चेक कर लें बीपी, दो तीन चार राउंड करें। राउंड का मेरा मतलब है बस 30 एक बार करना है, ऐसे 1 2 3 ऐसे 30 बार करके रुक जाए। तो भस्त्रिका प्राणायाम बॉडी में हीट, शरीर में ऊष्मा पैदा करेगा, हीट जनरेट करेगा, तो वो जो हीट है वो कफ को मेल्ट करेगी, बाहर निकालेगी,
1: पिघला देगी,
0: तो धीरे धीरे म्यूकस बाहर आने लगेगा। इट विल टेक टाइम, थोड़ा समय तो लेगा, पर ये कफ को संतुलित करने में बहुत सहयोगी होगा। तो ये तीन बात पित्त कफ के बिल्कुल जड़ से मिटाने वाली जो चीजें हैं उनकी हमने बात की। एक और क्रिया हम करते हैं कफ वालों के लिए खासतौर पर, सूर्य नमस्कार।
1: अच्छा,
0: सूर्य नमस्कार अगर हम करना शुरू कर देते हैं, देखिए सूर्य हमारे शरीर में भी है और सूर्य हमारे बाहर भी हम देखते हैं
1: और उसमें गर्मी है।
0: गर्मी भी है, तो वो आसन करने से। एक लास्ट बात मैं, अगर आप कहें इजाजत दें तो मैं कहना चाहूंगा।
1: जी जरूर कहिए।
0: इन सारी बातों में हमने विशेष रूप से जो ध्यान रखना है वो है श्वास, और श्वास का संतुलित होना मतलब वात पित्त कफ का संतुलित होना है।
1: मतलब सांस टूटा और बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए,
0: वो संतुलित
1: एक
0: लय है। तो जो
1: लेने में छोड़ने में,
0: लेने में छोड़ने में, तो जो हम प्राणायाम में बात कर रहे हैं कि शांत रखने वाले ट्रैंकुलाइजिंग प्राणायाम, जैसे उद्गीत प्राणायाम, ओम का उच्चारण या भ्रामरी,

0: ये करते रहें हम रोज 5 से 10 मिनट शुरू कर लें और ध्यान को जीवन में अगर हम उतार लें थोड़ा सा किसी भी रूप में, तो ये तीनों अपने आप ही संतुलित रहते हैं।
1: हाँ,
0: और दूसरी बात
1: वात पित्त कफ जो है शांत रहेंगे
0: और अगर ये तीनों बैलेंस रहेंगे वात पित्त कफ तो ध्यान करने का आनंद और आएगा। तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है, जीवन का आनंद लेंगे फिर।
1: बिल्कुल सही, अंततः आपको जो परमानंद है
0: जी
1: वो मिलना शुरू हो जाएगा
0: जी।
1: तो रोशन लाल जी, आप हमारे इस प्रोग्राम संजीवनी में आए, आपने बहुत अच्छी बातें बताई योग और आयुर्वेद के बारे में। इस प्रोग्राम में पहली बार इस विषय पर बातचीत हुई है। योग के बारे में अलग से बात होती रही, आयुर्वेद के बारे में अलग से बात होती रही, लेकिन योग और आयुर्वेद का क्या संबंध है
0: जी?
1: योग के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा, ये आपने बताया
0: जी।
1: तो इस प्रोग्राम में पधारने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
0: जो कि आपके प्रोग्राम का नाम ही संजीवनी है
1: जी, जी, जी।
0: जो मुर्दे में प्राण डालने वाला हो तो ऐसे प्रोग्राम में अगर हम अपने स्वास्थ्य को संजीवनी दे सकें तो और उत्तम बात, और मेरा सौभाग्य है आपने मुझे बुलाया।
1: और श्रोताओं, इस प्रोग्राम के प्रस्तुतकर्ता रमन भगत, प्रोग्राम में अपना तकनीकी सहयोग दिया हमारे साथी प्रेम सिंह ने। अब अनिल पुंज को दीजिए अनुमति, खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखते जाइए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संजीवनी। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में आज 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर देश और 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि 25 वर्ष में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
1: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
0: इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जनसेवा को अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बनाया है और राजनीति को राष्ट्र सेवा का माध्यम माना है। श्री नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं को केंद्र में रखकर कई योजनाएं बनाई और उन्हें लागू किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट पे कहा है कि श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जन केंद्रित नीतियों के कार्यान्वयन, निर्णय लेने में दृढ़ता, पारदर्शिता और परिणामों की गारंटी के माध्यम से शासन की परिभाषा को ही बदल दिया है, साथ ही प्रदर्शन की राजनीति के आदर्श की स्थापना की है। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर उनकी सराहना की है।

हिंदी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री तोबगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की विदेश नीति में पड़ोसी देशों को विशेष महत्व दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी का निर्माण न केवल वर्तमान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किया जा रहा है। घाना के विदेश सेवा संस्थान में श्री जयशंकर ने कहा कि कूटनीति और प्रतिस्पर्धा को टकराव में बदले बिना उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए और आपसी हितों में मतभेदों के बावजूद भी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। भारत ने जम्मू कश्मीर पर और पाकिस्तान में आतंकी ढांचों के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी की टिप्पणियों को खारिज किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की छठी समिति में लोकसभा सांसद बिप्लव कुमार देव ने कहा कि टिप्पणी करने वाले पीड़ित और अपराधी के बीच अंतर नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी ओएसडी राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। इस सिलसिले में चंडीगढ़, मोहाली, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर और जलंधर में 8 ठिकानों पर छापे मारे गए। इस दौरान लैपटॉप, मोबाइल फोन और दस्तावेज सहित कई महत्वपूर्ण सामग्री जब्त की गई है। इनकी जांच की जा रही है। ये कार्रवाई पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कल के आदेश के बाद हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंक की बढ़ोतरी की है। अब रेपो दर 5.25% से बढ़कर 5.5% हो गई है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की दर 5.25% तय की गई है। वहीं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक दर को भी बढ़ाकर 5.75% कर दिया गया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज 0.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 162 अंक गिरकर 72,906 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये हमारा कार्यक्रम है यादों की महफिल।

0: किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में लीजिए अब सुनिए मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना, आरडी बर्मन का संगीत, फिल्म का नाम बुलंदी।
1: Hey,

ब्रेक के बाद अब आपको सुनवाते हैं यादों की महफिल कार्यक्रम के बाकी गानों को। लीजिए अब सुनिए अली बाबा और 40 चोर इस फिल्म का गाना, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, संगीत है आरडी बर्मन का।

0: बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा। सखी सहेली?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे।
2: सखी सहेली
3: यादों की महफिल। इस कार्यक्रम का अगला गाना अग्नि परीक्षा। इस फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज, योगेश के बोल, सलील चौधरी का संगीत।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं। 3
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: येसुदास और आशा भोसले की आवाजों में लीजिए अब सुनिए योगेश का लिखा हुआ गाना। बप्पी लाहिरी का संगीत, फिल्म का नाम है अपने पराए।

0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है यादों की महफिल। लीजिए अब सुनिए दो प्रेमी, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: छनकी के ना
2: छनकी छनकी

0: एक विलक्षण गायक
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है संगीत की गहराई है भाव

0: हैं संगीतकार गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा हुआ ये गाना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और फिल्म का नाम हम 5।

लीजिए प्रस्तुत है हमारे आज रात तक प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर में 1:05 पर प्रसारित किए जाएंगे प्रादेशिक समाचार हिंदी में और 1:10 पर पंजाबी में। प्रादेशिक समाचार आप शाम को भी सुन सकते हैं 6:10 पर हिंदी में और 6:20

कुछ फिल्मी गीत आपको सुनवाएंगे 1:15 पर और शाम 5:05 पर। 1:30 पर कार्यक्रम रहेगा सुरीला सफर। कार्यक्रम त्रिवेणी प्रसारित होगा दोपहर 2:00।

शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सुनिए कार्यक्रम आज के मेहमान। आज सुनिए फिल्म लेखक निर्देशक विशाल चतुर्वेदी से ममता सिंह की बातचीत। आज इसका पहला भाग प्रस्तुत किया जाएगा।

शाम 5:20 पर समय रहेगा प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे का। शाम 5:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम उमंग। शाम 7 बजे आप सुनेंगे जयमाला कार्यक्रम।

शाम 7:47 पर आप सुनेंगे कुछ पंजाबी गीत, रात 8 बजे हवा महल कार्यक्रम में सुनिए झलकी अक्कल के नाथ। कार्यक्रम चित्रलोक होगा रात 8:15 पर।

हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। अब समय हो चला है प्रादेशिक समाचारों का। पहले हमारे केंद्र से 1:05 पर, फिर हमारे जालंधर केंद्र से।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर देश और 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने ईश्वर से उन्हें और अधिक शक्ति और ऊर्जा देने की प्रार्थना की ताकि वे पूरी निष्ठा के साथ दिन रात देश और जनता की सेवा करते रहें। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 वर्ष में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी बड़ी पूंजी है।
1: आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है। देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इसलिए देश के लिए मेरा दायित्व भी सबसे अधिक है। और मैं हृदय से ये मानता हूँ कि देश के हर नागरिक का मुझ पर सबसे बड़ा हक है।
0: श्री मोदी ने कहा कि कभी नीतिगत निष्क्रियता की चर्चा से जुड़ा भारत अब अपनी बढ़ती ताकत और चुनौतियों से निपटने की क्षमता के लिए चर्चा में है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में स्थिति पूरी तरह बदल गई है।
1: आज 12 वर्ष बाद तस्वीर एकदम बदल गई है। तब एक संकट आता था तो भारत की इकोनॉमी हिल जाती, आज संकट आता है तो भारत के सामर्थ्य की चर्चा होती, भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती है। तब पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती है। तब इंपोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कृषि को भी भारत में आए बदलाव का एक बड़ा उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि 2015 से 2025 के दशक में स्वतंत्रता के बाद कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक निरंतर वृद्धि दर्ज की गई और पिछले सभी रिकॉर्ड पीछे छूट गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज गुरुग्राम में विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन वर्चुअल माध्यम से सुना गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में आज के दिन को स्वर्णिम दिन बताया।
2: 7 अक्टूबर का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक प्रकार से स्वर्णिम और युगांतकारी दिन है। आज गरीब से गरीब घर में जन्मे हुए एक व्यक्ति ने अपने गुणों के आधार पर, अपनी क्षमता के आधार पर और करोड़ों करोड़ों लोगों को साथ में लेकर लगातार 25 साल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री

0: रिकॉर्ड बनाया है और वो व्यक्ति है हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी। जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा ये 25 साल स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाएंगे।
1: उन्होंने कहा कि ये 25 साल गरीब कल्याण और भारत गौरव की यात्रा है।
0: ये 25 साल में गरीबी से मुक्ति, सुरक्षित भारत, धारा 370 हटाना, नक्सलवाद समाप्त करना, राम जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाना, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊपरी सीमा तक ले जाना और 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना, ये यात्रा भारत कल्याण की, गरीब कल्याण की, भारत गौरव की यात्रा है। और इस यात्रा को यादगार बनाने के लिए देश भर के हर जिले में इस सेवा ज्योति यात्रा आयोजित की।
1: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व अन्य गणमान्य नेता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सिंगापुर दौरे के दौरान हरियाणा में लगभग 5,500 करोड़ रुपए के निवेश समझौतों पर सहमति बनी है। इन समझौतों के तहत स्वास्थ्य एवं वेलनेस क्षेत्र में 3,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। हम आपको बताना चाहेंगे कि आज दिन में 3:30 बजे से 4 बजे तक प्रोफेसर प्रोग्राम एफएम लाइन लाइफ लाइन की रिकॉर्डिंग होगी। स्टूडियो में मौजूद रहेंगे डॉक्टर यशपाल शर्मा, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी पीजीआई चंडीगढ़। दिल से जुड़ी समस्याओं के बारे में आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल करने के लिए हमारे नंबर्स हैं 2660615, 2660617, 2660619। हमें आपके कॉल्स का इंतजार रहेगा। इसी के साथ अगला गीत आपको सुनवाएंगे, फिल्म जब हैरी मेट सेजल का। गीत गाया है अरिजीत सिंह और प्रीतम ने, और बोल हैं इरशाद कामिल और प्रीतम के, धुन बनाई है प्रीतम ने।

0: Piles Hospital. Call करें 9814128667 पर और Piles से मुक्ति पाएं.
1: आइए सुनते हैं आखिरी गीत. फिल्म है तमाशा, गीत गाया है मीका और नकाश अजीज ने, और धुन है ए आर रहमान की.

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आपको बताना चाहेंगे कि आज दिन में 3:30 बजे से 4 बजे तक प्रोग्राम FM लाइफलाइन की रिकॉर्डिंग होगी। स्टूडियो में मौजूद रहेंगे डॉक्टर यशपाल शर्मा, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी PGI चंडीगढ़। दिल से जुड़ी समस्याओं के बारे में आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल करने के लिए हमारे नंबर्स हैं 2660615, 2660617, 2660619। हमें आपके कॉल्स का इंतज़ार रहेगा।
1: सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे,
2: SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। अभी आपको लिए चलते हैं विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
3: मैं दूँ

झुमरू फिल्म का गाना, इसमें संगीत किशोर कुमार का। एक साथी की बात, पहले हर परिवार में रिश्तेदारी में कहानी सुनाने वाले हुआ करते थे, जो बड़े तन्मय होकर कहानी सुनाते थे, और कहानी अगर एक दिन में खत्म ना हो तो फिर दूसरे दिन शुरू होती थी, और हम सभी भी सुनते थे, क्योंकि कहते हैं कि अधूरी कहानी सुनने पर रास्ता भटकने का डर रहता है, इसलिए पूरी कहानी सुनना जरूरी है। एक साथी लिख रहे हैं कि बोलना अगर चांदी है तो सुनना सोना है। एक अच्छा वक्ता होने के साथ आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा श्रोता बनकर आप लोगों का दिल जीत सकते हैं। ये हुनर न केवल हमें एक बेहतरीन इंसान बनाता है, बल्कि समाज में संवादहीनता की खाई को भी पाटता है। केवल सुनना एक शारीरिक प्रक्रिया है जिसमें आवाजें हमारे कानों तक पहुंचती है। ध्यान से सुनना ये एक मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया है। इसमें हम सामने वाले के शब्दों के साथ साथ उसकी भावनाओं, लहजे और अनकही बातों, यानी कि बॉडी लैंग्वेज को भी समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए सुनना एक हुनर या कला कहा गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वारंट फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी की बोल, आर डी बर्मन का संगीत, दो कलाकार कौन है आप बताइए।

देव आनंद और जीनत अमान पर फिल्माया गया ये गाना है। एक साथी हमारे लिख रही हैं कि सुनना जहां एक बड़ी कला है वहीं समय पर सटीक उत्तर देना भी उतना ही जरूरी है, वरना लोग आपकी खामोशी को आपकी कमजोरी या सहमति समझ लेते हैं। सुनने और जवाब देने का संतुलन, पहले सामने वाले की बात को पूरे धैर्य और ध्यान से सुने ताकि आप उसके संदर्भ को पूरी तरह समझ सके। जब बात पूरी हो जाए तो अपनी बात को स्पष्ट और संयम के साथ रखें ताकि गलतफहमी ना फैले। एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि सुनना सुनाना जीवन के दो अनमोल पहलू है जो हमारे दिलों को आपस में जोड़ने वाला नाजुक रेशम धागा है। जब हम किसी को ध्यान से सुनते हैं तब दूसरों के अस्तित्व को, उनके जज्बात को, एहसासों को अपनाते हैं, निःशब्द मान्यता देते हैं तो दूसरी ओर सुनना यानी खुद की भावनाएं, अनुभव और सपनों को आवाज का लहजा देकर दूसरों तक पहुंचा देना, दिल में उतार देना ही जिससे मन हल्का हो जाता है। एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि जब मैं घर पर ही हूं और धर्म पत्नी कहे कि सुनिए जी, तो एक बार मैं न सुनने की एक्टिंग करता हूं, फिर कहती है सुनिए जी, ये सुनकर मैं आनंदित होकर प्यार से कहता हूं कहिए जी। एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक चुप। और ये आगे लिख रहे हैं कि आगे क्या है मैं भूल गई हूँ, लेकिन कहने का मतलब ये कि किसी भी चीज़ की अति नहीं करना है, न बोलने की ना चुप रहने की। चलिए अब हम अगला गाना आपको सुनवाते हैं, सुजाता फिल्म का गाना, एसडी बर्मन की आवाज़।

0: सुजाता फिल्म का गाना सुनील दत्त और नूतन पर फिल्म आया गया। एक साथी लिख रहे हैं कि एक प्यारी सी बात, कम बोलना कमजोरी नहीं एक खूबसूरत समझदारी है, जब शब्द कम होते हैं तो उनकी कीमत बढ़ जाती है, कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह देती है, बस उसे सुनने वाला दिल चाहिए। और एक साथी
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस, आकर्षक ब्याज दरों के साथ होम ऑटो पर्सनल पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
0: ले जा रहा था, किसी ने देखा और चिल्ला कर कहा, अरे बगुला सांप पकड़ा है कि मछली। बगुला सिर्फ सांप सुना, फटाक से बोलने के लिए मुंह खोला और मछली जमीन पर गिर गई। ये कहानी भी है और एक इसमें संदेश भी छुपा है। एक हमारे साथी की बात यह है कि कम कुछ सुनो और सुनाओ। मेरा मानना है कि यदि आप एक अच्छे वक्ता हैं तो एक अच्छे श्रोता भी बनिए, ये नहीं बस अपनी ढपली और अपना राग। तो ये बात इन्होंने लिखी है, धन्यवाद। और अगला गाना सुहाग फिल्म का ये गाना है। अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और परवीन बाबी पर फिल्माया गया है। शैलेंद्र सिंह, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: से सुनिए तो सही, न जाने कितनी मधुर दिव्य आवाजें आपको अथाह असीम शांति और सुकून देती हुई महसूस होंगी। किसी फूल पर मंडराते हुए मधुकर के गुंजन, मंद मंद समीर में घुलती हुई रागिनी, बहते दरिया की लहरों की अटखेलिया की स्वर लहरिया, किसी गौरी की चूड़ियों के खनक और पांवों में बसती पायल के सरगम। कहने का अभिप्राय यही है कि अच्छा सुनने का कौशल हमें मानसिक अवसाद से राहत दिलाता है। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि कई लोग कहते हैं कि मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ, किसी को बुरा लगे या भला, पर मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। और एक साथी लिख रहे हैं कि इस समय मेरे ऑफिस में रखे रेडियो पर हाथ रखकर मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। मैं बचपन से रेडियो पर विविध भारती मुंबई के प्रोग्राम सुनता था, आज भी सुनता हूँ और आगे भी अंतिम सांसों तक सुनता रहूँगा। और एक साथी हमारे ये बात लिख रहे हैं कि हमें तो विविध भारती जो भी सुनाती हम चुपचाप सुनते रहते हैं और कहते भी हैं, लिखते भी हैं, क्योंकि विविध भारती हमारी अपनी है। आपके इस प्यार के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए सावन भादो फिल्म का ये गाना सुनवाते हैं। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है बताइए हमें।

एक हमारे साथी ने बहुत सटीक बात लिखी, लिखते हैं कि अगर देखा जाए तो हमारी सारी मन स्थिति सुनने पर ही निर्भर करती है। दूर बैठे किसी का फोन भी आ जाए और कोई अच्छी खबर देते तो हम खुश हो जाते हैं, परेशानी कम हो जाती है। सुख दुख अच्छा बुरा सब कुछ सुनने पर ही तो निर्भर होता है। सबसे पहले अगर कोई मनोस्थिति को बदलने में सक्षम है तो वो हमारी श्रवण शक्ति ही है। वहीं किसी सुंदर भजन या गीत को सुन ले तो मन आनंद से भर जाता है। कितनी सही बात है ना कि सुनकर ही तो हमें मन को, हमारे मन को खुशी मिलती है, और कोई बुरी खबर सुन ले तो मन उदास भी हो जाता है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि सुनना, शब्दों को सुनना भर नहीं, उसकी आवाज़ में छिपी उदासी को सुनना है, उसकी खामोशी में ठहरे अनगिनत सवालों को सुनना है। सामने वाला जब अपनी कहानी कहता है तो वह केवल शब्द नहीं कहता, वह अपने भीतर की परतें खोलता है, अपनी खुशियां, अपनी शिकायतें, अपने अनकहे एहसास हमारे सामने रख देता है। इसलिए खामोशी से किसी को सुनना बेहद ज़रूरी है। चलिए अगला गीत अब सुनते हैं, रोटी फिल्म का ये गाना किशोर कुमार की आवाज़।

एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आजकल के वृद्ध माता पिता जिनके बच्चे बाहर हैं और अकेलेपन से जूझ रहे हैं, घर में कोई बात करने वाला नहीं है, उनकी बातें सुनने वाला नहीं है, तो ऐसे में रिश्तेदार और पड़ोसियों को इतना तो करना चाहिए कि उनके पास बैठकर इत्मीनान से उनकी बातें सुने और उनको भी कोई साथी मिलेगा और उपयोगी बातें सुनने को मिलेगी। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि आज के दौर में प्रत्येक इंसान में जो एक चीज गायब दिखती है वो है सुनना। इंसान नहीं जानता कि सुनना भी एक तीर्थ है। ये विडंबना है कि हर इंसान सिर्फ बोल रहा है, सुनना बिल्कुल अनचाही सी चीज हो गई है। एक सच जो इंसान नहीं जानता, जिसने सिर्फ और सिर्फ बोलने को तरजीह दी और सुनना छोड़ दिया, उसने अनजाने में धीरज, गहराई और रिश्तों का मोल खो दिया है। चलिए अगला और अंतिम गाना, उजाला फिल्म का गाना है ये, शम्मी कपूर और माला सिन्हा पर फिल्माया गया ये गाना।

यही था आज के सुरीला सफर कार्यक्रम का अंतिम गाना और आपने इस कार्यक्रम को धैर्यपूर्वक ध्यान से सुना और विषय को लेकर बहुत सारी बातें आपने लिखी, उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं और आपको ये सुनाना चाहते हैं कि अब ये कार्यक्रम संपन्न होता है। मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

आज की त्रिवेणी का शीर्षक है माफी। श्रोताओं नमस्कार। जिंदगी में हम सभी से कभी ना कभी कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। गलती इंसान से हो जाना स्वाभाविक है। कभी हम किसी का दिल दुखा देते हैं तो कभी कोई और हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा देता है। ऐसे में मन में शिकायत, गुस्सा और नाराजगी जमा होने लगती है। अगर कोई अपनी गलती को स्वीकार कर ले और उसे सुधारने का प्रयास कर रहा है तो ज़रूर उसे माफ़ करने का साहस दिखाना चाहिए ताकि दिल पर कोई बोझ ना रह जाए। यदि कोई अपनी भूल स्वीकार कर ले और उसे सुधारने का प्रयास करे तो उसे क्षमा कर देना रिश्तों को मजबूत बनाता है। माफ़ कर देने का अर्थ गलत को सही ठहराना नहीं बल्कि अपने मन को क्रोध, द्वेष और बोझ से मुक्त करना है।

0: का मिले।
1: जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो सबसे अधिक शांति हमें ही मिलती है, मन हल्का रहता है, रिश्तों में अपनापन बना रहता है और जीवन सकारात्मकता की दिशा में आगे बढ़ता है। इसीलिए जहां भी संभव हो क्षमा को अपनाइए, दिल में किसी के लिए कटुता कभी ना रखें। क्षमा करने वाला व्यक्ति सबसे पहले स्वयं को मुक्त करता है। क्षमा सबसे बड़ा साहस है। किसी की भूल को माफ कर देने से ना केवल रिश्ते बचते हैं बल्कि अपने मन का हर बोझ कटुता से मुक्त हो जाता है। इसीलिए जहां संभव हो क्षमा को अपनाएं और मुस्कुराते हुए जीवन जिएं।

क्षमा रिश्तों को जोड़ती है, मन को सुकून देती है। इसीलिए क्षमा को अपनी ताकत बनाएं, प्रेम और सद्भाव के साथ रिश्तों को लेकर आगे बढ़ें। जब दिल हल्का होता है तो रिश्तों में मिठास बढ़ती है और जीवन अधिक सुखद बन जाता है। तो आज एक छोटा सा संकल्प हम सभी लें, जहां संभव हो माफ करें, मुस्कुराएं और प्रेम के साथ आगे बढ़ें। तो हम भी आज एक छोटा सा संकल्प लेंगे, नफरत नहीं प्रेम बांटेंगे, शिकायत नहीं समझदारी अपनाएंगे और जहां संभव होगा दिल से माफ करेंगे। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और दूसरों की जिंदगी में भी खुशियों की रोशनी बिखेरते रहिए।

0: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों के लिए समाधान पर केंद्रित। उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भारत और अफ्रीका की युवा आबादी को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। रिजर्व बैंक ने लगभग चार वर्ष में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि कर इसे 5.5% किया। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.1% रहने का अनुमान। नागालैंड मणिपुर मिजोरम और त्रिपुरा में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। और भारत ने 31वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले आज फिजी में एक बैठक में पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर देश और 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 वर्ष में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
1: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों की समस्याओं का समाधान तलाशने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि भारत अब अपनी बढ़ती ताकत और चुनौतियों से निपटने की क्षमता के लिए चर्चा में है।
1: भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती, पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती। तब इंपोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तब हम अपनी जरूरत के मोबाइल फोन भी इंपोर्ट करते थे और आज मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का जलवा है। तब पूरे भारत में ब्लैकआउट ये ग्लोबल हेडलाइन बनती थी और आज भारत की सोलर पावर कैपेसिटी के चर्चे होते हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश अपनी चुनौतियों का स्थायी समाधान तलाश रहा है।
1: जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की समस्या ऐसा लगता था कि यह अंतहीन है लेकिन आज आर्टिकल 370 की दीवार पूरी तरह टूट चुकी है। इसी तरह नक्सलवाद की समस्या को देश का दुर्भाग्य मान लिया गया लेकिन आज इसकी कमर तोड़ी जा चुकी है। जो आतंकवाद भारत के भाग्य

0: ही चुनौती दे रहा था, लेकिन ये भारत की अदम्य इच्छा शक्ति है। हमने घर में घुसकर मारा और दुश्मनों को बता दिया कि भारत की ताकत क्या है।
1: इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि बड़ी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के सबसे गरीब और वंचित वर्गों के कल्याण को अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा है। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार की पहल की भी सराहना की।
2: जब किसी व्यक्ति के साथ उनकी सोच, उनकी दृष्टि 140 करोड़ लोगों का संकल्प बन जाता है तो वो एक सामूहिक स्वप्न बनता है। जो आधुनिक भारत के शिल्पकार हैं, वही विकसित भारत 2047 के सूत्रधार हैं। इस संकल्प को पूरा करने के लिए आपके देश के लोगों को शक्ति की सप्तधारा का रोड मैप दिया है।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रधानमंत्री मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी है।

0: हाथों को शक्ति की सप्तधारा का रोड मैप दिया है।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रधानमंत्री मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम में विकसित भारत संकल्प सभा सेवा ज्योति यात्रा में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, नक्सलवाद की समाप्ति और देश के बुनियादी ढांचे को उच्चतम स्तर तक पहुंचाना जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए गए हैं।
2: जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा, ये 25 साल स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाएंगे। ये 25 साल में गरीबी से मुक्ति, सुरक्षित भारत, धारा 370 हटाना, नक्सलवाद समाप्त करना, राम जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाना, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊपरी सीमा तक ले जाना और 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना।
1: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एक साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति ने खुद को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया और लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। उधर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज सभी जिलों में सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में जीपीओ के पास पटेल पार्क में सेवा ज्योति यात्रा के अंतर्गत विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 25 वर्ष की जनसेवा में असंभव को संभव कर दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी द्वारा भारतीय कृषि के बदलाव पर लिखे गए एक लेख को साझा किया। ये लेख प्रधानमंत्री मोदी की 25 वर्षों की यात्रा को दर्शाता है। इसमें गुजरात सहित भारतीय कृषि के व्यापक परिवर्तन की जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्ष की जनसेवा पूरी कर ली है। जापान, नाइजीरिया, डोमिनिका और बेल्जियम के नेताओं ने इस अवसर पर उन्हें बधाई दी है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने भारत के विकास में उनके नेतृत्व और योगदान की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट टी वेवर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी और भारत बेल्जियम के बीच साझेदारी को और गहरा करने की तत्परता व्यक्त की। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर उनकी सराहना की है। एक हिंदी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री तोबगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा का महत्व अब केवल भारत ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देशों और ग्लोबल साउथ के लिए भी बढ़ गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी xper@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी का निर्माण न केवल वर्तमान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किया जा रहा है। घाना के विदेश सेवा संस्थान में श्री जयशंकर ने कहा कि कूटनीति और प्रतिस्पर्धा को टकराव में बदले बिना उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए और आपसी हितों में मतभेदों के बावजूद भी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। एक रिपोर्ट।
4: डॉक्टर जयशंकर ने अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्र में भारत की प्रगति को भी रेखांकित किया। उन्होंने भारत और अफ्रीका के युवाओं को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री जयशंकर ने ईंधन, खाद्य, उर्वरक और वित्त के लिए अनुकूल आपूर्ति श्रृंखलाओं के महत्व पर बल दिया और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी में व्यापार, अवसंरचना, क्षमता निर्माण, मानवीय सहायता और आपदा राहत, कृषि, स्वास्थ्य और स्वच्छ ऊर्जा शामिल हैं। उन्होंने घाना में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारत ने फिजी में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के

0: 30वें सम्मेलन COP31 से पहले एक सत्र में जलवायु परिवर्तन पर और अधिक ठोस कार्रवाई तथा पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु संबंधी दृष्टिकोण में मौजूदा कमियों को दूर करना और वर्तमान जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने वैश्विक और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए लगभग 4 वर्ष बाद रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी।
1: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions,
2: बदलते आर्थिक तथा वित्तीय हालात, हाल के घटनाक्रमों और भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा के बाद मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से प्रमुख नीतिगत रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर 5.25%, जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर और बैंक दर 5.75% कर दिए गए हैं। समिति ने 2 के मुकाबले 4 मतों से अपने रुख को सोच समझकर मौद्रिक शक्ति की ओर बदलने का भी फैसला किया है।
1: कैलिब्रेटेड टाइटनिंग बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 4-2।
0: रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि अनुमान 7.1% व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। 4 दिन का ये आयोजन आज शुरू हुआ। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का विषय है, बिना किसी सीमा के विस्तार। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में लखपति दीदी योजना के बारे में जानकारी दी जा रही है।
3: ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना संचालित की जा रही है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को विभिन्न सतत आजीविका गतिविधियों के माध्यम से हर वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की आय अर्जित करने में सक्षम बनाना इस पहल का प्रमुख उद्देश्य है। महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, ऋण की सुविधा, उद्यमिता के लिए मार्गदर्शन और बाजार से जुड़ने जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री ने बताया है कि देश भर में अब 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
4: 3 करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है।
3: परभणी जिले की शिल्पा देशमुख ने इस संबंध में अपने अनुभव आकाशवाणी के साथ साझा किए।
5: ड्रोन की वजह से मुझे अलग ही पहचान मिली है और मेरे उत्पन्न में बढ़त हुई है। इसकी वजह से मेरी सालाना इनकम 1 लाख रुपए से अधिक हो गई है। इसलिए मुझे अब सिर्फ ड्रोन दीदी ही नहीं बल्कि लखपति दीदी के नाम से ही बुलाया जाता है।
3: ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से परिवारों, गांवों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत के संकल्प को मजबूती प्रदान करने में लखपति दीदी महत्वपूर्ण पहल है। समरजीत ठाकुर, आकाशवाणी समाचार, छत्रपति संभाजी नगर।
0: दिल्ली पुलिस ने कल के विरोध मार्च के दौरान नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में बिना अनुमति के प्रवेश करने के आरोप में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ FIR दर्ज की है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी OSD राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में विभिन्न स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में आज गरज के साथ बौछारें पड़ने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों के लिए समाधान पर केंद्रित। उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। विदेश

0: मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत और अफ्रीका की युवा आबादी को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। रिजर्व बैंक ने लगभग चार वर्ष में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि कर इसे 5.5% किया। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला जो गीत है ये आज और कल, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत है रवि का।

0: सेहत के कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र.
1: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है. हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ प्लस वन. ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व. सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है.
0: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी.
1: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छा से हो जाता है. उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है.
0: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर

दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए बहुरानी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, साहिल उद्यानवी के बोल, संगीत सी रामचंद्र का।

0: बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिनड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: एक विलक्षण गायक
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है संगीत की गहराई है भाव

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: बीन का जादू, ये फिल्म का नाम है। सुमन कल्याणपुर की आवाज, बी डी मिश्रा का लिखा हुआ गाना, संगीत एस एन त्रिपाठी का।

लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ब्लफ मास्टर फिल्म का गाना, राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

अरे हुस्न चला कुछ ऐसी चाल दीवाने का पूछना, हुस्न चला कुछ ऐसी चाल दीवाने का पूछना, प्यार की

आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना, रवि का संगीत, फिल्म का नाम भरोसा। आप ये गीत सुनिए और मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

आइए अब आपको जानकारी दे दें प्रोग्राम एफएम लाइफलाइन के बारे में। श्रोताओं, आज बाद दोपहर 3:30 बजे से लेकर 4 बजे तक एफएम लाइफलाइन प्रोग्राम की हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे प्रोफेसर यशपाल शर्मा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी पीजीआई चंडीगढ़। दिल से जुड़ी समस्याओं के बारे में जानकारी देंगे। आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। हमें आपकी फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा।

0: सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को सखियों को सहेलियों को चंचल वर्मा का नमस्कार
2: और सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का भी बहुत बहुत नमस्कार।
1: तो कैसी हैं मंदाकिनी जी?
2: भाई मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए कैसी हैं?
1: मेरे भी हालचाल बहुत अच्छे हैं और हम उम्मीद करते हैं हमारे सभी सुनने वाले भी खुश होंगे और अभी जो ये माहौल चल रहा है उत्सव का, तैयारियों का, इसमें लगे होंगे।
2: बिल्कुल बिल्कुल लगे होंगे। और देखिए उत्सव तो हर बात में है। अभी हमारे देश की जो चार बेटियों ने गोल्ड मेडल जीता है उसका भी पूरा देश जो उत्सव मना रहा है ना। देखिए चार बेटियां 400 मीटर की चार चार जिम्मेदारियों को लेकर एक तिरंगे का सपना था उनका।
1: क्या बात।
2: और यही थी भारत की महिला जिन्होंने 4x400 मीटर रिले टीम की जो कहानी हमारे देश को दी है, जिस पर आज हम गर्व कर रहे हैं। किरण जी हैं, वो किरण पहल ने दौड़ की शुरुआत की और उसके बाद एमआर पुवम्मा, फिर प्राची चौधरी और आखिर चरण में विथ्या रामराज ने मोर्चा संभाला। और चंचल शुरुआत में भारत तीसरे स्थान पर था लेकिन पुवम्मा ने रफ्तार बढ़ाकर टीम को आगे पहुंचाया और प्राची ने उसकी बढ़त को कायम रखा। और आखिरी 400 मीटर में विथ्या पर सबसे बड़ा दबाव था और बहरीन की धाविका लगातार करीब आ रही थी लेकिन विथ्या ने आखिरी पलों में हिम्मत नहीं छोड़ी और कुल मिलाकर इन चार बेटियों ने 3:29.69 में पूरा किया अपना राउंड और स्वर्ण पदक जीत लिया।
1: तो हम भी बधाई देते हैं इन चारों बेटियों को और देश की सभी बेटियों को जो इतनी लंबी दौड़ लगाने का, ऊंची छलांग लगाने का, पंख फैलाकर उड़ने का सपना देख रही हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे खूबसूरत बात यह है चंचल कि इन चारों की कहानी अलग है, संघर्ष बिल्कुल अलग है ना, लेकिन मंजिल एक थी। क्या? कि भारत के लिए गोल्ड मेडल लाना। और ये जो जीत है हर उस लड़की के लिए, हर उस महिला के लिए, युवती के लिए, स्त्री के लिए एक संदेश है कि रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, अगर कदम रुकते नहीं है, हौसला बनाए रखती हैं बेटियां, तो मंजिल की रफ्तार बिल्कुल आप पा सकती हैं।
1: और इसमें सबसे बड़े साथ की जरूरत होती है परिवार के, तो बेटियों का हौसला बढ़ाइए, उनके हौसले को कभी भी गिरने मत दीजिए। और बता देते हैं कि आज किस विषय पर सखी सहेली बात होगी, तो महत्वाकांक्षा की बात होगी। और जब महत्वाकांक्षी होती हैं बेटियां या कोई भी, तो उनका भविष्य निर्माण भी बहुत अच्छे तरीके से हो पाता है। इस बारे में बात होगी।

0: और आज साड़ियों का दिन है यानी बुधवार के दिन हम किसी एक खास साड़ी की बात करते हैं, तो नंदना साड़ी की बात की जाएगी और फिर हम हमारे जो श्रोता हैं किसी एक शब्द पर अपने विचार हमें देने वाले हैं, तो वो शब्द है प्रकृति। यानी
1: क्या बात है,
0: शब्द हमारा और विचार आपके।
1: बिल्कुल, तो प्रकृति के बारे में ये बताइए कि वो आप प्रकृति से प्रेम कितना करते हैं। अभी आप प्रकृति का डेफिनेशन तो लिख देंगे कि प्रकृति ये है, हम आप प्रकृति से कितना प्यार करते हैं, आपने अपने जीवन में कितने पौधे लगाए, पेड़ लगाए कि नहीं, अपने घरों के आसपास आपने प्रकृति को स्थान दिया कि नहीं।
0: और प्रकृति का अर्थ हर जगह जाकर थोड़ा सा बदल जाता है। कहते हैं ना कि भाई आग की प्रकृति है जलाना, तो यहाँ भी प्रकृति का अर्थ बदल जाता है। तो इस तरह से हम कहते हैं ना कि तीन तरह की प्रकृति के शरीर होते हैं, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति। तो प्रकृति का जो शब्द है वो वहीं कहीं कहीं उसका अर्थ भी बदलता है।
1: आप इसको बड़े डेफिनेशन में ले सकते हैं। अब हमारे श्रोता किस अर्थ में प्रकृति को लेकर अपने विचार लिखेंगे उसका हमें इंतजार रहेगा।
0: बिल्कुल, इसके अलावा विश्व कपास दिवस है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। और गुड़ की मिठाई, यानी कि जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, स्वास्थ्य की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान उनका होता है, वो गुड़ की मिठाइयां किस तरह बनाते हैं, खाते हैं, इस पर बात होगी। लेकिन मिठाई की बात और मीठा सा गीत ना हो।
1: बिल्कुल, ये गीत होना चाहिए।

0: हाँ जी, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा।
1: और हमारे जो साथी हैं सुनने वाले, वो भी हर जगह हमारे साथ होंगे। बहुत सारे संदेश वो हमें भेज रहे हैं और हम बात कर रहे हैं महत्वाकांक्षा और भविष्य निर्माण के बारे में। तो मंदाकिनी जी, महत्वाकांक्षा का मतलब होता है कुछ बड़ा सोचना या बड़ी अपेक्षाएं रखना, और देखा जाए तो एक सफल इंसान बनने के लिए ये जरूरी भी होता है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि अगर हम एक दायरे में सिमट कर रह जाते हैं ना, तो किसी बड़े लक्ष्य को पाना मुश्किल हो जाता है।
0: मुश्किल हो जाता है। और चंचल, महत्वाकांक्षा या आवेग दोनों ही जो है हमारी एनर्जी होते हैं। बस दोनों में फर्क इतना ही है कि महत्वाकांक्षा में एक दिशा होती है और आवेग जब आता है तो उसमें गति होती है। और जब गति बिना दिशा के हो जाती है तो भविष्य नहीं बनता, बिखर जाता है। और महत्वाकांक्षा अकेली भी खतरनाक हो सकती है। तो परेशानी कब शुरू होती है? तब शुरू होती है जब महत्वाकांक्षा कब और कैसे को भूलकर सिर्फ क्या चाहिए पर अटक जाती है।
1: बहुत सही बात बताई आपने मंदाकिनी जी। और इसी तरह की बड़ी इच्छाएं या महत्वाकांक्षाएं अगर आपकी हैं, जैसे भाई आपको इंजीनियर बनना है, बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, या बहुत बड़ा बिजनेस करना है, आपको बहुत सारे पैसे कमाने, इस तरह की जो भी अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, कई बार ये जिंदगी में बोझ भी बन जाती
0: है। बिल्कुल,
1: भविष्य आदमी भविष्य की तरफ एक कल्पना के चित्र में ही जीने लगता है। उसे लगता है कि जब वो मिल जाएगा तब मुझे खुशी होगी, और वो जो दिन है ना कि ये मिलने पर खुशी होगी या ये महत्वाकांक्षा पूरी होने पे खुशी होगी, वो दिन जिंदगी में कभी भी नहीं
0: आता नहीं है, क्योंकि हम वैसी मेहनत नहीं करते ना चंचल। उस दिशा में हम अपना कार्य कर नहीं रहे होते, केवल ख्वाबों की दुनिया में बैठे होते हैं। इसलिए निराधार जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं वो हमें थकाती हैं, क्योंकि हम हर दिन खुद को असफल महसूस करते हैं। और आवेग जो है महत्वाकांक्षा का सबसे बड़ा दुश्मन है। आवेग का अर्थ ही है बिना सोचे तुरंत एक्शन रिएक्शन दे देना, प्रतिक्रिया दे देना।
1: और इसीलिए केवल आवेग में जो निर्णय लिए जाते हैं वो हमें बहुत ज्यादा भविष्य में नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। जैसे हर थोड़े समय के बाद अपने करियर की फील्ड को बदल लेना, जॉब को बदलना, दिखावे में आकर ईएमआई की सुविधाओं पर चीजें लेते जाना, गुस्से में इस्तीफा दे देना अपनी नौकरी पर, किसी से रिश्ता तोड़ देना। तो आवेग में किसी भी तरह का निर्णय हो, चाहे वो निजी तौर पर हो या आपके कामकाजी तौर पर हो, ये आपको तकलीफ तो देगा ही देगा।
0: बिल्कुल देगा। और आपका जो एक हर्डल आपकी जिंदगी में हमेशा आती रहेगी, आपके इस व्यवहार से भी।
1: जी।
0: ऐसी तमाम समस्याओं का समाधान यही है चंचल, कि महत्वाकांक्षा में अनुशासन को हम जोड़ें। सबसे बड़ी बात है कि भविष्य न तो सिर्फ सपने देखने से बनता है और न ही जोश से बनता है। एक सूत्र याद रखें हम कि महत्वाकांक्षा दिशा है, अनुशासन मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है, और आवेग जो है वो स्पीड ब्रेकर है।
1: हाँ, यानी कि जब भी आवेग आए तो थोड़ा थम जाइए, रुक जाइए, अपनी गति को धीमा कर लीजिए। और महत्वाकांक्षा सिर्फ दिखावे के लिए ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना है।
0: बिल्कुल,
1: असली महत्वाकांक्षा शोर नहीं करती, वो चुपचाप से रोज हमें जगाती है। क्योंकि हमारी अगर कोई सच्ची महत्वाकांक्षा है तो वही हमारा भविष्य बना सकती है, अगर तीन चीजों से हम उसको जोड़ दें, अनुशासन, धैर्य और भविष्य।
0: बिल्कुल, और भविष्य में कुछ अच्छे आपको नतीजे चाहिए तो अपनी महत्वाकांक्षा को थोड़ा छोटा कर लें, छोटे छोटे

0: को कभी ऊपर नीचे नहीं होगा, हाँ। अटल होगा वो इरादा। तो भविष्य बनाने वाले काम का 80% समय बोरिंग होता है, रोज वही अभ्यास है, वही बचत है, वही पढ़ाई है, लेकिन जो व्यक्ति इस बोरियत को सह गया वो ही आगे निकल जाता है।
1: हर इंसान सोचता है कि बड़ा आदमी बनना है, ये कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती, ना ही फैंटेसी है। महत्वाकांक्षा होती है हमारे भविष्य का नक्शा बनाना। और जब हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और नियोजनबद्ध तरीके से उस पर काम भी करते हैं तो वही महत्वाकांक्षा है जो हमारा भविष्य बनाती है, क्योंकि इसमें क्या, कब, कैसे, ये
0: तीनों चीजें आती है। बिल्कुल, हाँ। बहुत अच्छी बात कही चंचल तूने। और पता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने क्या कहा था,
1: क्या कहा?
0: जो हमारे कितने बड़े आइडियल हैं, आज भी
1: हम सबके लिए किसी ना किसी तरह से वो प्रेरणा के।
0: बिल्कुल, उन्होंने कहा था सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो नींद न आने थे।
1: क्या बात,
0: मतलब सपना बड़ा रखो पर उसे पूरा करने के लिए रोज नींद कुर्बान करने की तैयारी में भी रखो।
1: बिल्कुल, और इसी तरह से हमें अगर इसे आसानी से समझना चाहें तो महत्वाकांक्षा हमें गाड़ी में बिठाती है और आवेग उसका स्टेयरिंग छीन लेता है और अनुशासन जो है वो हमें
0: मंजिल तक पहुंचा देता है। और इसलिए बड़ा सोचो पर आज के छोटे फैसले को हल्के में मत लो, क्योंकि भविष्य कल नहीं बनता, वो आज के आवेग पर काबू पाने से बनता है।
1: और देखिए हमारे साथी लिख रहे हैं कि महत्वाकांक्षा और भविष्य निर्माण, महत्वाकांक्षा वो जीवन को आगे बढ़ने के लिए दिशा देती है। सपने तभी सार्थक होते हैं जब उन्हें मेहनत, धैर्य और सही दिशा का साथ मिलता है। भविष्य अचानक से नहीं बनता, वो आज के छोटे छोटे प्रयासों और निर्णयों से आकार लेता है। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का उदाहरण उन्होंने भी दिया है और आगे लिख रहे हैं कि साधारण परिस्थितियों से आगे बढ़कर उन्होंने भी अपने ज्ञान, परिश्रम, दृढ़ संकल्प के बल पर ही देश के महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बनने का गौरव भी प्राप्त किया था।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और उनका जीवन तो हमें सिखाता है चंचल, हाँ। कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, बड़े सपने और निरंतर प्रयास ही हमारा भविष्य बदल सकते हैं।
1: और भी आगे संदेश हैं?
0: बस अभी तो हमने इतने ही पढ़े हैं, एक गाना सुन ले ताकि कार्यक्रम की थोड़ी दिशा बदल जाए।
2: वो है कि मर कर भी तुमको

0: चंचल,
1: हाँ तो बड़ा प्यारा गीत तुमने सुनवाया अभी, और हमारे श्रोता भी बहुत पसंद करते हैं इस गीत को, और साथ ही हमारी जो सखियां हैं वो पसंद करती हैं नंदना साड़ी को भी।
2: हाँ, और कई सखियां ऐसी भी हैं जिन्हें नंदना साड़ी के बारे में नहीं पता था। हमारी एक सखी ने लिखा भी है कि इस साड़ी के बारे में भैया इसका नाम जो है उन्होंने
1: पहली बार सुना है।
2: तो चलिए बताते हैं कि नंदना साड़ी या नंदना प्रिंट मध्य प्रदेश के कोई एकदम गुमनाम 400 साल पुरानी ये कला है। और ये साड़ी मध्य प्रदेश के नीमच जिले के तारापुरा और उम्मेदपुरा गाँव की एक कला है, और इसे वहीं के खास समुदाय के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी से आज भी जिंदा रखा हुआ है।
1: तो ये नंदना जो प्रिंट है बुनाई नहीं है चंचल, बल्कि हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग और डाबू रजिस्ट प्रिंट की तकनीक है। यानी पहले के समय में कुछ खास जनजाति की महिलाओं के मोटे सूती घाघरे लेंगे इसी प्रिंट के बनते थे, पर अब साड़ी, सूट, दुपट्टा, बेडशीट और सब इसी से बनने भी लग गए हैं। साथ ही नंदना साड़ी की खासियत यही है कि ये 100% प्राकृतिक और इको फ्रेंडली है। इसमें केमिकल नहीं लगता, इसके रंग बनते हैं नील यानी इंडिगो, अनार के छिलके, हरड़ा, अलेजरीन और लोहे के जंग जैसी चीजों से ये साड़ी बनती है, और कपड़े को नरम करने के लिए अरंडी के तेल और सोडा के पानी में इसको गलाया जाता है।
2: और देखिए ना, हमारी एक सखी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है। वो कहती हैं कि मैं गुस्ताखी के लिए माफी मांगते हुए अपनी सखियों को इस सखी सहेली के मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगी।
1: क्या?
2: कि साड़ी के बारे में मेरा ये कहना है कि गूगल से हमें सभी तरह की जानकारी मिल जाती है, लेकिन कुछ चीजों की जानकारी व्यक्तिगत रूप से हम सभी बांटेंगे तो वो ज्यादा परफेक्ट होती है। तो अगर किसी के पास इस टाइप की साड़ी या इस टाइप के कपड़े होते हैं तो वो अपनी बात को साझा करें, और ये बड़ी अच्छी बात लिखी है।
1: हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात, इन्होंने हमारी बात कह दी एक तरह से। हम भी अपने सखियों से अक्सर कहते हैं कि भाई आपके पास ये नंदना या कोई भी साड़ी है तो उसका जिक्र कीजिए। अभी भी हम कहेंगे अगर आपके पास नंदना साड़ी है और या आप कभी लेने गई थी, आपको पसंद आई, आपने किसी को गिफ्ट दी, तो उसका जिक्र अभी आप कर सकती हैं, तो हम उन्हें शामिल कर लेंगे।
2: तो ये जो साड़ी है इसका लॉट जो है वो लगभग 800 मीटर का होता है, और इसे तैयार करने में करीब करीब 18 स्टेप और 25 से 30 दिन की मेहनत लग जाती है। इसकी जो पूरी प्रक्रिया है, इसमें कपड़े को गलाना, अरंडी के तेल में भिगोना, तो सोडे से धुलाई करना, हरड़ा का पाउडर लगाना, बिछलाई यानी कि गोंद और मिट्टी की छपाई होती है ना, उसको रोकना, ब्लॉक की छपाई, नील में रंगाई, धूप में सुखाना, फिर अंत में धुलाई, और इतने स्टेप से होकर जब ये गुजरता है ना, तभी कपड़ा जो है वो पक्का
1: होता है। यानी ये वो हीना की तरह हो गई कि पिसकर ही हीना जो है रंग लाती है, है ना। और नंदना में पारंपरिक रूप से 4 मुख्य बूटे होते हैं, और हर डिजाइन और मोटिफ का अलग मतलब होता है। मिर्ची का मतलब है तीखापन और बुरी नजर से बचाओ, तो चंपाकली का मतलब है कि इसे खास समुदाय की अविवाहित लड़कियां पहनती थी। अंबा का मतलब है कि इसे साड़ी और गर्भावस्था के समय शुभ माना जाता था, और जलम यानी बूटा का मतलब है समृद्धि का प्रतीक। तो आजकल इनमें अमरूद, यूकेलिप्टिस, सागवान, नीम के पत्तों के इको प्रिंट भी बन रहे हैं।
2: और इस साड़ी में जो है रंग का विज्ञान और इसकी मान्यता है वो भी अलग अलग है। नीले और हरे रंग जो है वो इसीलिए खेत में जो काम करने वाले होते हैं उनके लिए होता है, ताकि वो गंदा कम दिखे।
1: अच्छा।
2: और नील को सबसे शुभ भी माना जाता है, इसीलिए कारीगर भी ये मानते हैं कि गाय जो है वो नील का पानी पीती है तो ताकतवर बनती है, और नील के लगे हाथ से खाना खाने से पेट की बीमारियां भी नहीं होती। कुछ पारंपरिक मान्यता है वहां।
1: अच्छा, ऐसा। तो ये साड़ी बनाते समय इन सब बातों का भी ख्याल रखते हैं। और नंदना साड़ी में जितनी बारीकी से काम किया जाता है तो साड़ी की कीमत भी उतनी ज्यादा। यानी एक असली हाथ की बनी नंदना साड़ी 2500 से लेकर 8 से 10 हजार तक की होती है। और पहले तारापुर उम्मेदपुरा में लगभग 100 से ज्यादा परिवार ये काम करते थे।

0: और अब सिर्फ 8-10 परिवार ही बचे हैं, क्योंकि ये बहुत थकाऊ और समय लेने वाला काम है और बाजार में इसका केमिकल प्रिंट भी मुश्किल से मिलता होगा, तो कम लोग अब इसको बनाते हैं।
1: हाँ, क्योंकि कई बार कारीगरों को भी लगता है ना कि मेहनत बहुत ज्यादा है और उसकी अपेक्षा में जो दाम है वो उनको नहीं मिल पाते, और इस तरह से जो बहुत सारी कलाएं हैं वो लुप्त होती जा रही हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो हम सभी को मिलकर इनको बढ़ावा देना चाहिए, और इसीलिए सरकार अभी से GI टैग दिलाने की प्रक्रिया में है और इसका जरिया बना रही है। बनवारी जरिया, पवन जरिया को राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 और स्टेट अवार्ड 2002 और 2022 में भी मिल चुका है। व्यवसाय, राजनीति, फिल्म जगत, हर क्षेत्र में काम करने वाली जो महिलाएं हैं वो भी इस साड़ी को अपनी पसंद में शुमार करती हैं।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर है नंदना साड़ी। तो हमारी सखियां बताएं कि उनके पास नंदना साड़ी है भी कि नहीं।
1: तो हम एक गीत सुन लें।
0: हाँ,

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली, अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं।
1: बिल्कुल, तो चंचल बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस इन दिनों हम मना रहे हैं, विश्व कपास दिवस, और इसकी बड़ी महत्ता है। हम सभी जानते हैं कि ये दिन जो है आज के दिन खास मनाया जाता है, और कपास को सफेद सोने के नाम से भी हम जानते हैं।
0: हाँ।
1: क्योंकि ये सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि दुनिया भर में करोड़ों लोगों की रोजी रोटी भी है।
0: सही कहा मंदाकिनी जी, और इस दिन का आयोजन, इसकी जो पहल की गई थी वो 7 अक्टूबर 2019 को जिनेवा में हुई, जब विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय में पहली बार कपास दिवस मनाया गया था। और इसे शुरू करने की मांग अफ्रीका के 4 सबसे कम विकसित कपास उत्पादक देशों ने की थी। ये 4 देश हैं, बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली। और इन देशों ने कॉटन फोर भी कहा जाता है। आगे चलकर बाद में कोट डी या आईवोर भी इसमें शामिल हो गए।
1: हाँ बिल्कुल, 30 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे आधिकारिक तौर पर मान्यता दी और एक प्रस्ताव पारित करके 7 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड कॉटन डे के रूप में मनाने का फैसला किया। और ये दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि कपास दुनिया के 5 महाद्वीपों में करीब 75 से ज्यादा देशों में उगाई जाती है
0: जी।
1: और दुनिया भर के 10 करोड़ परिवार सीधे कपास उत्पादन से जुड़े हैं और लगभग 28 करोड़ लोग टेक्सटाइल सेक्टर में भी काम करते हैं।
0: बिल्कुल, जब भी हम कोई कपड़ा पहनते हैं तो इस बात के महत्व को हम जरूर समझें कि बहुत सारे परिवार हैं जो इससे रोजी रोटी भी कमाते हैं, और बहुत सारे कहते हैं ना कि अलग अलग कड़ियों से होकर कोई कपड़ा हम तक पहुंच पाता है।
1: वही तो, अभी आपने कहा ना कि देखिए करीब 75 से ज्यादा देशों में ये कपास होती है, कितना महत्वपूर्ण है ये और कितना रोजगार मिलता है इससे ना।
0: और बहुत सारे कम विकसित देश हैं उनके लिए कपास का कुल निर्यात 50% तक हिस्सा है। कपास से सिर्फ कपड़ा नहीं, कपास के बीज का तेल, पशु आहार और कागज भी बनता है। महिलाओं की भी बहुत बड़ी भागीदारी होती है इसमें। कपास चुनने, उसकी प्रोसेसिंग में 40% से ज्यादा काम जो है वो महिलाएं ही करती हैं। खाद्य और कृषि संगठन का हर प्रयास हर साल जैविक कपास, कम पानी वाली खेती और किसानों को उचित दाम मिले इसी पर होता है।
1: हाँ, और अगर हम अपने देश की बात करें भारत की, तो भारत और कपास का बहुत ही गहरा संबंध है चंचल, और इसीलिए ये दिन भारत के लिए बहुत खास है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। दुनिया की 26% कपास ही उगती है। महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तेलंगाना हो, राजस्थान हो, ये मुख्य उत्पादक राज्य है। और भारत की कपास को काली मिट्टी में उगने के कारण उच्च गुणवत्ता के भी माना जाता है।
0: बिल्कुल, और कपास की खेती में किसानों के सामने जो सबसे बड़ी चुनौतियां होती है ना, वो है जलवायु परिवर्तन, कीटनाशकों का ज्यादा उपयोग, किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कम दाम मिलना, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं वो होती हैं, चुनौतियां होती हैं। इसीलिए विश्व कपास दिवस मनाने का उद्देश्य यही होता है कि कपास को सिर्फ एक वस्तु या पदार्थ या नहीं समझा जाए, बल्कि गरीबी उन्मूलन और सतत विकास के साधन के रूप में भी इसको हम देखें। और वैसे भी संयुक्त राष्ट्र ने इसकी परमानेंट थीम है, स्थायी थीम जो रखी हुई है वो है कॉटन फॉर गुड, लेकिन इस साल इसे एक उपशीर्षक इसके साथ जोड़ा गया है, यानी 2026 के लिए जो थीम है वो है कॉटन फॉर गुड, बिल्डिंग प्रॉस्पेरिटी थ्रू ट्रेड ट्रांसफॉर्मेशन एंड पार्टनरशिप। इसका मतलब है कपास अच्छाई के लिए व्यापार परिवर्तन साझेदारी के माध्यम से समृद्धि का निर्माण
1: करना। बिल्कुल,
0: तो चलिए अभी गीत सुन ले
1: जी।

0: बहुत ही सुंदर गीत तुमने सुनवाया है चंचल, और हमारी सखियां और सखा इस गीत का आनंद भी ले रहे होंगे जैसे कि हम प्रकृति का आनंद लेते हैं।
1: हाँ। और प्रकृति जो शब्द है ये संस्कृत का बहुत गहरा शब्द है जो प्र और क्र इनसे मिलकर, जो इसके मूल शब्द हैं उनसे मिलकर बना है, और इसके कई मतलब अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से। प्रकृति का सामान्य अर्थ वैसे अगर देखा जाए तो हम सभी जो समझते हैं वो नेचर या प्रकृति कुदरत से ज्यादा समझते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और प्रकृति मतलब वो जिसे मनुष्य ने नहीं बनाया है, जैसे पेड़ पहाड़ नदी जानवर मौसम पर्यावरण ये सब चीजें, या हम कहते हैं ना अपनी प्रकृति के बारे में कि हम अगर किसी
0: हमारी प्रकृति ये है
1: तो वो भी हमने नहीं बनाई है। प्रकृति का मतलब ही ये है जो कुदरत
0: ने बनाया है। जी, तो आज हमने शब्द जो दिया था हमारे श्रोताओं को प्रकृति, और श्रोताओं ने अपने अपने विचार हम तक पहुंचाए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि जिसका निर्माण प्रकृति, जिसका निर्माण इंसान ने नहीं ईश्वर ने किया है, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, जिसमें इंसान पेड़ पौधे जीव जंतु नदियां पर्वत समुद्र वायु मिट्टी समेत प्राकृतिक प्रक्रियाएं सभी शामिल हैं। संस्कृत में प्रकृति शब्द में प्राकृ से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ है मूल स्रोत या मूल आधार जिससे कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, और इसे कायम बनाए रखने में हम इंसानों की बड़ी जिम्मेदारी बनती है। प्रकृति ने अपनी गोद में बिठाकर हर जीव को इनकी जरूरत के अनुसार सुख सुविधा दी है, उसे बनाए रखने की जिम्मेदारी हम इंसानों की बनती है। इंसान का प्रकृति से हो भाईचारा, यही है पैगाम हमारा।
1: क्या बात है, अच्छा संदेश है। और प्रकृति शब्द पर हमारे जो श्रोता हैं वो विचार अपने अपने प्रकट कर रहे हैं। एक संदेश में लिखा गया है, प्रकृति का व्यापक अर्थ है संपूर्ण भौतिक जगत ब्रह्मांड, और इसमें पेड़ पौधे नदियां पहाड़ जीव जंतु पर्यावरण शामिल है जो इंसानों द्वारा नहीं बनाए गए, प्रकृति प्रदत्त है। किसी भी प्राणी वस्तु का जन्मजात गुण उसका स्वभाव या प्रकृति कहलाता है। आग की प्रकृति गर्मी देना है। मनुष्य का शरीर भी प्रकृति के पांच बुनियादी तत्वों क्षिति यानी मिट्टी, जल पावक अग्नि, गगन आकाश और समीरा यानी वायु से मिलकर बना हुआ है। साधु और बिच्छू, बिच्छू का डंक मारना उसकी प्रकृति है, और उसके बाद साधु को उसी को
0: पानी से बचाना,
1: ये साधु की प्रकृति।
0: बहुत सुंदर बात, इन्होंने एक शब्द से कितनी ही बातें निकाल दी जिनका हमने कहा था कि आप किस अर्थ में प्रकृति को लेते हैं। प्रकृति, एक श्रोता लिखते हैं कि प्रकृति केवल हमारे चारों ओर फैले पेड़ पौधे नदियां पर्वत और खुले आसमान का नाम नहीं है, बल्कि जीवन का

0: आधार है। मनुष्य का अस्तित्व पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है, क्योंकि ये हमें बिना किसी भेदभाव के सांस लेने के लिए, हवा पीने के लिए पानी और जीने के लिए भोजन भी देती है।
1: मतलब प्रकृति कहते हैं ना कि हमारे स्वभाव को प्रकृति कहा जाता है कि भाई इस इंसान की प्रकृति है बहुत गुस्सा करना, इस इंसान की प्रकृति है बहुत शांत है ना, तो हमारे स्वभाव को भी प्रकृति कहा जाता है। तो इसीलिए हमने शुरुआत में कहा था कि प्रकृति के अलग अलग अर्थ अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से हो सकते हैं। प्रकृति एक संदेश में पढ़कर सुना रही हूँ मंदाकिनी, जिसमें लिखा है कि प्रकृति केवल हमारे चारों ओर पेड़ पौधे पर्वत नदियां खुले आसमान का नाम नहीं, बल्कि ये जीवन का मूल आधार है। मनुष्य का अस्तित्व पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है, क्योंकि ये हमें बिना किसी भेदभाव के सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी और जीने के लिए सबसे जरूरी चीज भोजन देती है।
0: बहुत अच्छा आपने लिखा है, कम शब्दों में गहरी बात लिख दी है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि प्रकृति बड़ा बेमिसाल मुद्दा है, प्रकृति के साथ रहना और बड़ा होना सभी को लुभाता है। शाम को अस्त हुआ सूरज के नीचे सिर पर पगड़ी बांधा गडेरिया जब अपनी भेड़ बकरियों को हांकता है तो बड़ा लुभावना लगता है। सुबह में सिर पर डोकरी लेकर निकलती है मलान चीज कितनी बेमिसाल लगती है, जब उसके हाथों में चूड़ियां और सिर पर धानी चुनरियां उड़ी हो, गली से जब वो जाती है नैनाभिराम लगती है।
1: एक संदेश में लिखा है, प्रकृति हमारे जीवन का आधार है, हमारी माँ के समान है। यदि प्रकृति स्वच्छ सुंदर रहेगी तभी हम भी स्वस्थ रहेंगे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और भविष्य भी सुरक्षित रहेगा।
0: वहीं एक श्रोता का कहना है कि हमारे घर के आसपास पेड़ बहुत ही कम है, इसलिए मैंने तो छत पर ही करीब 40 गमले रख लिए हैं। नियमित देखभाल करती हूँ और इस तरह प्रकृति के बीच कुछ समय गुजार लेती हूँ। बिल्कुल अच्छा कहा आपने, गुजर जाता है आपका वक्त ऐसे तो।
1: और बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि वो प्रकृति के बीच में आनंद लेते हैं, तो भाई इस प्रकृति की रक्षा सुरक्षा हमारे ही हाथों में है।
0: बिल्कुल,
1: और अब हमारे हाथों में है कि हमें
0: गीत सुनवा दें।

0: अब हम क्या ढूंढने वाले हैं कि गुड़ हमने कहाँ रखा है रसोई में।
1: हाँ भाई, और इतने मीठे मीठे गाने सुन रहे हैं, थोड़ी सी मिठाई की बात ना हुआ, वो भी ऐसा मीठा जो हमारे सेहत के लिए नुकसान भी ना पहुंचाए, वो थी गुड़ की।
0: बिल्कुल वही तो हमने कहा।

0: गुड़ एक पारंपरिक और कहते हैं कि अपरिष्कृत जो है प्राकृतिक मीठा ठोस पदार्थ इसको माना जाता है, जिसे गन्ने के रस या तार या खजूर के रस को उबालकर और गाढ़ा तैयार करके बनाया जाता है, है ना। तो ये गुड़ जो है सफेद चीनी के बिल्कुल विपरीत होता है, प्राकृतिक गुड़ है। इसमें आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, जिंक जैसे बहुत सारे महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ मौजूद रहते हैं।
1: तो चलिए क्यों ना व्यंजन भी इस कहते हैं ना कि सेहतमंद जो चीज है गुड़ उसे ही बनाया जाए।
0: बिल्कुल।
1: तो गुड़ के शक्कर पारे बनाने के लिए एक बाउल में एक कटोरी आटा ले लें और एक बड़ा चम्मच भर के मोयन डालें। एक बाउल में थोड़ा सा पानी डालकर गुड़ को गला दीजिए ताकि वो पहले से ही पिघल जाएगा, और गैस पर जलाकर इसको या तो पिघला भी सकते हैं अगर आपने पहले से नहीं रखा है तो। इस पिघले हुए गुड़ के आटे से पानी को गूंदना है,
0: इसके पानी से आटा को गूंदना है, गुड़ के आटे से नहीं गूंदना है।
1: गुड़ का जो पानी हुआ है ना, जो गाढ़ी
0: चाशनी लग रहा है कि फटाफट बनाऊं और खाऊं।
1: तो ये जो गुड़ की चाशनी बनाई इसे आपने आटा गूंद लिया और कढ़ाई में गरम गरम घी या तेल डालकर उसमें धीमी धीमी आंच पर तलिए तो शक्कर पारे तैयार
0: हो जाएंगे। वाह क्या बात है, इच्छा हो गई है खाने की। और एक देखिए गुड़ की लापसी भी हमारे घरों में बनती है चंचल। गेहूं के दलिये को घी डालकर हल्का भूरा होने तक थोड़ा हम सेक लेते हैं, फिर उसमें गर्म पानी डालकर कुकर में एक सीटी दे देते हैं और गुड़ में पानी डालकर पिघला लें, फिर छानकर कुकर में बने दलिये में डालें, थोड़ा और पकाएं, देसी घी डालें, इलायची डालें, कुछ मेवा डालना चाहे तो डाल दें। पौष्टिक और स्वादिष्ट जो है लापसी तैयार हो जाती है और पुराने समय में गांवों में शादी ब्याह में भी ये बहुत ज्यादा बनाई जाती थी।
1: सच्ची में ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती
0: मीठा मिष्ठान के रूप में लापसी ही बनाई जाती थी। बचपन में हमने बहुत जगह लापसी का सेवन किया है।
1: और जब हम कहते हैं ना कि जब किसी का स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो पेट को हल्का रखने के लिए भी खिचड़ी और लापसी इसी तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं, विकल्प होते हैं खाने के लिए। तो गुड़ की खीर के बारे में भी हमारे श्रोताओं ने लिखकर भेजा है कि हमारे प्रांत में छठी और जन्मदिन की नई बहू, जन्मदिन या हो या कोई नई बहू आती है तब त्योहारों पर चने की दाल पूरी गुड़ की खीर जरूर बनती है और छठ पूजा में भी जो गुड़ की खीर है वो बनाई जाती है और इसी से सूर्य देवता का भोग लगाया जाता है। तो बासमती चावल में दूध को पकाना है और जब खीर गाढ़ी हो जाए पककर तब गुड़ को अलग से पिघलाकर थोड़ी ठंडी होने पर ऊपर से पिघले हुए गुड़ को मिला देना है, फिर इलायची नारियल और किशमिश मिला देने या जो भी आप मेवे डालना चाहें वो मेवे डाल सकते हैं। इसी तरह से स्वादिष्ट खीर तैयार हो जाती है। एक दूसरा तरीका इन्होंने बताया है कि गुड़ के पानी में चावल को पका सकते हैं क्योंकि चावल पकने में बहुत ज्यादा समय लगता है। और जब चावल पक जाएगा तो ऊपर से गाढ़ा किया हुआ रबड़ी नुमा दूध है वो मिला दीजिए तो खीर तैयार हो जाती है। इस तरह की खीर में ये ध्यान रखा जाता है कि गर्म गर्म खीर में या दूध में जब गुड़ डाला जाता है तो फट जाता है, इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है।
0: हाँ मतलब बनाते समय हमें ध्यान तो रखना ही पड़ता है, देखिए कि कोई चीज से किसी तरह का नुकसान नहीं हो जाए। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि गुड़ के पुए भी बनते हैं। अरे मन हो गया है पुए खाने का। हमें अपना बचपन याद हो है जहाँ हमारी माँ हमें गुड़ के पुए खिलाया करती थी। ये लिखते हैं कि आटे के साथ पिलाकर और जो मुझे पसंद है वो है पूरन पोली, जिसमें चने की दाल को भिगाकर उसको उबालकर गुड़ के साथ घी में सेकते हैं और उसमें गुड़ डालते हैं, साथ में जो सूखे मेवे पसंद हो वो डाल दें, पेस्ट तैयार करें, आटे की लोई में भरकर घी से सेके और जो बहुत ही स्वादिष्ट भी लगती है।
1: तो भाई इतने मीठी चीजों की बात चल रही है तो मीठा गाना भी तो होना चाहिए।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: हाँ तो चंचल, हमारे श्रोताओं को भी इंतजार है कि आगे हम गुड़ के लेकर क्या रेसिपी बताने वाले हैं, है ना।
1: तो गुड़ को लेकर हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि गुड़ हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, खासकर आने वाली पीढ़ियों के लिए। और कुछ मिठाइयां हैं जैसे गुड़ के शक्कर पारे, गुड़ का रसगुल्ला, ये इन्हें हमारे जो श्रोता लिख रहे हैं इनको बड़े पसंद है। और चीनी के रसगुल्ले जो तैयार किए जाते हैं, इसमें चाशनी की जगह अगर गुड़ की चाशनी बना दी जाए तो ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। और गुड़ की तो हम पंजीरी भी बनाते हैं, और ये पंजाबी शायद लिख रहे हैं कि पंजाबियों में तो ये बहुत ज्यादा बनाई जाती है। और गुड़ को भून कर इसकी पंजीरी तैयार की जाती है, घी डाला जाता है, भूना जाता है, पूरे तरीके से इसको बनाया जाता है, तो बहुत स्वादिष्ट लगती है।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सर्दियों में गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं, तो गुड़ से बनाने से वो पौष्टिक हो जाते हैं। गुड़ के गुलगुले बनाइए, और गुड़ के भजिए कह रहे हैं, और मीठे भजिए बना सकते हैं। गुड़ को गर्म पानी में पिघलाकर उसे छानकर उसमें आटा, नारियल की कतरन और इलायची डालकर घोल बनाकर तेल में पुए तल लीजिए। गुड़ और चने की दाल की पूरन पोली भी आप बना सकते हैं, है ना।
1: इसी तरह से जब भाई चाय का समय होता है ना, तो बहुत सारे लोगों को
0: 3 बजे चाय चाहिए होती है। इन्होंने मेरी मन की बात कह दी, मैं जब से सोच रही थी कि गुड़ की चाय जब हम पीते हैं, या कई बार चाय फीके रखते हैं और हाथ में गुड़ की डली लेकर भी सर्दियों के दिनों में हम लोग ऐसा चाय का सेवन करते थे, तो लिख रहे हैं कि ऐसे भी गुड़ की चाय बनाकर पी जा सकती है
1: जी। और बिना फटे स्वादिष्ट और परफेक्ट गुड़ की चाय बनाने की आसान सी विधि भी इन्होंने लिख कर भेजी है कि इसके लिए सामग्री चाहिए 2 कप चाय आप दोनों दीदियों के लिए।
0: क्या बात है।
1: 1 कप पानी, 2 कप दूध जो कि अलग से गर्म किया हुआ है, यानी कि पूरी तरह से औंटाया हुआ, खौलाया हुआ ये दूध है। चाय पत्ती चाहिए 2 छोटे चम्मच, और चाय पत्ती की मात्रा आप अपने हिसाब से थोड़ी सी ज्यादा कम कर लीजिए, आपको बहुत कड़क पीनी है तो ज्यादा भी कर सकते हैं। और इसमें चाहिए गुड़ थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ या पाउडर के फॉर्म में बनाया हुआ, 2 से 3 चम्मच चाहिए, या फिर स्वाद के अनुसार थोड़ा सा कम और ज्यादा भी कर लीजिए। अदरक चाहिए 1 इंच कुचला हुआ, हरी इलायची चाहिए 2, वो भी अच्छे से कुचली हुई या पाउडर बनाया हुआ। इसे बनाने के लिए एक पैन में या सॉस पैन में 1 कप पानी डालना है, कुचला हुआ अदरक और हरी इलायची डालकर पानी को अच्छी तरह से उबलने देना है। जब पानी में उबाल आ जाए तो इसमें चाय की पत्ती डालनी है, 2-3 मिनट तक इसे भी उबालें ताकि अच्छा रंग और स्वाद चाय पत्ती का आ जाए। अब इसमें पहले से गर्म किया हुआ दूध है वो डाल देना है। दूध को हमेशा उबाला हुआ या गर्म किया करके ठंडा किया हुआ दूध डालने से चाय फट सकती है, ऐसा ही होने आगे लिखकर बताया है। और दूध डालने के बाद चाय को धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है, फिर गैस को बंद कर देना है। बंद करने के बाद जो कद्दूकस किया हुआ या पाउडर के फॉर्म में लाया हुआ गुड़ है वो डाल देना है, फिर अच्छी तरह से मिला लीजिए, छान कर गर्मा गर्म गुड़ की चाय का
0: आनंद ले सकते हैं। तो आपने 2 कप चाय भेजी है ना, ये 2 कप मुझे ही पीने पड़ेंगे क्योंकि चंचल दीदी जो है चाय नहीं पीती है।
1: तो चलिए आपके लिए डबल चाय हो जाएगी, लेकिन मैं जो है ना गानों की मिठास से ही काम चला।
0: चलिए फिर।

0: मन ही मन में लड्डू फूटे, अगर लड्डू गुड़ के होंगे ना तो ज्यादा सेहतमंद होंगे।
1: और अभी तो हम गुड़ के लड्डू की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि गुड़ की बात है तो लड्डू भी गुड़ के ही होंगे। गुड़ की बात निकली है तो एक श्रोता लिखते हैं, कह दूं कि दोपहर के भोजन के साथ गुड़ जरूर लेता हूं। भोजन के पूरा होने के बाद गुड़ के साथ एक रोटी खा लेता हूं और भोजन के अंत में गुड़ खाने से पाचन क्रिया आसानी से हो जाती है,
0: क्योंकि गुड़ ही गुड़ है।
1: गुड़ ही गुड़ है।
0: और आगे एक श्रोता लिखते हैं कि हम भी गुड़ और आटे के मालपुए खाने हैं और आपकी बातें सुनकर हमें भी लग रहा है कि हम इसे जरूर बनाएंगे।
1: वहीं एक श्रोता लिख रही है कि अब सर्दियां आने वाली हैं और गुड़ की तासीर गर्म होती है, इसलिए सर्दियों में ये बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकता है।
0: तो भाई आप जरूर गुड़ के व्यंजन का मजा लीजिए, लेकिन कार्यक्रम का समय क्योंकि पूरा हो चला है तो हमें जाने की इजाजत भी दे दीजिए।
1: बिल्कुल। तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और
0: चंचल वर्मा का
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आप सुनने वाले हैं उन्हें जिनकी फिल्म हनुमान अंश इन दिनों हमारे मन को छू रही है, खास तौर से इसके कुछ गीत जैसे कि ये
1: हो। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई,
0: और ये गीत तो हमारे दिल में घर ही कर चुका है।
2: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
0: तो आज हनुमान अंश फिल्म की शूटिंग और सृजन से जुड़ी बातें हमसे साझा करने आए हैं निर्देशक विशाल चतुर्वेदी। आपसे बातचीत कर रही है ममता
3: सिंह।
0: आइए सुनते हैं इस दिलचस्प बातचीत की पहली कड़ी।
4: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में एक ऐसे लेखक निर्देशक की आमद है जो इन दिनों बहुत चर्चा में है। ये है युवा लेखक निर्देशक और आजकल इनके नाम के दीवाने हो रहे हैं लोग, वो हैं जाने माने निर्देशक और लेखक विशाल चतुर्वेदी जी। उनकी फिल्म बहुत हिट हुई है। विशाल जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
5: नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए ममता जी।
4: विशाल जी, सबसे पहले तो बधाई लीजिए अपनी फिल्म की हनुमान अंश। हमने भी देखी और समूह के साथ देखी, बहुत अच्छी लगी, तो बहुत बहुत बधाई।
5: धन्यवाद।
4: और अब हमें बताइए कि ये हनुमान अंश की कहानी ने कैसे आपके दिल में दस्तक दी, कैसे आपके मन में विचार आया?
5: तो एक तो हनुमान अंश टाइटल है और दूसरा हनुमान अंश की जो कहानी है वो श्री नीलकंठ बाबा महाराज जी के बारे में है, जो भारत के पिछले सदी के आई थिंक सबसे रिवर्ड संत आज की डेट में कहे जा सकते हैं। साईं बाबा भी थे और इसके अलावा बहुत सारे श्री अरबिंदो, ऐसे बहुत सारे संत हुए हैं जिसमें श्री नीमकरोड़ी बाबा की जो कहानी है वो मुझे बहुत खास तौर पे इंटरेस्ट इसलिए करती है क्योंकि बहुत सादगी से भरी हुई है और किसी तरह का कोई आडंबर उनके जीवन में था नहीं
4: जी।
5: इसके अलावा वो मतलब हर तरह की चमत्कारों से वो हरदम भागते रहे और किसी एक स्थान पर रुक के उन्होंने किसी तरह का एक अपना एक साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश नहीं की। उनका उद्देश्य सिर्फ जगह जगह पे हनुमान जी के मंदिर बनाना और लोगों को भूखों को भोजन, भक्तों को प्रसाद, ये उनका टोटल आइडिया था। और भी उनकी कुछ सीख थी जो जीवन में देते थे पर वो आध्यात्मिक सीख होंगे, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में, एक मानव के रूप में मुझे वो बहुत ज्यादा जैसे बोलते हैं इंटरेस्ट करते हैं। प्लस उनकी चेहरे पे जो एक अजीब सी कोई ऐसा अट्रैक्शन है कि हर व्यक्ति आभा है, कुछ तो है ऐसा जो कि हर व्यक्ति उनको देख के ना देखते रह जाता है, तो ये भी एक चीज थी। इसलिए मुझे लगा कि ये होना चाहिए। पर मैं खुद से उनको फॉलो करता हूँ कुछ पिछले 20 साल से, और जब मैं हल्द्वानी में पोस्टेड था, पहली पोस्टिंग मेरी हल्द्वानी में थी, वहां से एक मेरे साथ भी कुछ ऐसा इवेंट हो गया था जिसकी वजह से मैं नया पर्सपेक्टिव मिला लाइफ को लेकर कि ऐसा भी हो सकता है। तो इस वजह से मैं उनकी कहानी बहुत समय से फॉलो कर रहा था। हनुमान अंश टाइटल मुझे नीप करोरी गांव है उत्तर प्रदेश में जहां पे उन्होंने साधना अर्ली एज में की, वो अपने फिल्म में दिखा
4: जी, बिल्कुल।
5: तो वहां पे जब मैं गया था रिसर्च के लिए तो वहां के लोग उनको आंशिक हनुमान और आंशिक अवतार हनुमान का बोलते थे, हनुमान जी का बोलते थे, जिस वजह से मुझे वो टाइटल बहुत अच्छा लगा और मैं उनके नाम से फिल्म नहीं बनाना चाहता था। पहले दिन से क्लियर था कि मुझे उनके नाम से फिल्म नहीं बनानी क्योंकि वो इतने पॉपुलर हैं कि वो ऐसा कहीं से प्रतीत ना होने लगे कि मैं उनके नाम पे राइड कर रहा हूँ। और प्रतीत होने से ज्यादा खुद से स्वयं से भी अंदर से भी वो इच्छा होती है ना कि आप एक कॉन्सेप्ट को दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ना कि किसी तरह की बायोपिक पे आप राइड करके कि भाई बड़ा व्यक्ति है उसकी बायोपिक बनाने मिल गई तो अब ये अच्छा उसमें नंबर्स आएंगे, यू विल ऑलवेज गेट आई मीन अ लॉट ऑफ, आपको बहुत तालियां मिलेंगी, अप्रिशिएशन मिलेगा। इंस्टेड ऑफ दैट क्या हम

0: समाज को क्या दे रहे हैं कॉन्सेप्ट लेवल पे, आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट के लेवल पे. तो ये आई थिंक उद्देश्य था, इसलिए हनुमान अंश और श्री नीम करोली बाबा, दिस इज द रीजन एंड दिस इज हाउ उनकी आमद हुई.
1: तो नीम करोली बाबा को एक भक्ति भाव से लोग देखते हैं और कुछ चमत्कार के रूप में भी देखते हैं, भले ही वो चमत्कार ना करते हो, और रहस्य के रूप में भी. तो ये उनके पूरे व्यक्तित्व को फिल्म में आपने उतारने की कोशिश की है, तो किस तरह की चुनौतियां आई, कौन सा भाव पक्ष आप ज्यादा लाना चाहते थे और आपको लगा कि ये सही हुआ?
0: मुझे लगता है कि उनकी मैंने एक मानवीय कहानी बोलने का ज्यादा प्रयास किया है. चूंकि वो स्वयं चमत्कारों से बचते थे, तो हम भी चमत्कारों से फिल्म में बचे हैं.
1: जी,
0: लीलाएं होती हैं जब आपके कोई कोई संत महात्मा आपके जीवन को देख लेता है. वो अकाल जो बोलते हैं ना कि वो उनको उनको त्रिकालदर्शी होते हैं, वो समय को देख सकते हैं,
1: आपके समय को देख सकते हैं,
0: आपके पास्ट को भी देख सकते हैं, आपके फ्यूचर को देख सकते हैं. तो वो आपको आपके अंदर एक ऐसा छोटा सा चेंज लेके आते हैं जो ऑन अ ट्रेजेक्ट्री लेवल, अगर वो आज उन्होंने 0.5% का अगर उन्होंने एंगल चेंज किया आपकी लाइफ का, डायरेक्शन रीडायरेक्ट किया आपको, तो इन द कोर्स ऑफ टाइम 10 years और 20 years कहाँ से कहाँ पहुंचेगा. लाइक मेरा अपना स्वयं का एक वो है कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहां पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है. वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम 20 इयर्स बैक. तो इसको लीला बोलते हैं, तो इसको चमत्कार नहीं बोल सकता मैं. चमत्कार तो कोई जादूगर भी कर सकता है. वो होते ना कि हवा में ऐसे कुछ करते हैं, कुछ ले आते हैं. तो चमत्कार ही व्यक्ति लोग उनके उनको चमत्कारी बोलते हैं, पर वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा. उन्होंने हरदम बोला कि हनुमान जी ने किया होगा, आपका राम जी कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी, ऊपर वाली कृपा होगी. तो इस तरह से तो मैं मानवी उनके साइड को ज्यादा तवज्जो देने का प्रयत्न मैंने किया है.
1: जी, ये फिल्म में आपने दर्शाया भी है जब वो क्रांतिकारी अंदर कमरे में है और वो बेल बजाते हैं तो पूछते हैं कि आपको कैसे पता चला कि मुझे भूख लगी है. तो ये क्लियर है कि जैसे वो चेहरे के भाव पढ़ लेते हैं या इंट्यूशन हुआ है, इस बात को आपने दर्शाया भी है. तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आज का जो युग है इसमें जरूरी है कि चमत्कार से दूर जाया जाए. और आपने बताया कि, और हम सभी जानते हैं कि आपने मेडिकल की पढ़ाई की, MBBS पढ़ रहे थे और अचानक फिल्मों की ओर रुख कर लिया, कैसे ये संभव हुआ, कहाँ से आपके मन में ये बदलाव आया?
0: मुझे लगता है कि लखनऊ, जब मैं रहने वाला बुंदेलखंड का हूँ, वहीं पढ़ाई पला बड़ा भी वहीं पे हूँ और मैं पढ़ाई भी वहीं से की है. जालौन जिले में एक छोटी सी जगह है कौंच, वहाँ पे मैंने अपनी 10+2 तक पढ़ाई की, उसके बाद एक साल ग्वालियर था, वहाँ से लखनऊ आ गए. और लखनऊ में जो एक जैसे बोलते हैं वहाँ की जो सभ्यता है, वहाँ की जो अपनी अपनी तहजीब है
1: जी.
0: वो कहीं ना कहीं मैंने उसको इम्बाइब करना शुरू किया. तो पहले तो भाषा सुधरी वहाँ जाके, एक ठेठ बुंदेलखंडी और खड़ी हिंदी बोलने वाला व्यक्ति, एक थोड़ी नफासत आ जाती है, एक आपकी जबान में थोड़ा उर्दू आ जाती है. तो पोइट्री वहीं से फूटी, वहीं से मैंने म्यूजिक में इंटरेस्ट मेरा आया. मैं जिस गली में रहता था वहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र जी, जो बहुत बड़े साहित्यकार हैं, उनकी हवेली जस्ट घर के सामने थी, छनूलाल जी मिश्रा और ये सब लोग जो है ना वो गली का ही पार्ट थे. तो उसमें बहुत सारा इन्फ्लुएंस हुआ. फिर मैं भातखंडे जाना शुरू किया, फिर मैंने भातखंडे में कुछ एक साल विशारद का प्रथम वर्ष भी किया, मतलब संगीत में गायकी में.
1: अच्छा.
0: और वो एक साल ने मुझे काफी हद तक जो है ना परिवर्तित कर दिया. एक मेरा जो एक क्रिएटिव साइड होगा जो मुझे पता नहीं था, वो सडनली स्फुटित हो गया. और उस वजह से मुझे लगता है कि लखनऊ हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ. तो बेसिकली वो मेडिकल का सिलेक्शन होने से पहले ये सब मेरे अंदर इम्बाइब हो गया था. तो तैयारी करता था शाम को 6 बजे से, वहाँ की क्लास होती थी, तो शाम को 6 बजे तक सब फिनिश हो जाता था. तो वहीं से अपने कोचिंग से लौटता था मैं और 1 घंटे की वो क्लास करके घर आता था. और उसी बीच में आगे कहीं प्ले हुआ कोई तो देख लिया, या कुछ ऐसा कार्यक्रम चलता रहता है. अमरनाथ बलि नाम का एक वहाँ पे एक प्रेक्षागृह है, तो वहाँ पे प्रेक्षागृह में कुछ ना कुछ चलता ही रहता था. तो वो एक रूटीन बन गया. और फिर वो सिलेक्शन होने के बाद में मैं नहीं चाहता था कि मैं MBBS करने जाऊँ. तब तक मेरा काफी इंटरेस्ट चला गया था इसमें. तो मेरी माता जी ने मुझे बोला कि तुम ये कर लो, उसके बाद तुम्हें जो करना हो तो कर लेना. एंड मेरा जब मैं गया, मुझे कॉलेज जो मिला वो गोरखपुर था.
1: जी,
0: तो गोरखपुर का थोड़ा कला वगैरह से थोड़ा सा कम लेना देना है, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर और हमारा कॉलेज भी बिल्कुल मेडिकल कॉलेज
1: ग्रामीण परिवेश है, बिल्कुल आंचलिक
0: जी, और शहर से बाहर भी है. तो वो करीबन 7-8 किलोमीटर दूर था. तो शहर जाने के लिए फिल्म देखने के लिए जाते थे हम लोग बस. बाकी वो हमारा जो 12-15-50-40-50 acres की जो कॉलेज कैंपस था वो वही दुनिया थी हमारी
1: जी.
0: तो उसके अंदर की जो सो खैर कहने का मतलब ये है कि MBBS किया तो उस बीच में जितनी भी क्रिएटिव परसुइट्स थी उनको फॉलो भी किया वहां पे. बट इवेंचुअलिटी में अब होता ये कि आप किसी

0: चीज के साथ में बहुत समय तक रहने लगे तो आपको वो भी अच्छा लगने लगता है। तो मैं लास्ट फाइनल प्रोफेशनल तक मैं सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ता था।
1: जी जी।
0: फाइनल प्रोफेशनल में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे सडनली मेडिसिन अच्छी लगने लगी, एज ए वे पीपल जब वो अच्छे हो जाते हैं, जब वो उनके अंदर इंप्रूवमेंट होता है, प्लस आप जो मानवीय शरीर है उसको आप बहुत डिटेल में देख रहे हो और कैसे रिएक्ट करता है, ऑल ऑफ दैट, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया।
1: जी।
0: तो फिर मैंने कहा कि अब जॉब भी करते हैं, और पहला जॉब इसीलिए हल्द्वानी में, पिथौरागढ़ में था एक्चुअली, कुछ महीने के बाद मैंने वो छोड़ के हल्द्वानी में आ गया था मैं, और वहां से ये नई ट्रेजेक्ट्री शुरू हुई, जिसे हनुमान अंश की यात्रा जिसे बोलेंगे, वहां से शुरू हुई। जी।
1: तो अब यहाँ पर आपने बहुत सारा जिक्र किया, गाने का भी जिक्र किया, मतलब कि ऐसा लगा कि आप गाते भी हैं, और हनुमान अंश में आपकी आवाज में एक गाना है जो काफी प्रचलित भी है और लोग पसंद कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई गाना होना चाहिए, बताइए कौन सा गाना होगा।
0: आप जो कहेंगे वो सारे गाने मुझे बहुत प्रिय हैं, हृदय में जिनकी सीताराम जो मैंने गाना गाया है वो भी बहुत क्लोज टू माई हार्ट है, और वो बहुत ही कमाल की बात है कि उसको मैंने कंपोज नहीं किया, वो अचानक से मेरे दिमाग कहीं से उतर आया हूँ।
1: जी जी।
0: और वो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपनी फिल्म में अपने म्यूजिक को ना इंक्लूड करूँ, मैं आया तो म्यूजिक डायरेक्टर बनने ही था सबसे पहले मुंबई में, और विशाल भारद्वाज मेरे लिए बहुत, जिसे बोलते हैं ना, वो बहुत ही मेरे लिए आइडियल थे।
1: जी जी।
0: लेकिन विशाल जी को मैंने बहुत ज्यादा उनकी फिल्म जो है ना मकबूल को मैंने 27-28 बार देखा, मतलब लिटरली उनकी वो जो सीडी थी मेरे पास में वो घिस दिया था, मतलब ऐसा हो गया था कि स्क्रैच आ गए थे उसमें, इतना देखा मैंने मकबूल।
1: क्या बात है।
0: तो कहने का मतलब ये कि होता ये है कि आप जब आते हो कुछ करने के लिए, फिर आपको समझ में आता है कि नहीं आपका अल्टीमेट गोल ये है, फिर आप ये क्यों कर रहे हो। कोशिश मैंने बहुत की कि अपने आप को अवे रखूं म्यूजिक से, क्योंकि वो मेरे लिए, मेरी अपनी आत्म शांति के लिए मैं म्यूजिक करता हूँ। मेरा सुबह का रूटीन अभी पिछले एक साल से तो बिगड़ गया, लेकिन सुबह का रूटीन मेरा एक हनुमान चालीसा जो मैं गाता हूँ अपनी खुद से, मैंने कंपोज की थी वो, मैं अपने लिए गाता हूँ, उसको रिलीज ही नहीं किया मैंने, इट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई लोगों को, बहुत सारों के पास। तो हृदय में जिनके सीताराम आई विल से कि इज समथिंग व्हिच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, बट यू specifically ask me any of the song, I love all the songs, I can sing any one of it, I won't mind.
1: लेकिन मैंने आपकी आवाज के गाने का जिक्र इसलिए किया कि वो गाना तो हम सुनवाएंगे, लेकिन आपकी आवाज में यहाँ पर हम चाहते हैं कि श्रोताओं को भी सुनवा दें।
0: चलिए, तो मैं पहले हृदय में जिनकी सीताराम ही गा देता
1: हूँ। जी, एक लाइन सुना दीजिए।
0: जी, एक ही लाइन है, उसमें दूसरा लाइन है भी नहीं।
1: जी।
0: हृदय

0: क्या बात है, एक साधक की मुद्रा में आप आ गए थे और वो ऐसा लग रहा था कि कहीं आपने जैसे साधना की हो बैठ के
1: जी।
0: तो यहाँ पूरी फिल्म में हनुमान अंश में हनुमान चालीसा को कथा के रूप में कहीं कहीं पिरोया है आपने, तो ये कहाँ से आपके मन में विचार आया, कुछ पहले से सोच रखा था या फिल्म बनते समय?
1: तो एक तो वो इवेंट जो है वो रियल इवेंट है
0: जी,
1: जो फिल्म में आपने देखा है, लेकिन मैं 2021 में जब कोविड बहुत पीक पे था और मेरे बहुत परिवार के और मेरे दोस्तों के, मेरे मित्रों के फैमिली मेंबर्स एक एक करके जा रहे थे, तो मेरे फर्स्ट कजिन, मेरे लोकल गार्जियन थे कॉलेज में, वो ऐसे करते करते मेरे मामा जी, मेरे बेस्ट फ्रेंड रघुवेंद्र सिंह है, उनकी माता जी, ऐसे बहुत सारे लोग कुछ 5-7 दिन के अंदर ही

0: बहुत सारे लोग चले गए और वो एक एज ए डॉक्टर मुझे जो है ना, मैं घर पे बैठा था, मैं क्योंकि मेडिसिन प्रैक्टिस छोड़ के बहुत साल हो गया और बाकी सब तो कुछ कर नहीं रहे हैं. अब मैं एज अ मेडिकल मतलब डॉक्टर आई शुड डू समथिंग, मुझे कुछ करना चाहिए था और मेरे पास कोई सच कोई डायरेक्ट कनेक्ट बचा नहीं था. तो जितना हेल्प कर पा रहा था मैं कर रहा था. लेकिन मुझे ऐसा एक क्लब हाउस नाम की एप्लीकेशन थी जहाँ पे बहुत सारे दोस्त मिलना शुरू हो गए थे, क्योंकि वो एक अलग चीज बन गई थी जहाँ पे सब लोग वॉइस में बात कर सकते हैं. तो वहाँ पे मुझे ऐसा दिल में ऐसा ख्याल आया कि जितने लोगों को शांति चाहिए है वो शायद हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो वो शायद होप देगी लोगों को. तो हमने हनुमान चालीसा नाम का एक क्लब चालू किया 2021 में, अप्रैल का महीना था. पहले दिन ही लोग 8 घंटे तक उसमें हनुमान चालीसा होते हैं, लोग आईसीयू में लेटे हुए हैं और वो हमारे क्लब को सुन रहे हैं. पीपल रिकवर्ड फ्रॉम देयर आईसीयू, जो कि आईसीयू से बहुत कम लोग निकलते थे उस वक्त, तो आईसीयू से बाहर निकले फिर वो हमारे मॉडरेटर्स बन गए. तो वो क्लब आज भी वो क्लब चला रहे हैं.
1: जी,
0: तो
1: जी.
0: एक 12,000 से ऊपर उसके सब्सक्राइबर हो गए, लोग अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से आते थे और वो हनुमान चालीसा. तो ऐसे में मेरा एज अ फाउंडर ऑफ दैट क्लब मेरा रूटीन बन गया कि 2-2.5 घंटे तो हनुमान चालीसा को डिकोड करना शुरू किया मैंने.
1: जी जी जी.
0: उसके पहले तो पढ़ना होता था, फिर हनुमान चालीसा को डिकोड करना, वो मेरी एक तरह से मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग वर्ल्ड बन गया. तो कहें तो हनुमान अंश का कोर जो है वो हनुमान चालीसा है. अगर आप वो उसमें भी एक डायलॉग है फिल्म के अंदर जहाँ पे बच्चा पूछते हैं मान जी उससे के, मान जी पूछते हैं कि आपका जो है क्यों हनुमान जी का ही पाठ क्यों है, ओके ओके. तो कहते हैं क्योंकि हनुमान चालीसा में लिखा है. तो क्या तो तुम्हारे भजन राम जी को पावे. तो वो कहते हैं किसी से प्रेम नहीं है. तो कहते हैं कि नहीं माँ से था क्यों. बोले माँ राम जी के पास चली गई. और करना क्या चाहते हो. राम जी के पास पहुंचना है क्योंकि मुझे अपनी अम्मा के पास पहुंचना है. तो ये पूरी फिल्म को हनुमान चालीसा में क्या लिखा है और एक बच्चे की भावना अपने माँ के प्रति क्या है और वो कितना अकेला अपने को महसूस कर रहा होगा कि वो जो है ना अपनी माँ से इतना प्रेम था कि वो उन तक पहुंचना चाहता है क्योंकि किसी ने बोल दिया कि राम जी के पास चली गई. तो उसने पूरा अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया कि मुझे राम जी तक पहुंचना है क्योंकि मुझे अपनी अम्मा तक पहुंचना है. एंड प्रॉब्ली दिस इज वन ऑफ दी मोस्ट, जिसे बोलते हैं ना कि सबसे ज्यादा जो लाइन लोगों को पसंद आती है, स्पेशली मदर्स हैं, बच्चे हैं, बच्चे इमीडिएटली कनेक्ट हो जाते हैं उस लाइन से. वो हुआ इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आई सॉर्ट ऑफ डिकोडेड हनुमान चालीसा फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. अभी भी मुझे बहुत मजा आता है. अब अगर आप मुझसे आप बात करेंगे तो आई विल लव टू चैट अबाउट हनुमान चालीसा फॉर आवर्स.
1: अभी सुनाइए.
0: हनुमान चालीसा चैट एज इन
1: थोड़ा सा तो सुना सकते हैं. देखिए वहाँ एक बात मैं अपनी ओर से जोड़ना चाहती हूँ. वो जो दृश्य है जिसका आपने जिक्र किया सचमुच बहुत मार्मिक दृश्य है कि एक पिता अपनी दूसरी शादी करके आ रहे हैं और बच्चा बोलता है कि मुझे राम जी के पास जाना है. तो ये बहुत मार्मिक था और हम सबको यहाँ पर इमोशनल भी किया आपने. मतलब देखा कि लोग रो रहे हैं वहां पर. और इस पूरी फिल्म में कई जगह ऐसे लगता है कि हाँ हम कहीं आपने जो साधक के रूप में दिखाया वो साधना में हम सब लीन हो रहे हैं. कई ऐसे दृश्य आए. तो यहाँ फिर से वापस लौटते हैं हनुमान चालीसा पर. तो वो अगर आप गाते हैं तो
0: नहीं
1: तो
0: हनुमान चालीसा तो मैं गा दूंगा, बट मैं हनुमान चालीसा को जो डिकोड करता हूँ मैं हनुमान चालीसा को, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा. आई विल ऑल्सो सिंग कपल ऑफ लाइंस. मुझे लगता है कि हनुमान चालीसा जो है ना बहुत ही मल्टीपल कॉस्मिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनका संकलन है. और आपके जीवन में आप कैसे आध्यात्म की तरफ जब आप बढ़ते हो और आपको जब अल्टीमेट को जो आप पाना चाहते हो, भगवत प्राप्ति जो आप करना चाहते हो, तो उसका राह वो आपकी सुगम करती है, आपके जीवन को भी बहुत सॉर्ट करती है. जैसा कि श्री नीपकोली बाबा भी बोलते थे कि वो कहते थे राम नाम का जप करते रहना, राम नाम लिखते रहना और हनुमान जी की भक्ति के लिए हरदम बोलते थे. आप भक्त क्या होता है वो आप हनुमान जी से सीख सकते हो कि वो अपने ईस्ट से ज्यादा बलशाली है पर वो सरेंडर उनको ही करते हैं,
1: ईस्ट को
0: ही करते हैं. भक्ति इसको बोलते हैं कि आप किसी भी, तो ये एक तो चीज है और प्लस जो है ना उसमें तीन और कोड्स हैं कि राम द्वारे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिन पैसारे. तो हनुमान जी की भक्ति के बिना, हनुमान जी को समझे बिना, उनकी आज्ञा के बिना आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती. दैट इज वन. अनदर लाइन इज दैट राम रसायन तुम्हारे पासा. सो यू हैव दी द कॉस्मिक कोड और द कोड The formula to reach राम. सदा रहो रघुपति के दासा. तीसरी लाइन है तुम्हारे भजन राम जी को पावे. एज एन अगर आप हनुमान जी को भजते हो या आप हनुमान चालीसा करते हो तो आप भगवान राम को की प्राप्ति आप कर सकते हो. ये तीन लाइनों के अलावा पवन तनय संकट मंगल मूर्त रूप राम लखन सीता सहित हृदय भसम सुरभु. हृदय भसम सुरभु का मतलब क्या है कि आपको उनको दिल में, आपको दिमाग में नहीं रखना है, आपको हृदय में रखना है. इसीलिए वो हृदय में जिनके सीताराम जैसा लाइन. अपार्ट फ्रॉम दैट अष्ट सिद्धि नवनिधि दाता, 8 सिद्धियां आप ही दे सकते हैं. और यही प्रॉब्ली नीम पौरी बाबा के उनकी लाइफ में भी आप देखें जो सिद्धियां जिनके प्रचलित

0: वो कहीं ना कहीं उनको हनुमत भक्ति से आई है, क्योंकि हनुमत भक्ति जो है ना कलयुग में शायद वही एक भक्ति है जो आपको सुगम तरीके से, क्यों, क्योंकि अगली लाइन उसकी है अष्ट दिन विदाता असबर दिन ऐसा वर सीता दीन दीन जानकी माता
1: जी।
0: तो जो जगत जननी माता सीता है उन्होंने आपको ये वरदान दिया कि आप ये सिद्धियां जो आपके पास ऑलरेडी हैं वो आप किसी को भी दे सकते हैं। ऐसा ही एक एक भगवान राम ने भी उनको वरदान दिया कि सहस बदन तुम रोज जसगावे अस्क श्रीपति कंठ लगावे। जब लाए सजीवन लखन जी आए, जब वो संजीवनी लेके आए तो उन्होंने ऐसा वरदान दे दिया सहस बदन तुम रोज जसगावे। इसलिए आज भी

0: 4000 साल पुराने टेंपल्स हैं
1: जी बिल्कुल.
0: ही वाज सो पॉपुलर अक्रॉस द वर्ल्ड एंड स्टिल इट्स ही इज पॉपुलर. कि आपका जो अमेरिका का राष्ट्रपति जो पिछले राष्ट्रपति थे वो हनुमान जी की मूर्ति जेब में रखते थे बराक ओबामा.
1: बिल्कुल.
0: तो
1: हनुमान चालीसा लोग अपने पास रखते हैं, सिरहाने रख के सोते हैं, पर्स में रखते हैं, तो डर से निजात पाने के लिए कहा जाता है. हम सब भी वो करते हैं, डर लगता है,
0: डर लगता है, हनुमान चालीसा पढ़ना
1: शुरू करते हैं. हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, अंधेरे कमरे में पार करना है तो हनुमान चालीसा पढ़ते जाना
0: है. फिल्म में वो सीन जो है ना वो डेडिकेटेड टू दैट लाइन है कि आप पढ़ते तो हनुमान चालीसा इसलिए हो क्योंकि आपको भूत पिशाच निकट नहीं आवे, उस लाइन के लिए पढ़ते हो आप. लेकिन वो लाइन तो बीच में आती है तो आपको पढ़नी तो पूरी है.
1: जी जी.
0: तो मन से पढ़ना बहुत आवश्यक है, इंटरनलाइज करना. और आपको जिस भी आप देवता जिस भी भगवान को आप ईष्ट हैं आपके, उनको अंदर से मन से उनका ध्यान करना. मन क्रम वचन ध्यान जुलावे, संकट ते हनुमान छोड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे. जी
1: बिल्कुल, सकारात्मक भाव पैदा होता है. यहाँ पर एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का, कौन सा गाना सुनते
0: हैं? मैं भी आपको हनुमान चालीसा ड्यू है, मैं आपको दो कम से कम लाइनें सुनाता हूँ.
1: जी जी प्लीज सुनाइए.
0: जी जी. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा. जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम. महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा. जय सिया राम जय सिया राम.

0: अभी मतलब मैं तो गाता रहूंगा तो 15 मिनट इसी में निकल जाएंगे। बट
1: गाने की बात, चलिए हनुमान चालीसा आप गा ही रहे तो हम आपके पीछे की ओर बचपन की ओर ले चलते हैं, बचपन के गलियारों में। वहाँ आपने जिक्र भी किया कि आप विशारद करना चाहते थे, पंडित चन्नूलाल मिश्र का जिक्र किया, तो क्या बचपन में आपने सोचा था कि आप गायकी की दुनिया में आएंगे, या फिर सोचा था उस समय क्या सपना था आपका?
0: मुझे लगता है कि बचपन में सपने तो थे पायलट बनने के, फिर लग गया चश्मा, फिर पता चला कि वो तो नहीं कर सकते, फिर लगा के, फिर ऐसा लगा कि आईएएस ऑफिसर बनना चाहिए। तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो सुदूर जो जगह है वहाँ पे
1: डॉक्टर इंजीनियर
0: आईएएस, तो मेरा थोड़ा पायलट पायलट सोचता था, मैं थोड़ा आगे की सोचता था, लेकिन वो शायद एनीवेज। तो हुआ ये कि लखनऊ आने से मैंने डिस्कवर किया कि आई कैन सिंग, उसके पहले तो मुझे पता ही नहीं था। तो 17 साल तक की उम्र तक तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं गा सकता हूँ या मैं एक पोइट्री लिख सकता हूँ, ये भी नहीं मुझे पता था। तो लखनऊ आके वो परस्यूज डेवलप, फिर से वापस स्फुटित हुए, अंकुरित हुए, या मुझे आई डिस्कवर्ड देम, सेल्फ डिस्कवरी हुई मेरी, हनुमान जी की तरह से उनको अपनी शक्तियां पता चली मुझे, एंड दैट टुक मी। वरना बचपन चंबल में बीता, तो वहाँ पे बुंदेलखंड में, तो जहाँ पे ये आपने जो बैंडिट क्वीन देख रहे हैं, पान सिंह तोमर देख रहे हैं, वो एक और फिल्म थी तिशु की, एक और तिशु के बाद अभिषेक चौबे की एक फिल्म आई थी, फॉरगॉट द नेम, सुशांत सिंह राजपूत की थी, वो सारी फिल्में, वो सारी दुनिया जो है ना बुंदेलखंड है, वो है जो हमने जिया है देखा है। से कॉन्ट्रास्टिंग आई रीच्ड लखनऊ, और लखनऊ में जो जीवन जैसे बोलते ना कि परिवर्तन हुआ, तो वहाँ पे मैंने विशारद के लिए एडमिशन के लिए मैंने टेस्ट दिया, जिसमें 30 सीटें थी, 30वां नंबर रैंक मेरा आया।
1: अच्छा।
0: और वो तेज सिंह टाकजी वहाँ पे मेरे टीचर थे, और उन्होंने जो भी सिखाया वो इतना काम भविष्य में आया कि मतलब एक ही साल किया था मैंने, 5 साल में से एक ही साल करके फिर आई टू गो फॉर द मेडिकल मेडिसिन। तो 4-5 साल वहाँ पे फिर वो रॉक वॉक गाते थे और पॉप रॉक में दुनिया में चले गए, फिर क्लासिकल भूल गए। क्लासिकल को दोबारा से मैंने पिछले 4-5 साल में फिर से दोबारा से आई स्टार्टेड यू नो practicing and working on it, and I do it primarily for myself. तो मतलब वो completely मेरे उसको commercialize करता नहीं हूँ, music को कुछ भी commercialize नहीं करता, so it's a very soul satisfying sort of an event for me every day. लेकिन neck for music, finding great music, recognizing great talent, musical talent is probably one art I developed over the period of मतलब multiple years, decades I'll say. तो अनुभव सिन्हा जी के साथ में मैंने करीबन 3 साल काम किया, उसमें भी ऐसा हुआ कि वो साल भर के बाद उनको पता चला कि मेरा म्यूजिक सेंसिबिलिटीज ऐसी हैं, तो उन्होंने फिर मुझे म्यूजिक भी सारा दे दिया करने के लिए। तो बनारस बीट नाम का उनका एक अपना एक छोटा सा
1: जी,
0: था। तो हाँ। बनारस बीट मैं हैंडल करता था,
1: उसी के नाम से उन्होंने अपना फोन नंबर भी।
0: हाँ जी जी जी। तो बनारस बीट जो है मैंने काफी समय तक वो भी चलाया, बहुत सारा म्यूजिक मैं सेलेक्ट करता था उनके लिए, या एटलीस्ट चूज करता था कि सुनिए आपको क्या अच्छा लगता है, एंड दैट्स हाउ प्रोबब्ली आई थिंक द फिल्म बिकेम अ म्यूजिकल, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे वो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, एंड आई बिलीव द ग्रेट म्यूजिक, ग्रेट साउंड, 45% विजुअल्स होते हैं, 55% जो है ना वो साउंड होता है, और वही आपको सबकॉन्शियस लेवल पे हिट भी करता है, अफेक्ट भी करता है, विच ऑल्सो इंक्लूड्स द डायलॉग डिलीवरीज, विच ऑल्सो इंक्लूड्स द डायलॉग संबोधन जो है उसमें भी जो पॉकेटेड इंफॉर्मेशन होती है अपार्ट फ्रॉम द बैकग्राउंड म्यूजिक एंड द सॉन्ग्स विच वी सिलेक्ट एंड वी गो फॉर। तो मुझे लगता है कि म्यूजिक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेरे, मैं सारे फिल्म मेकर्स को ये सजेस्ट करता हूँ, जो हम सडनली गानों से दूर भागने लगे हैं एज एन इंडस्ट्री, के लिप सिंक नहीं करना है, बैकग्राउंड में कहीं कहीं गाने डाल देना है, गानों से पूरा वाइब क्रिएट होता है फिल्म का, 3rd week ऑनवर्ड्स गाने चिपके हैं। अच्छा आप अच्छा है खराब है मुझे पता नहीं, पर पहले 2 week तक कोई गाना चला ही नहीं, और वही कारण था कि फिल्म भी डिप करी थी, फिर फिल्म के बारे में भी लोगों ने बात करनी शुरू हुई, फिर गाने भी डिस्कवर होना शुरू हो गए 4th week से,
1: और गाने बजने,
0: और फिर गाने ऐसे बजने लगे कि फिल्म को उन्होंने उठा दिया।
1: हाँ। और रील बनने लगे,
0: रीले बनने लगे, हजारों की संख्या मतलब अनगिनत है, तुम गिन भी नहीं रहे, गिनना बंद कर दिया, जो मिलता है उसको रीशेयर कर देते हैं, वरना तो

0: हाँ निकल ही रहा है, मतलब कॉन्स्टेंट इतना बन रहा है कि हम वी कांट सी, 24 घंटे भी देखेंगे तो नहीं देख पाएंगे,
1: बिल्कुल
0: इतना कॉन्टेंट बन रहा है।
1: तो यहाँ पर गानों का जिक्र चला है और आपकी फिल्म के गाने के रील बन रहे हैं और ज्यादातर इस गाने के पार्वती
0: जी
1: जो है, तो वो सुना दे श्रोताओं को
0: जी। मतलब वैसे साधु तिवारी जी का गाना है, उनसे परमिशन लेके मैं गाता हूँ वैसे, लेकिन चलिए मैं सुनाता हूँ। जब जिद पे आ गई पार्वती, पार्वती पार्वती, समझाने पहुंचे सप्तऋषि, सप्तऋषि ही सप्तऋषि, अरे काय जिद कर रही, अरे काय खुमर रही, अरे काय जिद कर रही, काय खुमर रही, ऐसे वर के लाने, काय जिद कर रही, काय खुमर रही, ऐसे वर के लाने, जाके शीस पे गंगा और गले में डारे फिर रहे सांप, जाके शीस पे गंगा और गले में डारे फिर रहे सांप, इतने सीधे सादे हैं सब कहते भोलेनाथ, भोलेनाथ शंभो शिव शंभो।

0: भोले बम भोले बम भोले।
1: इस गाने के बाद हम आपसे जानना चाहते हैं, अभी आपने बातचीत के दौरान जिक्र किया अनुभव सिन्हा जी का
2: जी।
1: अनुभव सिन्हा जी विविध भारती के स्टूडियो
2: में थे
1: और उनसे सौभाग्य मेरा कि उनका भी इंटरव्यू मैंने ही लिया था, बातचीत की थी
2: जी।
1: तो उनसे कुछ निर्देशन की कुछ बारीकियां भी आपको मिली क्या गानों के बारे में ही?
2: मुझे लगता है कि उनके सानिध्य में काम करना, मैं उनके अंडर तो काम करने का मुझे मौका नहीं मिल पाया
1: जी, जी।
2: उनके सानिध्य में काम किया
1: जी,
2: पर बहुत सारी जो जिस तरह से उनकी वो जिस तरह से इलेवेट करते हैं चीजों को ना सिनेमा, हाँ सिनेमा में इलेवेशन क्या होता है कि आप जब हम फिल्म देखते हैं तो आप जब जिस तरह से हीरो को पोजीशन करते हो, जिस तरह से इलेवेट करते हो, बहुत बारीक बारीक नजर है उनकी, बहुत सुंदर सुंदर, वो भी उनके बहुत कान बहुत तेज हैं उनके भी म्यूजिकल तेज। तुम बिन उनकी पहली फिल्म भी इतनी बड़ी ह्यूज म्यूजिकल हिट थी,
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: और आप चाहे वो रावण का म्यूजिक सुने या मुल्क का, हाँ
1: थप्पड़ के
2: गाने, मुल्क के भी गाने बहुत सुंदर थे, पर मुझे लगता है कि रावण के गाने बहुत सुंदर थे और वो उसके पहले भी जितनी फिल्में उन्होंने की है, मतलब आप चाहे कैश पकड़ लो, फिर उसके पहले एक और फिल्म थी उनकी
1: अनेक भीड़,
2: तो ये अभी की फिल्म है लेकिन एक वो जो कमर्शियल फिल्म बनाते थे उनके म्यूजिक एल्बम, ओ माय गॉड क्या क्या एल्बम उन्होंने चूज किए। तो कहीं ना कहीं वो मेरा अनुभव सर का ये बहुत ही, जैसे बोलते ना कि हमारे बहुत सारे विचार लेकिन हम बहुत, मैं उनका इतना सम्मान है हृदय में क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि वो कभी भी आपके, आप क्या सोचते हो उस पर इंटरफेयर नहीं करते। और मैं उनके उनके ऑफिस में बैठ के मैंने एक फिल्म लिखी थी जो उनकी पसंद की फिल्म थी, उन्होंने कहा कि इस फिल्म को लिख पूरा, शॉर्ट फिल्म सुनाई थी जिस पे उन्होंने कहा कि इसको तो पूरा फिल्म बना के लिख।
1: अच्छा।
2: फिल्म का नाम था उस वक्त, उसका नाम डीमो था, फिर उसका नाम भसाड़ हो गया, कॉमेडी फिल्म थी, एक रात की कहानी, दो दोस्त मिलते हैं और क्या होता है उस रात को। लेकिन उन्होंने उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो प्रॉब्ली उनको हो सकता ना ही पसंद आई हो, पर उन्होंने उसमें मेरे कभी काम में इंटरफेयर नहीं किया। और यही एक सबसे बड़ी फिल्म मेकर की खासियत होती है कि वो आप क्या सोच रहे हो वो आपकी सोच है, मैं क्या सोच रहा हूँ मेरी सोच है, हम दोनों एक सब्जेक्ट को डिबेट कर सकते हैं पर मैं तुम्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि मैं सबसे ज्यादा जो चीज सीखी है उनसे मैंने वो यही सीखी है और मैं इस बात के लिए मतलब सदैव उनको याद करता हूँ और हर बार यही बात बोलता हूँ और मेरी बात उनसे दो साल दो बार ही होती है और लेकिन तो मतलब मेरा सम्मान उतना ही उनके लिए हृदय में उतना ही सम्मान है जी।
1: बेहतरीन बातचीत हुई थी और बेहतरीन इंसान। यहाँ पर आपकी फिल्म का हम गाना सुनना चाहते हैं, मतलब उसका जिक्र करना चाहते हैं, मैंने तेरे ही भरोसे
2: जी।
1: ये सुनील लोधी बुंदेलखंड के, तो ये कैसे मिले आपको, कहाँ से, क्यों बुंदेलखंडी गाते हैं वो?
2: बुंदेलखंड में पैदा हुआ जैसे मैंने बताया, बुंदेली मुझे बहुत पसंद है, अभी भी सोते मेरी पहली फर्स्ट लैंग्वेज भी आप बुंदेली बोल सकते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, फर्स्ट बोली है क्योंकि बोली है वो तो लैंग्वेज नहीं है। तो बुंदेली मुझे चूके, तो मैं क्या हो रहा था पिछले 2-3 साल से ना, एक बुंदेली दुनिया नाम का एक चैनल था
1: जी,
2: तो मैं बहुत सारे ऐसे बुंदेली गीतों को के लोग जो बनाते तो उनको फॉलो कर लेता था।
1: अच्छा।
2: तो उसमें देखा कि मैंने ये लड़का जो है ना ट्रेन में गाता है और उसका
1: नेत्रहीन है
2: वो और वो ट्रेन में गाता है या ट्रेन में ट्रेवल करते, किसी ने वीडियो बनाया तो इसलिए वो फेमस हो गया कि ट्रेन में लगा गाता है। अच्छा, मैं काफी दिन फॉलो कर रहा था, एक दिन मैंने दिखाई दिया कि वो इंस्टाग्राम पे उसे कोई पिक्चर दी, वर्सोवा बीच पे है वो। मैंने कहा ये कहां से वो आ गया, एंड मैं उसको अप्रोच करने के लिए बहुत दिन से सोच रहा था कि इसको किसी को बोलता हूँ कि इसको अप्रोच करके बुलाओ मुंबई, पर मुंबई बुलाने के लिए संसाधन चाहिए होते हैं और हमारी बहुत छोटी फिल्म है, हम ऐसा नहीं है फ्लाइट टिकट देंगे भाई आ जा तू, बट चूंकि ये मौका था कि वहां पे था तो मैंने उसको रात में ही 11:30 बजे इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजा और हैपेंस सो दैट इन हाफ एन आवर ही वाज इन द स्टूडियो, इन आवर ऑफिस एंड स्टूडियो। फिर हमने उसके बाद में सेटल किया कि भाई कब जा रहा है वो, क्या है कैसा, तो पता चला कि वो 11 बजे सुबह निकल रहा है 12 बजे। तो उसके पहले हमने एक स्टूडियो बुक किया और सारे जो भी उसके जो गाने थे उसके पास में वो उसने सुने उससे हमने, और ये गाना मैंने तेरे ही भरोसे मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया तो मैंने कहा कि इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो उसने अपने ही उस पे तंबूरे पे एक तारे पे अपने उसने रिकॉर्ड किया, एक ही इंस्ट्रूमेंट के साथ में रिकॉर्ड किया, मैंने कुछ उसमें लाभ लगे बट कुछ किया ही नहीं, इट्स जस्ट दैट। और वो लोग बोले थे इसके ऊपर कुछ म्यूजिक नहीं करोगे, इनफैक्ट उसने भी बोला मुझे कि सर आपने इस पर कुछ कराया नहीं, और तो मैंने कहा कि नहीं इस पर कुछ कराने की आवश्यकता नहीं है, ये ऐसे ही वर्क कर रहा है और ऐसे ही वर्क करेगा क्योंकि स्ट्रेट इट द वॉइस गोज डायरेक्टली टू योर हार्ट, कोई दूसरा कोई माध्यम है ही नहीं, स्ट्रेट टू द हार्ट कि मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, बहुत गूढ़ शब्द है उसमें
1: जी,
2: सागर में नैया डार दे, कौन उसमें लाइन

0: कि मैंने तेरे ही भरोसे धनवान सागर में नैया डार दई। अरे काहे की वो नाव बनाई, काहे की पतवार,
1: जी जी बिल्कुल याद है,
0: और काहे की लगा दई जंजीर सागर में नैया डार दई। सो बेसिकली इट्स अ क्वेस्ट कि दैट मैं सागर में नैया डार दई का मतलब, और हनुमत कौन है खेवनहार, तो पार कौन लगाएगा लेकिन खेवनहार कौन है, देखिए दो अलग अलग चीजें। अब आंसर क्या है, सीता सखी वहां में बैठन हारी
1: जी,
0: शक्ति उसमें बैठेगी, रामा पार लगाए वो आपको पार लगाएंगे, लेकिन खेवनहार कौन है, हनुमत खेवनहार सागर में नैया डार दे, मैंने तेरे ही भरोसे, आप ही खेवनहार हो, यू विल टेक मी दैट साइड। सो इतनी सिंपलीफाइड एंड इतनी गूढ़ और इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पॉकेटेड एक इतने खूबसूरत अगर गीत में है, तो मैं उसमें क्यों लाग लपेट करूं, क्यों उसमें मैं इंस्ट्रूमेंट डालूं और क्यों उसको भरूं और क्यों उसको ग्रैंड बनाने की कोशिश करूं, व्हाइल इट इज वर्किंग सो वेल, स्ट्रेट हार्ट टू हार्ट वर्क करता है, इधर से आवाज निकली सीधे दिल में लगती है, दैट्स हाउ इट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन इंटरनेट, यू कैन सी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स। मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 15 दिन पहले मैंने देखा था 2.5 लाख रील्स थी उसकी, पिछले 15 दिन पहले 2.5 लाख रील्स भी पता नहीं हुई, अभी देखेंगे तो लगता है मिलियन हो गई या 500 के हो गए।
1: बिल्कुल, बहुत तेजी से ये चर्चित हो रही फिल्म और गाने हिट
0: गाने, हाँ।
1: गाने लोगों के जुबान पर, बहुत मुश्किल है आज के इस युग में गाने को हिट करना, और गाने हिट हो रहे हैं, रीले बन रही, तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर वही गाना हम श्रोताओं को सुनवाते हैं
0: जी।

0: गाने के बाद हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने सुना है कि आज के इस डिजिटल युग में भी आप कलम से कागज से लिखते हैं और ये पूरी फिल्म आपने कलम और कागज से लिखी है, तो ये क्या मामला है? आपको पसंद नहीं है डिजिटल मतलब लैपटॉप पे टाइपिंग करना, या आप कागज कलम को बढ़ावा देना चाहते हैं, क्या बात है?
1: हुआ ऐसा कि मैं सारे जीवन में डिजिटली ही लिखते आया हूँ, तो मैं पेन पेपर पे लिखता नहीं था, कभी कभी लिख दिया तो लिख दिया, पर वो ऐसा रहा था कि जब फिल्म हमने अनाउंस कर दी और मैंने जो भी मेरे दिमाग में सीन्स थे

0: उनको उतारने के लिए जब मैं लिखने बैठता था तो मैं ऑब्वियसली द डिजिटल डिवाइसेस आर सो डिस्ट्रैक्टिव बिकॉज ऑल द टाइम कुछ ना कुछ आ रहा है या तो कोई कॉल कर रहा है या तो किसी मैसेज कर रहा है उसको आपको रिप्लाई करना है इंस्टाग्राम पे कुछ आ रहा है तो इट्स डिस्ट्रैक्टिंग एंड ऑल्सो आप अगर उसको सर्च करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन भी जाते हो इंटरनेट पे तो वो भी आपको कहीं से कहीं ले जाता है
1: दिख जाता है
0: और समय बहुत जाता है उसमें तो मैं एकदम तंग आके और गुस्से में मैंने आके सारी डिवाइसेस बाहर निकाल दी
1: क्या बात है
0: मैं सब कमरे से बाहर तो हमारे ऑफिस में एक छोटा सा स्पेस है जो स्लीपिंग पॉड है जो जिसको हम गुफा भी बोलते हैं कि हम तो मैं वो गया वो सेट हो जाता है पूरा पैक हो जाता है सारी डिवाइसेस बाहर की पेन पेपर पकड़ा और मैंने लिखना शुरू किया पहला सीन जैसे क्रैक हुआ मैं गया अंदर मैंने लिखना शुरू किया इन 15 दिन में रिकॉर्ड 15 डेज टाइम में मैंने पूरी स्क्रिप्ट फिनिश कर दी आपको बिलीव नहीं होगा कि पहला ड्राफ्ट ही है जो मैंने शूट किया है देयर इज नो चेंज इन द फिल्म इज स्ट्रेट एक बार में तो मेरा सजेशन लोगों को यही है कि डिजिटल डिवाइसेस आर सो डिस्ट्रैक्टिव जब भी आपको लेखन करना है जैसे आपने भी पेन पेपर पे लिखा है सब
1: बिल्कुल
0: है ना
1: मोबाइल में है जबकि
0: मोबाइल में आप लिख सकते हो पर आप जो आपको जैसे बोलते हैं ना कॉन्सेंट्रेशन से कनेक्ट फील होता है ना आपको
1: जी,
0: आपका माइंड वो बोलते हैं हैंड आई कोऑर्डिनेशन बोलिए जो भी बोलिए कि आपको कहीं ना कहीं एक लूप है वो हाथ से जब लिख रहे होते हो तो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन से जो निकल रहा है वो हो रहा है और उसमें किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं है वो डिवाइस आपके आंख में रोशनी नहीं छोड़ रही है वो ऊपर से एक मैसेज नहीं आ रहा उसमें और बीच में से कॉल नहीं आ रही है ऑल दैट हैपेंस एंड देयर आर पीपल जो कि सिर्फ जो है ना मोबाइल फोन पे लिख लेते हैं पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा कहीं ना वो सैंक्टिटी चली जाती है
1: बिल्कुल कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन
0: होते रहते हैं
1: सही कह रहे हैं और ये बात है कागज पे लिखा हुआ भले दिमाग में लिखा हुआ लेकिन कागज रखा है साथ में
0: हाँ।
1: ये बहुत जरूरी है यहाँ पर एक गाना होना चाहिए बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना सुना है
0: मुझे लगता है कि फूलों के रंग से इज माय ऑल टाइम
1: फेवरेट
0: प्रेम पुजारी
1: साहब का लिखा हुआ सचिन देव बर्मन संगीतकार तो सुनते हैं

0: था और इस गाने के साथ एक बार हम आपको फिर बुंदेलखंड ले चलते हैं। बुंदेलखंड की कोई ऐसी यादगार घटना हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: बुंदेलखंड में जब मैं पढ़ने से पहले भी, मतलब मुझे लगता है मैं स्कूल में भी नहीं गया था, तो मैंने हमारी मैं मेरे पेरेंट्स के साथ में, मेरे माता जी पिताजी के साथ में ट्रेवल कर रहा था एक कालपी से उरई के बीच में, और वहां पे रास्ते में एक भवानी मंदिर, भवानी जी का, माता का मंदिर होता है। फर्स्ट मेमोरी मेरी वही है सबसे स्ट्रॉन्ग। और अचानक से वो गाड़ी रुक जाती है, बस रुक जाती है, और सब लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि अरे मतलब डकैत डकैत ऐसा नहीं। एंड गाड़ी रुक जाती, सब सहम जाते हैं, पर मैं बहुत इंटरेस्ट से आगे चला जाता हूँ। लिटरली वो था ग्लास जो होता है उसके पास, मैं बच्चा हूँ मैं, वो मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरी है। जहाँ पे फिर मैं देख रहा हूँ बड़ा सा घोड़ा और उस पर छोटी सी महिला, उसने जो है ना पट्टा बांध रखा है, उसके हाथ में बंदूक है। वो बड़ा फैसिनेटिंग था, मतलब फॉर अ किड अचानक से इतना कोई आया है जिसको, और ऐसी वेशभूषा में किसी को देखा नहीं। तो वो फिर वो दर्शन वर्शन करती हैं, वो भवानी मंदिर में अपने सर झुकाती हैं और फिर वो चली जाती हैं वहां से। किसी को कुछ होता नहीं है, मतलब ऑब्वियसली वो लूट के नहीं आई थी, वो दर्शन करने के लिए आई थी। तो एक वो है, और दूसरा जो मेरे स्कूल के समय, जब मैं स्कूल और कॉलेज जब मैं पढ़ रहा था, कौंच भी जो ना कुंच ऋषि की धरती थी, वो मुझे बहुत लेटर समझ में आया। वहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई जब वहाँ से निकली थी और वो चोटिल थी, घायल थी, तो कौंच में एक जगह थी जहाँ पे उन्होंने रात गुजारी थी, मलहम वगैरह भी वहीं पे हुई थी उनकी। तो ये सारी चीज़ें जो थी, और प्लस बुंदेलखंड में वो जो भाषा है बहुत ही, मतलब ब्रज की लठमार, और थोड़ा सा उसके अंदर हल्का सा भाव और प्रेम भी आ जाता है
0: जी, जी।
1: तो वो लहजा जो है ना, मुझे हरदम से बहुत फैसिनेट करता है। स्पेशली पान सिंह तोमर और बैंडिट क्वीन वगैरह जो फिल्म्स हैं, इन सब के अंदर, इनफैक्ट वो नत्था, वो यूज्ड टू स्पीक उस

0: बोलियों में गाने चाहिए थे, तो लगभग 50% सॉन्ग से ऐसे जो है ना, सासा आले हंसा चाले अवधि है, फिर ये ब्रिज है, आवागमन थोड़ा ब्रिज और इसके बीच का है, आवागमन मिटा दो भोले शंकर, तो ये सारे गाने जो है ना एक एक करके, वो आइडिया ये था कि जितना हो सके हम मिट्टी की खुशबू इस फिल्म के अंदर लेके आए।
1: तो यहाँ पर गाना सुनवाते हैं।
0: हर हर महादेव।

0: आज के मेहमान। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे हनुमान अंश, फिल्म के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी से ममता सिंह की बातचीत की पहली कड़ी। इस बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी सुनिएगा अगले सप्ताह इसी समय। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: आज के मेहमान।

0: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजने वाले हैं, लीजिए अब सुनिए हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर देश और 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 वर्ष में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
2: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी,

0: सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों की समस्याओं का समाधान तलाशने पर केंद्रित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में विकसित भारत संकल्प सभा में श्री सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत को विकसित देश बनाना है। उन्होंने कहा कि अगर पश्चिम एशिया में संकट पैदा नहीं हुआ होता तो अर्थव्यवस्था के आकार के हिसाब से भारत दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल होता। श्री सिंह ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 7.4% की दर से बढ़ रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी का निर्माण न केवल वर्तमान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किया जा रहा है। घाना के विदेश सेवा संस्थान में श्री जयशंकर ने कहा कि कूटनीति और प्रतिस्पर्धा को टकराव में बदले बिना उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए और आपसी हितों में मतभेदों के बावजूद भी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 वर्ष बाद रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यह जानकारी दी। इससे पहले फरवरी 2023 में रेपो दर को 6.25% से बढ़ाकर 6.5% किया गया था। वर्ष 2023-24 में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया गया, हालांकि 2025 में इसमें कटौती शुरू की गई थी। रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि अनुमान 7.1% व्यक्त किया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी OHD राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादले और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस ने कल के विरोध मार्च के दौरान नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में बिना अनुमति के प्रवेश करने के आरोप में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। विदेश मंत्रालय के पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में इटली के विदेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय में G7 G20 अंतर्राष्ट्रीय खतरों और एकीकृत रणनीति के निदेशक पावलो मारी से मुलाकात की। श्री मारी नई दिल्ली में आतंकवाद निरोध पर भारत इटली के संयुक्त कार्य समूह की 6 बैठक की सह अध्यक्षता करने के लिए भारत यात्रा पर हैं। भारत ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के 31वें सम्मेलन COP 31 से पहले आज फिजी में आयोजित एक सत्र में जलवायु परिवर्तन पर और अधिक ठोस कार्रवाई तथा पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु संबंधी दृष्टिकोण में मौजूदा कमियों को दूर करना वर्तमान जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करना बेहद आवश्यक है। आज विश्व कपास दिवस है। इस दिवस का उद्देश्य कपास के वैश्विक आर्थिक सामाजिक और पर्यावरणीय महत्व को उजागर करना है। इस वर्ष कपास दिवस का विषय है खुशहाली के लिए कपास, व्यापार, बदलाव और साझेदारी के माध्यम से समृद्धि का निर्माण। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि कपास क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को इस दिवस की शुभकामनाएं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

0: पाइल्स हॉस्पिटल कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: लीजिए सुनिए फिल्म संगीत, शुरुआत करते हैं कैश फिल्म के इस गीत से, आवाजें हैं विशाल और सुनिधि चौहान की।

दोस्तों अभी आपने सुना मस्ती फिल्म का गीत उदित नारायण और शान की आवाजों में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। लीजिए अब सुनिए स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लम्हे।

हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम। मैं हूं आपका आरजे चेतन। हर रोज की तरह, हर दिन की तरह, आज भी मैं आ गया आपके लिए कुछ नया ले।

लेकर हम हर रोज एक नए टॉपिक के साथ आते हैं और ये टॉपिक हमारे फिटनेस, लाइफस्टाइल, हेल्थ, जैसे कि मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ, इससे जुड़ी होती है। ये टॉपिक्स को हम एक्सपर्ट्स से लेते हैं, उनकी राय लेते हैं, हमारा टीम बैठकर इसके बारे में डिस्कस करता है। बाद में सोच विचार के बाद, एक्सपर्ट्स के राय के बाद एक प्रोग्राम आप लोगों के लिए तैयार की जाती है और उसके बाद पेश किया जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए आप केयरफुली हमारी बातों को सुनिए।

एक प्रोग्राम आप लोगों के लिए तैयार की जाती है और उसके बाद पेश किया जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए आप केयरफुली हमारी बातों को सुनिए, ये बेहद जरूरी है आपकी जिंदगी के लिए। आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रैंड पेरेंट्स एज केयर गिवर्स। आमतौर पर दादा दादी और नाना नानी के पुराने किस्से सुनना आपने कई बार देखा होगा, अपने आप में काफी मजेदार अनुभव होता है ये। हालांकि आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने का ज्यादा समय नहीं मिल पाता है, लेकिन क्या आप ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने के फायदे जानते हैं? क्या उससे वाकिफ है? क्या आप बता दें कि उनके साथ टाइम स्पेंड करें आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आज के दौर में खेल, पढ़ाई और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में व्यस्त रहने के कारण बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स के साथ समय बिताने की बिल्कुल फुर्सत नहीं है। वही कुछ बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स से मिलना जुलना ही बड़ी मुश्किल से होता है। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहना आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मददगार हो सकता है। तो आइए हम आपको बताएंगे कि ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने के कुछ फायदे आज के लम्हे प्रोग्राम में आपका आरजे चेतन से। आजकल के ट्रेंडिंग लाइफस्टाइल में सिर्फ पेरेंट्स के साथ रहने वाले बच्चे अमूमन अन्य लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। वही ग्रैंड पेरेंट्स के होने से बच्चे न सिर्फ उनके साथ समय बिताते हैं बल्कि उनकी बात भी मानते हैं। साथ ही छुट्टियों में ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाने से बच्चे परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी घुलते मिलते हैं और सोशल लाइफ को खुलकर एंजॉय कर पाते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने से बच्चे बड़ों का सम्मान करना सीखते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स अक्सर बच्चों की नादानियों को माफ करके उन्हें सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं, जिससे बच्चों की सहनशीलता में इजाफा होता है। साथ ही ग्रैंड पेरेंट्स के साथ साथ बच्चे सभी बड़े बुजुर्गों का सम्मान की भावना से देखते हैं और उनकी सलाह को नजरअंदाज नहीं करते हैं। नाना नानी, दादा दादी के साथ या जॉइंट फैमिली में रहने से बच्चों का मनोबल बढ़ता है, उनको सपोर्ट सिस्टम मिलता है। ऐसे में बच्चे हर परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश करता है। साथ ही मुश्किलों से डरने से बजाय उनका डटकर सामना करने की यकीन रखता है। इसके अलावा ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने से बच्चों में समर्पण और सहयोग की भावना भी पैदा होती है। छोटे बच्चों के लिए दादा दादी बेहद जरूरी होते हैं। जो बच्चे अपने दादा दादी नाना नानी के पास रहते हैं वह अन्य बच्चों से ज्यादा खुश और स्वस्थ रहते हैं। दादा दादी अपने बच्चों को हर तरह से आगे बढ़ने में मदद करते हैं। केवल ग्रैंड पेरेंट्स ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने बच्चों को पुराने संस्कृति, मान्यता, परंपरा से जोड़ सकते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों में अच्छी आदतों के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। बच्चे उन्हीं के द्वारा ही नैतिक गुणों को जानते हैं और ये भी समझते हैं कि नैतिक गुणों की जिंदगी में कितनी अहमियत होती है। इसके अलावा भी ग्रैंड पेरेंट्स से बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आइए जानते हैं कौन सी है वो कारण जिनकी वजह से बच्चों के लिए ग्रैंड पेरेंट्स जरूरी होती है। सुनते रहिए लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। जो बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं वे अपने पूरे परिवार यह तक कि दादा दादी के रिश्तेदारों को भी जान जाते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों को पुराने संस्कृति, मान्यता ये सब तो सिखाई देते हैं। हर माँ बाप की एक इच्छा होती है कि उनके बच्चों में नैतिक गुण जरूर हो। ये नैतिक गुण ही जीवन को जीने का तरीका बदल सकता है। इसीलिए नैतिक शिक्षा के लिए ग्रैंड पेरेंट्स एक अच्छा विकल्प है। अपने बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियां सुनाकर उनके अंदर नैतिक गुण लाने में बेहद सहायक है। हर बच्चा बड़े बुजुर्गों से कुछ ना कुछ जरूर सीखता है। ये पाया गया है कि बच्चों को उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहना बेहद पसंद होता है। ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि उन्हें कभी प्यार की कमी महसूस ही नहीं होती है और वह हमेशा खुश रहते हैं। उन्हीं से बच्चों की सुरक्षा की भावना भी एहसास होता है। उनके द्वारा दिया गया प्यार ही उन्हें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। जब भावनात्मक या व्यवहार संबंधी परेशानियां उनके सामने खड़ी हो जाती है तो इस स्थिति में वह बेहतर तरीके से समस्या से निपटते हैं।

ऐसे बच्चों के अंदर अपने दादा दादी के और नाना नानी के प्रति स्नेह और आदर की भावना ज्यादा होती है, जिससे वो भावनात्मक रूप से स्थिर होने लगते हैं और दूसरों की भावनाओं की कद्र करते हैं। एक अध्ययन में ये बात सामने आई है कि जो बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं, वे अकेलापन, चिंता और डिप्रेशन जैसी समस्याओं से कम पीड़ित होते हैं। दादा दादी या नाना नानी हमारे बच्चों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब बच्चों के पेरेंट्स उनकी कोई जिद पूरी नहीं करते हैं, ऐसे में ग्रैंड पेरेंट्स उनकी इच्छा पूरी कर उनको खुशी देते हैं। लेकिन कभी कभी ग्रैंड पेरेंट्स के अधिक प्यार की वजह से बच्चे अपने पेरेंट्स को अनसुना करने लगते हैं, उनका कहना नहीं मानते, जिससे दो पीढ़ियों के बीच गलत फैमिली बनने लगती है। इसीलिए ग्रैंड पेरेंट्स को चाहिए कि वो ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए अपने प्यार को बैलेंस रखे और बच्चों के साथ ये बात करने से बचे। पेरेंट्स कुछ कारणों से अपने बच्चों को कुछ चीजों को खाने से मना करते हैं, जबकि वही दूसरी तरफ ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों की बात को इग्नोर करते हुए अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को जिद पूरी करते हैं। ऐसा करना जहां उनके नाती पोतों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, वही ऐसा सपोर्ट उनको जिद्दी भी बना सकता है। पेरेंट्स अपने बच्चों में कुछ सुधार की कोशिश में उनको पनिश करने के वजह से उनकी विश पूरी नहीं करते। कभी कभी पेरेंट्स बच्चों को उनकी पढ़ाई में अच्छे ग्रेड्स लाने तक उनको कोई नए टॉयस और गेम नहीं दिलाते, जबकि इसके विपरीत ग्रेड पेरेंट्स अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की विश पूरी कर देते हैं, जिससे बच्चों में बिना प्रयास के चीजों को पाने की आदत बन जाती है। इन कुछ बातों को ध्यान में रखकर आप अपने बच्चों और बच्चों के साथ अपने रिश्ते को भरपूर जी सकते हैं। तो दोस्तों, यह था आज का टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। विद दिस वी कंक्लूड आवर प्रोग्राम फॉर टुडे। आई विल गेट बैक टू यू इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ लर्न है। अंटिल देन, हैव अ ग्रेट टाइम। बाय फ्रॉम योर आरजे चेतन। Call or messages on 0951522703 9, that's 0951522703 9, or write to us at feedbackamc1@gmail.com, that's feedbackamc1@gmail.com. You can also follow us at our social media handle spice.lumhe.vanilla, that's spice.lumhe.vanilla. This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

0: अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लम्हे।
1: सब रोगों की एक ही दवाई, हर तरफ रखो साफ सफाई।
0: यह आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डूंगराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी और अस्मा नाज अंसारी जी ने। लिखते हैं,
2: ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान उससे सबक लेकर संभल जाए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है साहू पारा सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू और दुलीचंद साहू जी का। वो लिखते हैं,
1: प्रिय उद्घोषक जी मन ला जय जोहार पहुँचे, आपके उमंग एनसीईआरटी कार्यक्रम ला ध्यान लगा के सुनथन, बहुत बहुत

0: धन्यवाद देवत हूँ।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपर कोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी जी का।
1: और इसके साथ साथ ही संदेश मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, तेवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी।
0: और छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू के साथ साथ शिवम साहू लिखते हैं, सादर नमस्कार,
1: मैं उमंग कार्यक्रम का नियमित श्रोता हूँ। इस कार्यक्रम से हमें मनोरंजन तो होता ही है और हमें ज्ञान और सीख व प्रेरणा भी मिलती है। और सफल प्रस्तुति के लिए उमंग परिवार और अजीत जी और विमलेश जी को हार्दिक बधाई।
0: अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर संतोष कायंदे, डॉक्टर अशोक इंगले, डॉक्टर संतोष वावगे और श्री संजय देशमुख लिखते हैं,
1: CIET द्वारा प्रस्तुत उमंग कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है
0: जी।
1: कल उमंग कार्यक्रम में दृढ़ संकल्प की धनी अरुणिमा सिन्हा के बारे में जानकारी दी गई, जो हमें बहुत अच्छी लगी। हम लोग अकोट जिला अकोला में स्थित श्री शिवाजी महाविद्यालय में अध्यापक हैं। महाविद्यालय में जाने के लिए हर दिन हमें 50 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। उमंग कार्यक्रम में दी जाने वाली रोचक जानकारी से हमारी हर दिन की यात्रा बहुत सुखद और आनंददायी बन जाती है।
0: आपने आगे लिखा है, इस कार्यक्रम से न केवल हमारी यात्रा सुखद बनती है बल्कि उससे हमारा अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया भी बहुत प्रभावी बन जाती है। उमंग कार्यक्रम हमारी दिनचर्या का अभिन्न अंग बन गया है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी, अजीत जी, विमलेश जी और पूरी उमंग टीम को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं प्रतिष्ठित पुरस्कारों की।
0: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार की
1: जी।
0: आज हम आपको एशिया के एक ऐसे प्रतिष्ठित पुरस्कार की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो विमलेश जी, जरा श्रोताओं को ये तो बताइए कि आज हम किस पुरस्कार की बात करेंगे।
1: अजीत जी, आज हम बात करेंगे रमन मैग्सेसे पुरस्कार की।
0: बिल्कुल सही,
1: लेकिन इस पुरस्कार के पीछे की कहानी जानने के लिए हमें चलना होगा फिलीपींस के इतिहास में। तो आइए श्रोताओं, शुरू करते हैं
0: मैग्सेसे पुरस्कार की कहानी। तो विमलेश जी, पहला प्रश्न तो ये है कि इस पुरस्कार का नाम मैग्सेसे पुरस्कार क्यों पड़ा?
1: अजीत जी, सचमुच ये जानना बहुत जरूरी है। दरअसल रेमोन मैग्सेसे फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 31 अगस्त 1907 को फिलीपींस में हुआ था। वे अपने सरल जीवन, जनता से जुड़ाव और सार्वजनिक सेवा के लिए जाने जाते थे और जनता में बहुत लोकप्रिय थे
0: जी। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शासन में ईमानदारी और आम लोगों की समस्याओं पर बहुत ध्यान दिया। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन प्रश्न ये भी है कि उनके नाम पर पुरस्कार शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये तो हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने। इसके पीछे एक दुखद घटना है। 17 मार्च 1957 को एक विमान दुर्घटना में राष्ट्रपति रेमोन मैग्सेसे की मृत्यु हो गई। बहुत कम उम्र में उनका जीवन समाप्त हो गया।
0: और श्रोताओं, उनकी स्मृति को जीवित रखने और एशिया में ऐसे लोगों को सम्मानित करने के उद्देश्य से 1957 में रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना की गई। पहला पुरस्कार समारोह 1958 में हुआ, लेकिन विमलेश जी, श्रोताओं को हम ये भी बताना चाहेंगे जरूर कि ये पुरस्कार किन लोगों को दिया जाता है।
1: अजीत जी, ये पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने एशिया में समाज और मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए उल्लेखनीय कार्य किया हो, जैसे
0: सामाजिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य, कला, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले लोगों को भी ये सम्मान मिल सकता है
1: जी।
0: भारत के कई उल्लेखनीय व्यक्तियों और संस्थाओं को भी रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है।
1: मुझे लगता है इस पुरस्कार की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये हमें बताता है समाज में बदलाव केवल बड़े बड़े नामी लोगों से नहीं आता
0: जी। विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। किसी गाँव में काम करने वाला कोई सामाजिक कार्यकर्ता, किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने वाला शिक्षक, कोई सकारात्मक पत्रकार या सामुदायिक हित के लिए लगातार काम करने वाला व्यक्ति भी समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है।
1: यानी रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की मूल भावना है निस्वार्थ सेवा और समाज के प्रति जिम्मेदारी।
0: जी बिल्कुल, ये पुरस्कार हमें याद दिलाता है कि किसी भी काम की महानता केवल इस बात से तय नहीं होती कि उसे कितने लोग देख रहे हैं, बल्कि इस बात से होती है कि उससे कितने लोगों के जीवनों में सकारात्मक परिवर्तन आया।
1: तो अजीत जी, अगर हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो क्या हमें किसी बड़े अवसर का इंतजार करना चाहिए?
0: बिल्कुल नहीं विमलेश जी, बिल्कुल नहीं। शुरुआत अपने आसपास से ही की जा सकती है।
1: एक बच्चा पढ़ाना,
0: दूसरी बात किसी जरूरतमंद की मदद करना,
1: पर्यावरण की रक्षा करना,
0: ईमानदारी से अपना काम करना
1: और समाज में सकारात्मक सोच फैलाना।

0: ना।
1: ये सभी छोटे छोटे कदम मिलकर बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं।
0: जी तो श्रोताओं, आज की कहानी हमें एक सुंदर संदेश देती है कि
1: सम्मान पाने के लिए महान काम मत कीजिए, महान काम इसलिए कीजिए क्योंकि उससे किसी का जीवन बेहतर हो सकता है।
0: और शायद यही रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की सबसे बड़ी प्रेरणा है। तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी एशिया के नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की। अब सुनिए आज का प्रश्न।
1: तो हमारा आज का प्रश्न है कि मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा और किन की स्मृति में दिया जाता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा और किन की स्मृति में दिया जाता है।
1: आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर हमारे प्रश्न का उत्तर या अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप सीआईटी एनसीईआरटी के बारे में ताजा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और हाँ, यदि आप एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
0: जी,
1: इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो उमंग कार्यक्रम में प्रसारित होते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम है अपना अपना काम।
0: एनसीईआरटी की तीसरी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि हम सबका अपने परिवार और समाज में एक विशेष उत्तरदायित्व और कार्य है, उसे हमें पूरे समर्पण के साथ निभाते हुए कार्य करना चाहिए।

0: सिमरन बाग में बैठी स्कूल का काम कर रही थी।
1: हर पल चलती जाती चीटी, शम का राग सुनाती चीटी। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चीटी। ये हो गया मेरा स्कूल का काम। ओहो, मैं तो थक गई।
0: वो सोचने लगी,
1: इतना सारा लिखने पढ़ने का काम, स्कूल जाओ तो वहाँ पढ़ो, घर आओ तो फिर पढ़ो। कितना अच्छा होता अगर मुझे पढ़ना ना पड़ता।
0: पुस्तक रख सिमरन चारों ओर देखने लगी। उसने देखा कि मधुमक्खियां आनंद पूर्वक एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही थीं।
1: मैं अभी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ।
0: भिन्न भिन्न करती मधुमक्खियां रुक गईं। वे अचंभित होकर बोली,
2: तुम तो इतनी सुखी हो, तुम क्यों हमारे जैसा नन्हा कीड़ा बनना चाहती हो?
1: मुझे क्या सुख है, इतना तो पढ़ना पड़ता है। मैं तो तुम्हारी तरह डाल डाल फूल फूल उड़ना चाहती हूँ।
2: इधर से उधर उड़ना हमारा काम है। सारे दिन उड़ उड़ कर रस इकट्ठा करते करते हमारे पंख थक जाते हैं। और
0: सिमरन ने कान बंद कर लिए।
1: सारे दिन पंख फैलाकर उड़ना पड़े तो मैं बहुत थक जाऊंगी।
0: फिर उसने ऊपर देखा, फलों से लदा पेड़।
1: हाँ, अगर मैं पेड़ होती तो अच्छा था। आराम से एक जगह खड़े खड़े सब कुछ मिल जाता।
0: पेड़ हंसने लगा।
3: मैं समझ गया, तुम सोचती हो कि मैं आराम से खड़ा रहता हूँ बस। सुनो, मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है। जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं, और इतने परिश्रम के पश्चात

0: जो फल उगते हैं वो भी हम तुम्हें दे देते हैं।
1: सिमरन ने आंखें झुका ली।
2: सच, ये पेड़ तो बहुत परिश्रम करते हैं, फल तो हम ही खा लेते हैं। लेकिन इस चिड़ियों की मौज है।
1: सिमरन ने चिड़ियों को दाना खाते देखकर कहा,
2: हाँ मैं भी चिड़िया बन जाती तो ठीक था।
3: नाना ये क्या सोच रही हो? एक एक दाना ढूंढते ढूंढते सारे दिन उड़ती हूँ मैं। घोंसला बनाने के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और तो और,
2: बस बस मैं समझ गई।
1: वो सोचने लगी,
2: परिश्रम से ही सब जीते हैं। मुझे भी परिश्रम करना चाहिए और मन लगाकर पढ़ना चाहिए।
1: उसने अपनी पुस्तकें उठाई और उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई।
2: सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी।
4: तो बच्चों सुना आपने, मधुमक्खी, चिड़िया, पेड़, चींटी सभी अपना अपना काम करते हैं। जरा सोचिए कि हमारा अपना काम पढ़ाई के अलावा और भला क्या क्या हो सकता है। अपना काम हो सकता है जैसे सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करना, स्कूल से आकर बस्ता सही जगह पर रखना, और हाँ माता पिता की जहां तक हो सके मदद करना। है ना ये हमारा अपना काम? तो आइए जब सब करते हैं अपना अपना काम तो क्यों ना हम सब भी करें अपना अपना काम।
5: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम

0: और आइए अब सुनते हैं भारत के प्रथम इंजीनियर सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के जीवन और उपलब्धियों पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम।
1: भारत ने सभी क्षेत्रों में एक से एक विलक्षण प्रतिभाओं को जन्म दिया है। इन प्रतिभाओं का अमूल्य योगदान पूरी मानवता के लिए वरदान सिद्ध हुआ है।
2: ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व थे डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। उन्हें भारतीय इंजीनियरिंग का जनक कहा जाता है। वो एक अद्भुत प्रतिभा वाले विलक्षण अभियंता और युग दृष्टा थे। उनका जन्म कर्नाटक राज्य के कोलार जिले के चिक्काबल्लापुर कस्बे में 15 सितंबर 1860 को हुआ था।
1: बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में अभियंता दिवस या इंजीनियर्स डे उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 15 सितंबर को मनाया जाता है। उनके पिता का नाम श्रीनिवास शास्त्री

0: त्री तथा माता का नाम वेंकचम्मा था। उनके पूर्वज आंध्र प्रदेश के मोक्षगुंडम से यहाँ आकर बस गए थे, इसलिए मोक्षगुंडम उनके पारिवारिक नाम में जोड़ा जाने लगा।
1: जब बालक विश्वेश्वरैया मात्र 12 साल के थे, तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके जन्म स्थान पर स्थित एक प्राइमरी स्कूल में हुई। पिता की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट ऐसा रहा कि उन्हें बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का खर्च उठाना पड़ता था।
0: उन्होंने कठोर परिश्रम किया और परिस्थितियों से संघर्ष किया और आखिर आ ही गया वर्ष 1881, जब उन्होंने पूरे मैसूर राज्य में विज्ञान स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
1: बहुत अच्छा काम। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की सभा श्री मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के सम्मान में बुलाई गई है, जिन्होंने पूरे मैसूर राज्य में प्रथम श्रेणी में सबसे अधिक अंक लाकर विज्ञान में स्नातक की परीक्षा पास की है। उनसे निवेदन है कि मंच पर आकर प्रशस्ति पत्र ग्रहण करें। भाई वाह, कमाल कर दिया। साथियों, इतना ही नहीं, आज ही विश्वविद्यालय में मैसूर राज्य के दीवान का संदेश आया है कि श्री मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी की आगे की पढ़ाई और बाकी पूरा खर्च मैसूर सरकार ही वहन करेगी।
0: पूना के साइंस कॉलेज से उन्होंने सन 1883 में सिविल इंजीनियरिंग की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और महाराष्ट्र सरकार के नासिक लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए। भवन निर्माण, जल और नगर प्रबंधन जैसे कार्यों में उनका सानी नहीं था।
1: उन दिनों भारत आजाद नहीं हुआ था। हुआ ये कि सक्कर में पानी की भारी समस्या खड़ी हो गई। बता दें कि सक्कर सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ सिंध प्रांत का एक नगर है, इसे सुकूर भी कहते हैं। समस्या के निदान के लिए विश्वेश्वरैया जी को विशेष सलाहकार के रूप में ब्रिटिश सरकार के मुख्य अभियंता द्वारा सक्कर बुलाया गया।
2: सर, गुड मॉर्निंग।
3: गुड मॉर्निंग सर।
2: नमस्कार।
3: नमस्ते
2: फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि आज की खास बैठक सक्कर नगर पालिका में पानी की समस्या पर बात करने के लिए बुलाई गई है। हमें इसका समाधान खोजना है।
4: जी सर, इन दिनों अखबारों में भी इसके बारे में बहुत छप रहा है और जनता बहुत परेशान है सर।
2: ये एक सीरियस बात है। हमें खुशी है कि हमारी खास गुजारिश पर आज हमारे बीच मिस्टर मोक्षगुंडम मौजूद हैं। आपने बहुत सी जगहों पर बहुत उम्दा काम किया है। मिस्टर मोक्षगुंडम, हम आपके विचार जानना चाहते हैं।
5: धन्यवाद सर। हमें नदी के आसपास हर 500 मीटर की दूरी पर गहरे गड्ढे खोद रहे हैं ताकि बाढ़ के समय सिंधु नदी का पानी इन गड्ढों में भर जाए और वर्षा के जल का भंडारण हो सके। हमने बहुत से स्थानों पर इस तरीके को अपनाया है सर।
4: आप कहना चाहते हैं कि ऐसा करने से बाढ़ का पानी गड्ढों में भर जाएगा, इससे बाढ़ का पानी शहर में भी नहीं जाएगा और पानी जमा भी हो जाएगा, है ना?
5: जी सर। और इसके अलावा हमें शहर की सभी ऊंची जगहों पर बड़ी बड़ी टंकियां बनानी होंगी।
4: क्यों?
5: ताकि वहां भी वर्षा का जल जमा किया जा सके।
4: हो।
5: और हाँ सर, ऊंटों द्वारा टंकियों तक जल पहुँचाया जा सकता है।
2: यू मीन वॉटर हार्वेस्टिंग। बहुत अच्छा विचार है आपका। मैं आपके डिपार्टमेंट को आज ही लेटर लिखता हूँ कि आपका तबादला कुछ समय के लिए सक्कर में कर दिया जाए।
5: थैंक यू सर, मुझे भी आपके साथ काम करके बहुत खुशी होगी सर।
2: ओके ओके ओके, वेलकम वेलकम।
5: थैंक यू।
1: साथियों, विश्वेश्वरैया के इस सुझाव का परिणाम बहुत ही प्रभावी रहा। बाढ़ की समस्या से भी छुटकारा मिला और सक्कर जैसे शुष्क प्रदेश में जल की समस्या बहुत हद तक दूर हो गई। ये परियोजना देश के बहुत से जल संकट का

0: न करने वाले क्षेत्रों के लिए उदाहरण बन गई। इस समय उनकी उम्र मात्र 32 वर्ष थी। लोक निर्माण विभाग में रहकर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी ने कोल्हापुर, बेलगाम, धारवाड़, बीजापुर, अहमदाबाद और पूना समेत कई शहरों में जल आपूर्ति परियोजनाओं पर खूब काम किया था।
1: अब तक उनकी ख्याति पूरे देश में फैल गई थी। उन्हें मैसूर राज्य का मुख्य अभियंता नियुक्त कर दिया गया और साथ साथ दक्षिण भारत के कर्नाटक संभाग का रेलवे सचिव भी। एक बार उनके साथ बड़ी रोचक घटना हुई। वो ट्रेन से लोक निर्माण विभाग के किसी सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में भाग लेने जा रहे थे। ट्रेन में कई अंग्रेज भी थे।
0: सभी अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे और ट्रेन तेज गति से चल रही थी। अचानक मोक्ष गुंडम उठे और ट्रेन की जंजीर खींच दी। लोगों को बड़ा गुस्सा आया। उनका अचानक उठना और तेजी से जाकर ट्रेन का जंजीर खींचना किसी की समझ में नहीं आया।
2: किसने खींची चेन?
3: सर, हमने नहीं किया। हाँ, हमने नहीं किया, इन्होंने किया है। हम तो मना कर रहे थे सर।
4: जी सर, मैंने ही चेन खींची है। सर, मुझे लगा कि आगे की पटरियां उखड़ी हुई हैं।
2: व्हाट? क्या मजाक है? ये आप कैसे कह सकते हैं?
4: श्रीमान, यदि विश्वास नहीं है तो चलकर स्वयं देख लीजिए।
2: आइए आइए, देखते हैं।
4: चलो आइए, हम भी चलते हैं।
2: लेकिन मिस्टर, कान खोलकर सुन लीजिए, अगर बात आपकी गलत निकली ना तो आपको सजा हो सकती है। आइए।
4: ठीक है सर, मुझे मंजूर है।
0: और मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की बात सच निकली। कुछ दूरी पर उन्हें पटरियां उखड़ी हुई दिखाई दी।
4: आइए सर, आइए देख लीजिए।
2: अभी तक तो यहां भी ठीक ही है। आइए आगे देखते हैं। अरे एक मिनट, यहां पटरियां तो सच में उखड़ी हुई हैं। ये देखिए, यहां पटरियां उखड़ी हुई हैं। अब मिस्टर, आपको कैसे पता चला?
4: सर देखिए, जब सभी अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे तो मुझे ऐसा लगा कि ट्रेन की गति में अचानक परिवर्तन आ गया है और पटरियों की आवाज भी बदल गई है। सामान्य स्थिति में ऐसी आवाज प्राय सुनाई नहीं देती है। तभी मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है।
2: थैंक यू वेरी मच सर, आपने आज बहुत से यात्रियों की जान बचा ली।
3: We are so thankful to you. It's amazing. May I know your name, please?
4: I am Dr. Moksh Gundam Vishweshwaraiah.
3: Oh, the engineer in chief of Mysore state.
5: Aur railway sachiv bhi.
2: Namaskar sir.
6: Ji.
4: Ji, ji sir. Main wahi hoon.
3: Namaskar sir. Namaskar. We were actually going to attend your meeting only. It's actually our privilege to meet you personally. Thank you very much, sir. Thank you.
4: धन्यवाद।
0: तो ऐसे थे डॉक्टर विश्वेश्वरैया। बांध बनाने की प्रक्रिया में स्वचालित जल द्वारों का प्रयोग उनका अद्भुत नवाचार था। इस तकनीक को डॉक्टर विश्वेश्वरैया के नाम पर पेटेंट किया गया। आज भी ये प्रणाली पूरे विश्व में प्रयोग में लाई जा रही है।
1: कृष्णराज सागर बांध के निर्माण के कारण मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का नाम पूरे विश्व में सबसे अधिक चर्चा में रहा। मैसूर राज्य में उनके योगदान को देखते हुए मैसूर के महाराजा ने उन्हें सन 1912 में राज्य का दीवान यानी मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया।
0: लोक निर्माण कार्य में उनके अतुल्य योगदान को देखते हुए उन्हें अनेकानेक सम्मान और पुरस्कारों से नवाजा गया। सन 1904 में उन्हें 50 साल तक लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स की मानद सदस्यता दी गई। 1921 में वो कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस से सम्मानित किए गए।
1: सन 1955 में कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। जब सर एम विश्वेश्वरैया 100 साल के हुए तब भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया।

0: 101 साल की उम्र में 14 अप्रैल 1965 को विश्वेश्वरैया का निधन बेंगलोर आज के बंगलुरु में हो गया।
1: सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की दूरदर्शिता के कारण मैसूर में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया और लड़कियों की शिक्षा के लिए पहल की गई। समाज के संपूर्ण विकास के उनके कार्यों के कारण ही उन्हें कर्नाटक का भगीरथ भी कहा जाता है। सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया को उनके अतुल्य योगदान के लिए राष्ट्र और विश्व का आभार।
2: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।
3: जी मैं रमेश पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा। रात को सफर लंबा होता है और रास्ते अंधेरे। उस रात मैंने गाड़ी एक ढाबे के पास खड़ी की थी और रिफ्लेक्टर के ऊपर मिट्टी जमी हुई थी, तो मैंने सोचा कल सुबह साफ कर दूंगा। मुझे बात छोटी सी लगी, सिर्फ 1 मिनट लगता है साफ करने में। उस रात किसी की जान भी तो जा सकती थी।

0: सड़क किनारे खड़े वाहन पर साफ और सही रिफ्लेक्टर होना आवश्यक है ताकि वो दूर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
1: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
2: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना,
1: कुसुमलता,
2: वीरेंद्र
1: और हमारी आज की विशेषज्ञ
2: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग।

0: खूबसूरत होगा देश हर छोर, करेंगे हम सफाई चारों ओर।
1: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं,
0: कदम से कदम मिलाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। जहां रहती है साफ सफाई, वहीं होती है अच्छे मन से पढ़ाई।
2: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਫ ਐਮ 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੋਹੂ ਸੁਣੋ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर देश और उसके 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 साल में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
1: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत दुनिया की पांच सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में विकसित भारत संकल्प सभा में श्री सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत को एक विकसित देश बनाना है। उन्होंने कहा कि अगर पश्चिम एशिया में संकट पैदा न होता तो अर्थव्यवस्था के आकार के हिसाब से भारत दुनिया के शीर्ष तीन देशों में शामिल हो जाता। श्री सिंह ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 7.4% की दर से बढ़ रही है। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 साल बाद रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यह जानकारी दी। इससे पहले फरवरी 2023 में रेपो दर को 6.25% से बढ़ाकर 6.5% किया गया था। वर्ष 2023-24 में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया गया, हालांकि 2025 से इसमें कटौती शुरू की गई थी। रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि अनुमान 7.1% व्यक्त किया है। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में GST विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। वित्त मंत्रालय के अनुसार GST व्यवस्था में अगले चरण के सुधारों के लिए 5 सूत्री योजना का प्रस्ताव रखेगी। दिल्ली पुलिस ने कल के विरोध मार्च के दौरान नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में बगैर अनुमति के प्रवेश के आरोप में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी OSD राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हिंदी को बढ़ावा देने का आधार भाषा के इस्तेमाल को थोपने के बजाय इसमें अधिक अवसर और भागीदारी को बढ़ावा देना होना चाहिए। हिंदी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक में उन्होंने कहा कि जब हिंदी रोजगार और पेशेवर अवसर सृजित करेगी तो इसका इस्तेमाल स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। इस अवसर पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की कौशल पत्रिका का लोकार्पण भी किया गया। रूस ने कल रात यूक्रेन के कई क्षेत्रों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। इन हमलों में 4 बच्चों समेत 19 लोगों की मौत हो गई और करीब 60 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के अनुसार उत्तरी चेर्निहिव क्षेत्र का प्रिलुकी सबसे अधिक प्रभावित हुआ। वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केंसो सुआई को दिया गया है। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने यह सम्मान उन्हें असममित कार्बनिक संश्लेषण में नॉन लीनियर प्रभावों और ऑटो कैटालिसिस की खोज के लिए दिया है। उन्होंने रसायन विज्ञान में मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब चुनने की प्रक्रिया पर काम किया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: असी आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे हैं FM 107.2 MHz।

0: Piles Hospital. Call करें 9814128667 पर और Piles से मुक्ति पाएं.
1: साफ सफाई अपनाएं, बीमारी को दूर भगाएं. स्वच्छ भारत है एक बड़ा अभियान, सब मिलके करें अपना योगदान.

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗੀਤ ਮੋਹਿਤ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ FM 107.2 MHz ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6:10 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਸਮਾਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ 6:10 ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 6:20 ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
1: नमस्कार ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 25 वर्ष में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम में विकसित भारत संकल्प सभा से सेवा ज्योति यात्रा का शुभारंभ किया श्री मोदी के 25 वर्ष की यात्रा को गरीब कल्याण और भारत गौरव की यात्रा बताया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सेवा ज्योति यात्रा की मशाल युवाओं को सौंपी उनसे विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया हरियाणा के विभिन्न जिलों में भी सेवा ज्योति यात्राएं निकाली गईं अंबाला में ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने हर नागरिक से सेवा का संकल्प लेने का आह्वान किया और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिंगापुर दौरे के दौरान पंजाब और हरियाणा मूल के उद्योगपतियों से हरियाणा में निवेश की संभावनाओं का

0: लाभ उठाने का आह्वान किया। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर देश और 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा, 25 वर्ष में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
1: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों की समस्याओं का समाधान तलाशने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि भारत अब अपनी बढ़ती ताकत और चुनौतियों से निपटने की क्षमता के लिए चर्चा में है।
1: जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की समस्या, ऐसा लगता था कि यह अंतहीन है, लेकिन आज आर्टिकल 370 की दीवार पूरी तरह टूट चुकी है। इसी तरह नक्सलवाद की समस्या को देश का दुर्भाग्य मान लिया गया, लेकिन आज इसकी कमर तोड़ी जा चुकी है। जो आतंकवाद भारत के भाग्य को ही चुनौती दे रहा था, लेकिन यह भारत की अदम्य इच्छा शक्ति है। हमने घर में घुसकर मारा और दुश्मनों को बता दिया कि भारत की ताकत क्या है।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुरुग्राम में विकसित भारत संकल्प सभा से सेवा ज्योति यात्रा का शुभारंभ किया। गृह मंत्री अमित शाह ने यात्रा की मशाल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सौंपते हुए प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने और विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने पैदल यात्रा करते हुए सिग्नेचर टावर के पास यात्रा की मशाल स्थापित की। उन्होंने मशाल युवाओं को सौंपते हुए विकसित भारत के निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में आज के दिन को स्वर्णिम दिन बताया।
2: 7 अक्टूबर का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक प्रकार से स्वर्णिम और युगांतकारी दिन है। आज गरीब से गरीब घर में जन्मे हुए एक व्यक्ति ने अपने गुणों के आधार पर, अपनी क्षमता के आधार पर और करोड़ों करोड़ों लोगों को साथ में लेकर लगातार 25 साल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया है। जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा, ये 25 साल स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाएंगे।
0: उन्होंने गत 12 वर्ष में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि ये श्री मोदी की 25 वर्ष की यात्रा गरीब कल्याण और भारत गौरव की यात्रा है।
2: ये 25 साल में गरीबी से मुक्ति, सुरक्षित भारत, धारा 370 हटाना, नक्सलवाद समाप्त करना, राम जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाना, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊपरी सीमा तक ले जाना और 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना, ये यात्रा भारत गौरव की यात्रा है।
0: आज गुरुग्राम में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा के समापन के बाद भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने स्वयं स्वच्छता अभियान में भाग लेकर कार्यकर्ताओं को स्वच्छता और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश दिया। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कार्यक्रम स्थल पर कार्यकर्ताओं के साथ सफाई करते हुए कचरा एकत्रित किया और सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखने का आह्वान किया। इस दौरान गुरुग्राम के भाजपा विधायक मुकेश शर्मा और महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने भी स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी करते हुए स्वच्छता का संकल्प लिया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के विभिन्न जिलों में आज सेवा ज्योति यात्राएं निकाली गईं। अंबाला शहर में पुलिस लाइन मैदान में सेवा ज्योति यात्रा के शुभारंभ पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने हर नागरिक से सेवा का संकल्प लेने का आह्वान किया। श्री विज ने कहा कि 2047

0: 2040 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है।
1: जो लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत बनाना, हर क्षेत्र में उच्चतम क्षेत्र तक जाना, उसके लिए सरकार तो लगातार काम कर रही है और करके दिखा दिया है। अब हम सबको भी इसमें सेवा के काम में जुड़ना है, इसीलिए ये सेवा ज्योति यात्रा निकाली जा रही है। ये हर मोहल्ले तक जाएगी, हर गांव तक जाएगी, हर शहर तक जाएगी।
0: कुरुक्षेत्र में सेवा ज्योति यात्रा केशव पार्क से शुरू हुई और विभिन्न मार्गों से होते हुए रेलवे रोड पहुंची, जहां चौक का नाम बदलकर सेवा संकल्प चौक किया गया। यात्रा से पूर्व उपस्थित जनसमूह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव संबोधन को सुना और सेवा व जन कल्याण का संकल्प लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा,
2: हम हथियार पोर्ट करते थे, लेकिन आज 60-65% मेड इन इंडिया हथियार तैयार होते, हम एक्सपोर्ट करते हैं। उद्यम राम मंदिर स्थापित किया, धारा 370 को तोड़ के साबित कर दिया हिंदुस्तान ताकतवर देश है।
0: लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने हिसार में विकसित भारत संकल्प सभा एवं सेवा ज्योति यात्रा का शुभारंभ किया। पत्रकारों से बातचीत में कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने कहा कि इस संकल्प सभा का मुख्य उद्देश्य केंद्र व राज्य सरकार के जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाना और नागरिक सहभागिता के माध्यम से समाज को सशक्त बनाना है।
3: सेवा ज्योति यात्रा हमारे हर जिले के अंदर, हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर ये चली है कि आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे हुए हैं। पिछले 12 सालों से लगातार देश का नेतृत्व करते हुए देश का गौरव विश्व पटल पे बढ़ाने का काम किया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन सबको सुनने को मिला और उन्होंने देशवासियों को एक तरह से शपथ दिलाने का काम किया है, हम जिएंगे तो इस देश के लिए, हम कार्य करेंगे उस देश को आगे बढ़ाने के लिए।
0: जींद में अर्जुन स्टेडियम में सेवा ज्योति यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी तथा हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने सिरसा के भगत सिंह स्टेडियम, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर ने रेवाड़ी के बाल भवन में, होटल से विधायक हरिंदर सिंह और हथीन से विधायक इसराइल ने पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम से सेवा ज्योति यात्रा का शुभारंभ किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 25 वर्ष में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम में विकसित भारत संकल्प सभा से सेवा ज्योति यात्रा का शुभारंभ किया। श्री मोदी के 25 वर्ष की यात्रा को गरीब कल्याण और भारत गौरव की यात्रा बताया और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सेवा ज्योति यात्रा की मशाल युवाओं को सौंपी, उनसे विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।

0: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी चंचल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दूरदर्शी नीतियां अते सख्त मेहनत सदका भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र ते अपने सुपने नूं जरूर पूरा करेगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अज संगरूर जिले के पिंड बरड़वाल 47 करोड़ रुपए तो वध दी लागत वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का नींह पत्थर रख्या। कैबिनेट मंत्री महेंद्र भगत ने कहा, सूबे च बागबानी नूं प्रफुल्लित करन ते किसानां नूं बेहतर सहूलतां मुहैया करवाउण लई हाई चॉइस मंग दा हल कीता जाएगा। कपाह दे विश्वव्यापी आर्थिक समाजिक ते चुगिरदे संबंधी महत्व नूं उजागर करन लई अज विश्व कपाह दिवस मनाया जा रहा है। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने 3 गैर कानूनी हथियार सप्लाई नैटवर्क

0: ਹੰਸਰਾ ਚੰਦ ਦੇ ਗਾਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
1: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
2: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4-5 घंटे का वक्त लगता है।
3: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
4: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश, या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

0: है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। जयमाला कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।
1: वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
2: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जानी कीता।
1: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किवें फैलदा है?
2: HIV
1: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, HIV किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जां खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
3: वधेरे जानकारी ले टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
4: एड्स HIV ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
5: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।

0: करना, और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाँच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देव दर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कॉन्स और हवन सामग्री।

0: शहीद फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें उदित नारायण और भूपिंदर सिंह की थी, देव कोहली के बोल थे और आनंद राज आनंद की धुन थी।
1: एक विलक्षण गायक
2: अरे ओरे हे,
1: संगीत के साधक
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की हो।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भाव

0: हैं संगीतकार गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जयमाला। जख्म फिल्म का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक की आवाज में।

जाने कितने दिनों के बाद गली में आ चांद निकला। धूम टू फिल्म जख्म फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज में आनंद बख्शी के ये बोल आपने सुने। एमएम क्रीम का संगीत था धूम टू फिल्म का गीत। अब हम आपको सुनवा रहे हैं, आवाज सुनिधि चौहान की है, बोल समीर ने लिखे हैं, धुन प्रीतम ने बनाई है।

0: सेहत के कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र.
1: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है. हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ प्लस वन. ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व. सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है.
0: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी.
1: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है. उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना.
0: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर.
2: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं?

0: संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कॉन्स और हवन सामग्री।
3: सुबह जलाओ, शाम जलाओ।
4: देव दर्शन धूप।
3: सुबह जलाओ, शाम जलाओ।
4: देव दर्शन धूप।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे का। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम

0: राजा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थीं अलका याग्निक, उदित नारायण की समीर के बोल थे, नदीम श्रवण का संगीत था।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की कहानियां।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: सुनना न भूलें प्रतिदिन सुबह और शाम 6:45 पर विविध भारती का कार्यक्रम संगीत सरिता।
1: वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
2: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जानी कीता।
1: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किवें फैलदा है?
2: HIV
1: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, HIV किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जां खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
3: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
4: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
5: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
4: पहला,

0: शेयर करना, और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाँच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में समीर का लिखा ये गीत इस समय आप सुन रहे हैं। संगीतकार हैं आनंद मिलिंद। फिल्म का नाम है दिल।

आप सुन रहे थे आनंद मिलिंद संगीतकार थे। लीजिए अब सुने राम लखन फिल्म का ये गाना, आवाजें हैं मनहर और अनुराधा की, आनंद बख्शी के बोल हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

राम लखन फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थी मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल और साथियों की। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन थी। इसी गीत के साथ ही आज का जयमाला कार्यक्रम समाप्त करने की सविता सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: लीजिए, सुनिए धनेंद्र कुमार जैन की लिखी झलकी अक्कल के नाथ, निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर।
1: ए मिस्टर, देखकर नहीं चलते?
2: आपने मुझसे कुछ कहा?
1: और नहीं तो क्या किसी दीवार से कह रही हूँ?
2: फरमाइए फरमाइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता?
1: बड़े भोले बनते हो।
2: छी, मैं कुछ समझा नहीं।
1: मैं पूछती हूँ, इस तरह एक शरीफ लड़की के टक्कर मारते शर्म नहीं आती?
2: टक्कर, वो भी मुझसे? वाह वाह, खूब, बहुत खूब।
1: एक तो टक्कर मार दी और ऊपर से मुझे ही बेवकूफ बना रहे हो।
2: देखिए श्रीमती जी, ये आ बैल मुझे मार वाली बात मुझे पसंद नहीं है। आपको वहम हो गया है और वहम की दवा लुकमान हकीम के पास भी नहीं थी। मैं तो मामूली इंसान हूँ।
1: अच्छी खासी छेड़छाड़ को तुम वहम कहते हो?
2: जी हाँ, वहम ही तो है, वरना आजकल के जमाने में बुज जैसा शरीफ लड़का भरा कहाँ मिलता है। यकीन मानिए, अगर चिराग लेकर भी ढूंढेगी ना तो सारी चिराग दिल्ली में नहीं मिलेगा।
1: वाह वाह, अपने ही मुंह मियां मिठू बनते हो। तुम जैसे शरीफ मैंने बहुत देखे।
2: क्यों नहीं, जरूर देखे होंगे, लेकिन मुझ जैसा आज तक नहीं दिखा।
1: मैं देखना भी नहीं चाहती।
2: आप तो मजाक करती हैं। जिंदगी में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो इंसान देखना भी नहीं चाहता, फिर भी देखनी पड़ती हैं। हम मिसाल के तौर पर इसी बात को ले लीजिए ना, आपने तो अनजाने में भूल कर भी नहीं चाहा होगा कि हम और आप दोनों यहाँ इस पार्क में मिले, या हमारी टक्कर हो जाए। लेकिन वाह वाह वाह वाह, नीली छतरी वाला बड़ा दयालु है, सबके मन की बात जानता है।

0: कहाँ लाकर मिलाया है हमें?
1: लातों के भूत बातों से कभी नहीं मानते।
0: छी छी छी, भूतों की बात मत छेड़िए, उनकी तो बात ही निराली होती है। सुना है जिसके पीछे पड़ जाते हैं उम्र भर पीछा नहीं छोड़ते, खास तौर से सुंदर लड़कियां।
1: क्या मुसीबत है, न जाने आज किसका मुंह देखकर घर से निकली थी।
0: याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, और अगर याद आ जाए तो हमेशा याद रखिए। मेरा मतलब है, जब भी घर से बाहर कदम रखना पड़े तो पहले उन्हीं का मुंह देखिएगा। ऐसे ऐसे अवसर की प्राप्ति बार बार होती है।
1: देखिए मिस्टर।
0: दिखाइए मिसेस।
1: क्या कहा, मिसेस?
0: अरे रे, बिगड़ती क्यों है, अपनी अपनी पसंद ही तो है, ये नाम पसंद नहीं। चलिए दूसरा पलटे देता हूं। कहा है, नामों की इस दुनिया में कमी नहीं गालिब, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। अब तो खुश होना,
1: किस अजीब जानवर से पाला पड़ा है।
0: बेचारा बहुत ही वफादार है। यकीन ना हो तो पास रखकर देख लीजिए। जी हाँ, हाथ कंगन को आरसी क्या?
1: मैं कहती हूँ।
0: कहती जाइए। मेरे दोनों कान सरकार की सेवा में ऐसे खड़े हैं
1: जैसे मालिक की बात सुनकर घोड़े या कुत्ते के कान खड़े हो जाते हैं।
0: जी नहीं, ऐसे कि जैसे एक प्रेमी के कान अपनी प्रेमिका की बात सुनकर या उसके आने की आहट सुनकर खड़े हो जाते हैं।
1: एक अनजान लड़की से इस तरह की बातें करते तुम्हें शर्म नहीं आती?
0: शर्म? भाई बहुत खूब, बहुत खूब।
1: क्या साये की तरह मेरे पीछे पड़ गए हो?
0: हाँ, यूं कहिए कि
1: तुम यूं नहीं मानोगे। संतरी जी, संतरी जी।
0: अरे बाप रे, अरे ये आप क्या कर रही हैं? गजब हो जाएगा। संतरी जी को मत बुलाइए वरना बाद में पछताएंगी आप।
1: तुम्हारा दिमाग अभी ठिकाने लगवाती हूँ, देखते जाओ। संतरी जी, संतरी जी।
2: क्या बात है?
1: संतरी जी, ये बदमाश बहुत देर से मेरे पीछे पड़ा हुआ है।
2: क्यों बाबूजी, क्या इरादा है?
0: जी इरादा, इरादा तो नेक है संतरी जी, न जाने लोग क्यों शक करते।
2: साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो?
0: ठीक है ठीक है, ऐसा है, फैसला आप पर ही छोड़ देता हूँ। बात यह है संतरी जी कि मैं विचारों में खोया हुआ इस बेंच की ओर बढ़ रहा था, सामने से मैम साहब आ रही थी। इन्हें देखते ही आंखें चौंधिया गईं और अनजाने में टक्कर लग गई। बस तब से ही मैम साहब पंजे झाड़ के पीछे पड़ी हुई।
1: ये बिल्कुल झूठ है संतरी जी, मैं तो खुद इस बेंच पर बैठना चाहती थी।
0: ओ, तो गोया हम दोनों की मंजिल एक ही थी। मुझे क्या मालूम था कि मंजिल तक पहुंचते पहुंचते हम आपस में टकरा जाएंगे।
3: नहीं संतरी जी, ये लड़की बिल्कुल ठीक कहती है, मैं भी बहुत देर से उस पेड़ के नीचे सांप देख रहा था। ये बदमाश है ना, इस लड़की को बहुत तंग कर रहा है।
0: देखिए देखिए, खुदा के खिदमतगार साहब, आपको तकलीफ उठाने की कतई जरूरत नहीं।
3: कैसे नहीं है साहब, आप एक लड़की को तंग करें और हम खड़े खड़े देखते रहे, कैसे हो सकता है?
0: अगर किस्मत में देख देख कर जलना ही लिखा है आपकी, तो मेरा क्या दोष है इसमें?
3: नहीं संतरी जी, इस बदमाश को तो मजा चखाना ही होगा। हाँ
0: जा, जा।
4: क्या बात है, अरे क्यों भाई ये भीड़ भाड़ कैसी?
3: साहब ये भीड़ लफ तो समझ में आ गया, पर ये भाड़ क्या होता है ये कुछ पल्ले नहीं पड़ा।
4: बड़े मजेदार आदमी जा रहे
3: हैं। जी साहब, वो जमाना गया जब खलील का फाकता उड़ाया करते थे, अब तो बस दिल खुश करने का बहाना ढूंढते हैं। हाँ तो जरा इस लफ्ज पर लाइट डालने की कोशिश।
4: क्यों नहीं, क्यों नहीं। देखिए साहब
3: जी,
4: भीड़ शब्द स्त्रीलिंग है और भाड़ शब्द पुलिंग है, और क्योंकि यहाँ दोनों ही किस्म के लोग मौजूद हैं इसलिए मैंने भीड़ भाड़ का प्रयोग।
3: पंडित जी आप भी काफी घिसे हुए आदमी जान पड़ते हैं।
4: जी साहब, ये तो आपकी जर्रा नवाजी है, वरना बंदा किस काबिल है। अरे मैंने तो आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया, पर आपकी तरफ से जवाब अभी तक नदारद।
3: आजकल का जमाना बड़ा ही नाजुक जमाना है, जरा पैर फिसला नहीं कि धम से खड्ड में गिरे नहीं हो।
4: निसंदेह निसंदेह,
3: अब इन महाशय को ही देखिए, देखने में कितने शरीफ और भोले नजर आ रहे हैं।
4: पर इनकी करतूत
3: देखिए, रास्ते चलते लड़की को छेड़ रहा है।
5: लड़की छेड़ती है साहब, लड़की। हाँ
4: हरे राम, घोर कलयुग, घोर कलयुग, जय सिया राम, जय सिया राम। साहब आजकल की लड़कियां भी तो बस क्या पूछो, अंग्रेजी क्या पढ़ लेती हैं, हवा से बातें करने लगती हैं, जहाँ मर्जी आए घूमती है, जिससे मर्जी आए अटक पड़ती है।
3: ठीक है पंडित जी, परंतु इसका अर्थ ये तो नहीं कि राह चलती लड़की को छेड़ा जाए।
4: कौन कहता है कि मैंने किसी लड़की को

0: है।
1: वाह, सबूत सामने खड़ा है, फिर भी कहते हो कि किसे छेड़ा है।
2: जी में तो आता है कि श्रीमान जी की तबीयत साफ कर दो।
3: ऐसे बदमाश का साथ हमें नहीं चाहिए।
2: नहीं चाहिए ना, बिल्कुल नहीं चाहिए।
1: आप लोग चुप कर जाइए, मेरा तो सर फटा जा रहा है। आज मैं कहाँ फंस गई हूँ। संतरी जी, मैंने आपको बुलाया था मदद के लिए, पर देखती हूँ उल्टे मेरे पर ही मुसीबत आ गई है।
2: अरे साहब, यूँ खड़े खड़े क्या देखते हो? पुलिस तो जब करेगी तब करेगी, पहले हम ही बाबूजी को मजा चखा दे। इधर आओ
4: भाइयों, आप अपनी पॉकेट का जरूर ख्याल रखें। अजी कहीं ऐसा ना हो कि मेहनत तो करूं मैं और माल ले जाए कोई और।
1: लोगों का ध्यान किस खूबी से अपनी करतूत से हटाने की कोशिश की जा रही है।
2: ये जरूर कोई खतरनाक गिरोह से ताल्लुक रखता है।
3: बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसको थाने ले चलना चाहिए। चलिए चलिए, थाने ले चले।
2: संतरी जी, आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? क्यों नहीं इस बदमाश को पकड़ के थाने में ले जाते? आखिर आप है किस मर्ज की दवा?
5: ये तो ठीक है, पर मेरी भी तो कुछ समझ में आए।
1: मैंने कौन सा विदेशी भाषा में कहा आपको जो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा?
2: साहब, इनके बस का कुछ नहीं है। आइए, हम ही इसकी बदमाशी मिनटों में
3: झाड़ दें। झाड़ो झाड़ो जी, झाड़ो झाड़ो। ठहरिए
4: ठहरिए,
3: रुक जा भाई।
4: ऐसी गलती बिल्कुल मत कर बैठिएगा। कानून को अपने हाथ में लेना सख्त जुर्म है।
3: ओहो,
4: हम तो वैसे भी अहिंसा में विश्वास रखते हैं।
1: ये तब नहीं सोचा जब मुझे छेड़ा था। जब देखा बेभाव की पड़ने वाली है तो अहिंसा याद आ गया।
3: लेकिन कानून को हमें अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए।
4: आप लोग सब खामोश क्यों हो गए? देखिए, ऐसा मौका जिंदगी में बार बार नहीं आता जब हर किसी को अपनी अपनी ठपली, अपना अपना राग अलापने का मौका मिले। खैर साहब, नहीं बोलते तो ना सही, ये तो आपकी अपनी मर्जी है। मेरा ख्याल है शायद अब मेरी बारी है।
1: ओफो, कोई बड़ा ही घुटा बदमाश लगता है।
4: अच्छा तो सज्जनो, लगता है आप सब अपना अपना भाषण खत्म कर चुके हैं।
2: हम भाषण दे रहे थे,
4: और अध्यक्ष की हैसियत से सभी का भाषण मैंने बड़े ध्यान पूर्वक सुना। आप लोगों ने जो सर्टिफिकेट दिए वो सब मैंने जेब में डाल लिए। लेकिन मुझे खेद है भाइयों कि महंगाई के चक्कर में पड़कर आप सब लोग अपनी अपनी अक्ल बेचकर खा गए हैं।
2: अक्ल बेचकर क्या करें?
4: ऐसी दशा में बड़े विचार के बाद माँ बदौलत यानी मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि इनाम का हकदार आप लोगों में से कोई भी नहीं।
2: इनाम? जी हाँ,
4: इनाम। और कुछ कहने से पहले मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने मियां और बीवी के इस नाटक को अपना कीमती समय नष्ट करके सुना।
1: मियां बीवी का नाटक?
4: जी हाँ,
3: पट्टी पढ़ा रहा।
4: आप लोगों का बार बार ये हाथ पैर पटकना इस बात का सबूत है कि ये नाटक आपको बहुत पसंद आया।
2: नाटक हमें पसंद आया?
3: कभी नाटक, कभी इनाम, कभी मियां बीवी, ये क्या बात है भाई?
1: नाटक, मियां बीवी, नहीं नहीं, ये सब झूठ है, धोखा है। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई।
2: ये जरूर कोई चालबाज है। पकड़ो इसे,
3: पकड़ो पकड़ो
2: इसे, पकड़ो।
4: शांत भाइयों, जरा सबर से काम लीजिए, जरा सबर से काम लीजिए भाइयों, सब कुछ बता देता हूँ। देखिए, ये है मेरी होने वाली बीबी, मिस जानकी।
1: नाम तो मेरा ही है।
4: जी हाँ, और मैं हूँ इनका होने वाला पति। जी, बाबू अकलनाथ।
1: अकलनाथ?
4: जी हाँ, बाबू अकलनाथ बल सेठ बुद्धिनाथ।
1: ये झूठ है, ये धोखा है। मेरे होने वाले पति का नाम तो शेखर है, ये जरूर कोई चालबाज है।
4: भाइयों, इसमें ना कोई धोखा है ना कोई चालबाजी है।
3: भाई ये घबरा क्या है?
2: कागज की नाव ज्यादा देर तक नहीं बहती। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हुआ जाता है। कह रहे संतरी जी, ले चले इसे थाने में, हम सब गवाही देंगे।
5: अरे ये सब कहने की बातें हैं, मौका आने पर सब पीछे हट जाओगे, समझे?
6: आप जरा रास्ता तो दीजिए जनाब।
2: आप भी आगे जाकर कौन सा तीर मार लेंगे?
6: अरे साहब, जरा आगे निकलने तो दीजिए, हम भी तो देखें ये भीड़ कैसी लगी है।
2: लीजिए साहब, आप नहीं मानते तो चलिए चलिए, आप मारिए तीरा।
6: अरे बेटी, तुम और यहाँ?
1: पिताजी,
6: मर्दों की भीड़ में तुम यहाँ क्या कर रही थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढता फिर रहा हूँ।
1: पिताजी,
3: ये बेचारी क्या बताएगी? हम बताते हैं, ये जो महाशय खड़े हैं ना, ये
6: कौन?
3: अरे ये जो आदमी शरीर

0: ज्यादा पीट पीट किया खड़े इधर को
1: देखो ये नीली बुशर्ट वाला
0: जी हाँ, इसी ने तुम्हारी लड़की को छेड़ा है।
1: क्या ये सच है?
2: हाँ पिताजी।
1: तो तुमने इसे कुछ कहा नहीं?
2: हाँ, पहले तो मैंने इसे डांटा, उस पर भी जब ये उल्टे मेरा ही बेवकूफ बनाने लगा तो मैंने सिपाही को आवाज लगा दी।
3: और तब से ये हजरत कभी अपने आप को इसका पति बनाते हैं, कभी मियां बीवी का नाटक बनाते हैं, कभी कुछ आप बड़ी बड़ी कहानियां सुना रहे हैं।
1: और आप लोगों में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा? जरा दो चार हाथ टिका देते तो दिमाग का ढीला पुर्जा एकदम कस गया होता
4: है। साहब तब से महज बातें ही बातें हो रही है लेकिन नतीजा जीरो का जीरो। अभी हट जाइए, मैं अभी इसे अभी ठीक किए।
3: पंडित जी वाह, तब से तो चुपचाप तमाशा देख रहे थे, आप बनाते उबाल खा रहे हैं।
1: जी आप क्या करेंगे, देखते जाइए, मैंने अच्छे अच्छों को सीधा कर दिया है। चौबे
5: नमस्ते पिताजी।
1: क्या क्या तुम?
6: अरे अरे अरे बेटी, ये शेखर बाबू है। शेखर बाबू?
2: शेखर बाबू?
6: हाँ बेटी, तुम नहीं जानती ने? अरे हाँ तुम जानती भी कैसे, ये तुम्हारे मंगेतर है। मंगेतर?
5: मंगेतर के साथ खुलेआम छेड़छाड़ कर रहे हैं।
6: जो बेटे तुमने ये क्या किया?
5: जी पिताजी, वो मैंने तो दरअसल ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मैंने इन्हें देखा पिताजी, तस्वीर देखी हुई थी, बस पहचान गया, परिचय के ख्याल से छेड़छाड़ कर बैठा पिताजी। नौबत तो भीड़ तक आ पहुंची।
7: चलो भाई, चलो चलो, भीड़ छाट रहे।
8: बाबू जी आपने तो कमाल ही कर दिया, हम मंगेतर के साथ नाटक खेल रहे थे।
5: सचमुच ही अकल के नाथ निकले।
8: अकल के नाथ कमाल हो गया, इसकी गंगा बह गई।
9: अकल के नाथ, अभी आपने ये झलकी सुनी। लेखक थे धनेंद्र कुमार जैन और निर्देशक थे गंगा प्रसाद माथुर। विविध भारती की ये प्रस्तुति थी। हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਐਫ ਐਮ 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸੁਣੋ ਸਪੌਂਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮ ਟੂ ਸਿਟੀ।

0: इस प्रोग्राम दे प्रायोजक ने खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्रालय भारत सरकार
1: किसान वीरो चंगी फसल दी नी है तंदुरुस्त मिट्टी की तुसी जानदे हो कि तुहाडी मिट्टी विच केड़े पोषक तत कट जां वधन मिट्टी सेहत कार्ड राही अपनी खेत दी मिट्टी दी जांच करवाओ अते जानो कि केड़ी खाद किन्नी मात्रा विच अते कदों वर्तनी है इस नाल खाद दी बचत मिट्टी दी उपजाऊ शक्ति विच सुधार अते फसल दी उत्पादकता वधाउन विच मदद मिलदी है तां आओ मिट्टी दी जांच करवाइए संतुलित खाद वरतिए अते टिकाऊ खेती वल वधिए मिट्टी बचाओ उपज वधाओ खेतीबाड़ी अते किसान भलाई मंत्रालय भारत सरकार
2: प्यार भरी सत श्री अकाल किसान वीरों ते भैणों मैं तुहाडा दोस्त बिपन सुमन प्रोग्राम फार्म टू सिटी लैके हाजिर हाँ पंजाब की धरती सिर्फ अन्न पैदा करने वाली धरती नहीं सगों ये मेहनत उद्यम अते संभावनावां दी धरती है अज समय की लोड़ है कि असी अपनी खेती नूं सिर्फ फसल उत्पादन तक सीमित ना रखिए बल्कि खेतीबाड़ी नाल जुड़े उत्पादों की प्रोसैसिंग वैल्यू एडिशन अते मार्केटिंग राही किसानों की आमदन विच वाधा करिए इस गलबात नूं मुख रखते हुए अज दे साडे इस प्रोग्राम का विषय है खेती आधारित उत्पाद किसानां दी आमदन वधाउण दा साधन इस विषय बारे सानू जानकारी देण दे लई साडे विचकार मौजूद ने साडे अज दे विशेष माहर डॉक्टर अर्शदीप सिंह जी जो कि एक्सटेंशन साइंटिस्ट ने फूड टेक्नोलॉजी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना विखे डॉक्टर अर्शदीप सिंह जी खेतीबाड़ी आधारित उत्पादों की प्रोसैसिंग फूड टैक्नोलॉजी और वैल्यू एडिशन नाल संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साडे नाल सांझी करनगे ते इह वी दसणगे कि किस तरह किसान अपनी पैदावार विच मुल्ल वधा

0: कर सकते हैं, कैचअप तैयार कर सकते हैं जिहड़ी आने वाले समय के होटल इंडस्ट्री रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के बहुत मंग होंगी है, क्योंकि उन्होंने सीधा टमाटर नहीं वरतना
1: जी।
0: टमाटर की प्यूरी ही हर चीज़ के वरती जाती है। उस तरह ही जो कणक नूं आपां प्रोसैस करके उहदे तों आटा पैक करके रख रहे हैं वह आ जाता, दलिया पैक करके रख रहे वह आ जाता, तेल बीजां तों आपां चीज़ां बना के रख रहे हैं, फलां सब्जियां नूं सुका के आपां लंबे समय तक रख सकते हैं ताकि लोड़ पैण ते जो मार्केट च उन्हां दी मंग हैगी आपां नूं वधिया मुल ते वेच सकते होईए
1: जी। समा हो गया जी एक म्यूजिकल ब्रेक दा। किसान वीरों ते भैणों तुसीं सुन रहे हो प्रोग्राम फार्म टू सिटी।

0: किसान वीरो आओ अजाई खेती अपनाइए जो मिट्टी पानी अते वातावरण दी संभाल भी करे
1: कुदरती खेती विच स्थानक स्रोतां जैविक कोला अते कुदरती तरीकयां दी वरतों नाल मिट्टी दी उपजाऊ शक्ति नूं बरकरार रखण अते लागत घटाउण विच मदद मिलदी है
0: सेहतमंद मिट्टी संतुलित वातावरण अते टिकाऊ खेती यही है

0: ਲਈ ਨਮਸਕਾਰ ਜੈ ਹਿੰਦ।
1: ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਯੋਜਕ ਸਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ।
2: किसान वीरो इकट्ठी ताकत नाल वद्दी है किसान दी ताकत। 10,000 किसान उत्पादक संगठन FPO योजना दा उद्देश किसानां नू इकट्ठा करके उना दी खरीदो फरोखत दी ताकत नू वधाउणा, लागत नू घटाउणा अते बाजार तक बेहतर पहुंच बनाउणा है। FPO नाल जुड़ के किसान बीज खाद अते होर खेती इनपुट सांझे तौर ते खरीद सकते हन अते अपनी उपज नू इकट्ठा मार्केट कर सकते हन। आओ इकट्ठे होइए, संगठित होइए अते अपनी आमदन नू वधाउण वल कदम वधाइए। खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्रालय भारत सरकार।

0: ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਸਪੋਂਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮ ਟੂ ਸਿਟੀ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना अवश्य पूरा करेगा। उन्होंने सरकार प्रमुख के रूप में लगातार 25 वर्षों की जन सेवा पूरी की। भारत ने कालासागर क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की है। कहा, भारत रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए दोनों देशों से बातचीत कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान देने की भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 वर्षों में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि करके इसे 5.5% कर दिया। चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर 7.1% रहने का अनुमान। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केन्सो सुआई को देने की घोषणा की। और पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और भाविना पटेल एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जन सेवा पूरी की। श्री मोदी ने सुबह नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
3: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य। हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
2: श्री मोदी ने कहा कि पहले आयात बढ़ाने के प्रयास किए जाते थे, जबकि आज भारत निर्यात के नए रिकॉर्ड बना रहा है।
3: भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती, पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती है। तब इंपोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तब हम अपनी जरूरत के मोबाइल फोन भी इंपोर्ट करते थे और आज मेड इन

0: स्मार्टफोन का जलवा है, तब पूरे भारत में ब्लैकआउट ये ग्लोबल हेडलाइन बनती थी और आज भारत की सोलर पावर कैपेसिटी के चर्चे होते हैं।
1: जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्ष की जनसेवा पूरी करने पर बधाई दी।
2: जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची ने भारत के विकास और वैश्विक स्तर पर बढ़ती पहचान में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने श्री मोदी को हमारे समय का अवतार बताया और कहा कि उन्होंने भारतीयों में अधिक आत्मविश्वास और गर्व की भावना जगाई है। नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने श्री मोदी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने भी श्री मोदी को बधाई दी है और भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया और लोकतंत्र में लगातार 25 वर्ष के नेतृत्व को एक दुर्लभ उपलब्धि करार दिया। बोत्सवाना के राष्ट्रपति डुमा बोको ने भी श्री मोदी को बधाई देते हुए भारत के लोगों के प्रति उनके समर्पण और सेवा की सराहना की और दोनों देशों के बीच स्थायी मित्रता की उम्मीद की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में अपने 25 वर्ष पूरे होने पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन इस माह 7 से 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। ये आयोजन सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। IMC 2026 का विषय सीमाओं के बिना विस्तार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 से पहले नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में वैश्विक मोबाइल संचार प्रणाली संगठन GSMA के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने विकासशील देशों के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी के लिए शांति और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए मुक्त, खुले और नियम आधारित वैश्विक समुद्री व्यवस्था का आह्वान किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित सागर मंथन द ग्रेट ओशंस डायलॉग के लिए अपने संदेश में ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता लाल कृष्ण आडवाणी से उनके आवास पर मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने पिछले एक दो दिनों में काला सागर क्षेत्र में हुए वाणिज्यिक जहाजों पर सिलसिलेवार हमलों की निंदा की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस तरह के हमले वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन के लिए गंभीर खतरा हैं और नाविकों की जान जोखिम में डालते हैं।
2: कल से लेकर आज तक हमने देखा है कि 4 जहाजों पर अटैक हुई है। इस हमले की हम घोर निंदा करते हैं। इससे हमारे जो वाणिज्य की नौ परिवहन है, साथ में जो हमारे नाविक समुदाय के लोग हैं, उनको खतरे के दायरे में लाया जा रहा है। पहला जहाज MV रायोद मामादोव, ये भी ब्लैक सी में इस पर अटैक हुई, जिसमें 3 भारतीय नागरिक थे। उसमें से 1 भारतीय नागरिक को चोट पहुंची और उनको वहां पर अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है।
1: रूस यूक्रेन संघर्ष पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने लगातार लंबे समय से चल रहे युद्ध को समाप्त करने की वकालत की है और शांति को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों में रूस और यूक्रेन दोनों के साथ बातचीत की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय आ गया है। प्रवक्ता ने कहा कि दोनों पक्षों के साथ भारत की बातचीत की रूस और यूक्रेन दोनों ने सराहना की है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान देने की भारत की तत्परता के लिए

0: आभार व्यक्त किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस इस संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सुझाव देने की भारत की तत्परता की सराहना करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के सिर दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहलों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को हकीकत में बदला गया है।
1: भारत और फ्रांस ने नवंबर 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 जलवायु सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की थी। यह एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर ऊर्जा की पहुंच, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के शुभारंभ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस गठबंधन का उद्देश्य सौर ऊर्जा को सस्ता, भरोसेमंद और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध कराना है।
2: Is so important. We want to bring solar energy into our lives and homes by making it cheaper, more reliable, and easier to connect to grid. We will collaborate on research and innovation. We will share knowledge and exchange best practices. We will cooperate on training. We will partner with other international initiatives on renewable energy.
1: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक आशीष खन्ना ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि ISA प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच और भारत की वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने की क्षमता को दर्शाता है।
3: माननीय प्रधानमंत्री ने 2018 में स्थापना दिवस पर 1000 गीगावाट का जो लक्ष्य रखा था, अगर हम 2026 में देखें जब दुनिया 3000 गीगावाट कर चुकी है, तो उनकी दूरदर्शिता सही मायने में दिखलाता है।
1: आज अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच बन चुका है। वर्तमान में 129 देश इसके सदस्य के रूप में पंजीकृत हैं। भारत के नेतृत्व में ISA का उद्देश्य लोगों तक ऊर्जा की पहुंच को बेहतर बनाने के साथ साथ दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन को काफी कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही रेपो दर बढ़कर 5.5% हो गई है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी।
4: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions,
5: बदलते आर्थिक तथा वित्तीय हालात, हाल के घटनाक्रमों और भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा के बाद मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से प्रमुख नीतिगत रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर 5.25%, जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर और बैंक दर 5.75% कर दिए गए हैं।
4: एंड द बैंक रेट टू 5.75%।
0: भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है और इसे अनुसूचित बैंकों की सूची से हटा दिया है। RBI ने कहा है कि इस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया गया है। भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA समृद्धि शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन में व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग पर चर्चा के लिए वरिष्ठ भारतीय और EFTA के अधिकारियों, उद्योगपतियों और उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केंसो सोआई को देने की घोषणा की गई है। एक रिपोर्ट।
6: स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने उन्हें असममित कार्बनिक संश्लेषण में नॉन लीनियर प्रभावों और ऑटो कैटेलिसिस की खोज के लिए ये सम्मान देने की घोषणा की है। उन्होंने रसायन विज्ञान में दर्पण प्रतिबिंब चुनने की प्रक्रिया पर काम किया। दोनों वैज्ञानिकों ने रसायन विज्ञान

0: की करीब 100 वर्ष पुरानी गुत्थी सुलझाई है। उन्होंने बताया कि किसी रासायनिक प्रक्रिया में एक दूसरे का प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब जैसे दो अणुओं में से सिर्फ एक ही के रूप कैसे बनाया जा सकता है। ये खोज दवाओं सहित कई तरह से रसायन बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रमोद भगत और भाविना पटेल भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। ये खेल 18 से 24 अक्टूबर तक जापान के आईची नागोया में आयोजित किए जाएंगे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना अवश्य पूरा करेगा। उन्होंने सरकार प्रमुख के रूप में लगातार 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। भारत ने काला सागर क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की, कहा भारत रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए दोनों देशों से बातचीत कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान के लिए भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केन्सो सुवाई को देने की घोषणा की है। और पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और भाविना पटेल एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में होंगे भारतीय दल के ध्वजवाहक। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। आप सभी को नमस्कार। सविता सिंह का

कोई प्यार की देखे जादूगरी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में कोहिनूर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा था और नौशाद ने इस गीत की धुन बनाई थी। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में अनारकली फिल्म का ये गीत, हसरत जयपुरी की बोल, सी रामचंद्र की धुन।

0: दीवानापन है,
1: ये मेरा दीवानापन है। यहूदी फिल्म का गीत मुकेश की आवाज में। अभी आप सुन रहे थे, शब्दकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे शंकर जयकिशन।
2: एक विलक्षण गायक।
3: अरे ओरे है।
2: संगीत के साधक।
3: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
2: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
3: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ प्लस वन। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
2: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
3: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
2: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे थे नूरजहां फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, शकील बदायूनी के बोल थे रोशन का संगीत था। इस गाने के पहले आपने सुना था मुगले आजम फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज थी, शकील बदायूनी के बोल थे और नौशाद की तर्ज थी। अब आइए सुनते हैं 20 साल बाद

0: तेरी मन पे जादू की छड़ी जुगनी संग आंख लड़ी रे।
1: मधुमती फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों सखियों की आवाजों में। शब्दकार थे शैलेंद्र, संगीतकार थे सलील चौधरी। इसी गीत के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दीजिए सविता सिंह को। नमस्कार।
2: वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
3: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जानी कीता।
2: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किवें फैलदा है?
3: HIV
2: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, HIV किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जां खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
4: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
5: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
6: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य

0: करना और चौथा है एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, एचआईवी एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाँच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं एचआईवी टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को एचआईवी एड्स फ्री बनाएं। एचआईवी एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
3: आज के फनकार।

जबकि संगीत तकरीबन चोर में बदलता जा रहा है। गजलों का वो सुनहरा दौर, गजलों की वो रोशन महफिलें बार बार याद आती हैं। हमारे जहन में अक्सर ये सवाल उठता है, वो शम्मा क्यों मद्धम पड़ गई।

दरअसल ये जमाना तेज रफ्तार हो गया, लोगों के भीतर वो सब्र नहीं रहा जो गजल सुनने के लिए लाजमी है। आइए आज के इन लम्हों को यादगार बना दें अख्तरी बाई फैजाबादी यानी बेगम अख्तर की याद।

0: जो हम।
1: अख्तरी भाई फैजाबादी का जन्म 7 अक्टूबर 1914 को फैजाबाद में हुआ था। बचपन से संगीत की तरफ रुझान था, परिवार इसके खिलाफ था, लेकिन चाचा ने साथ दिया। बेगम अख्तर ने फैजाबाद में सरंगी के उस्ताद ईमान खां और अता मोहम्मद खां से संगीत की शुरुआती तालीम ली। इसके बाद उन्होंने मोहम्मद खान और अब्दुल वहीद खान से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखा। बचपन की एक बहुत ही यादगार घटना है, उन दिनों अख्तरी बाई सही सुर नहीं लगा पाती थी। उनके गुरु ने इसके बारे में कई बार सिखाया और जब वो सीख नहीं पाई तो डांट दिया। उसके बाद बेगम अख्तर रोने लगी और कहा, हमसे नहीं बनता नाना जी, मैं गाना नहीं सीख पाऊंगी। तब उनके उस्ताद ने कहा, बिटिया इतने में हार मान लिए? नहीं बिट्टू, ऐसे हिम्मत नहीं हारते मेरी बहादुर बिटिया, चलो एक बार फिर से सुर लगाने में जुट जाओ। उनकी ये बात सुनकर बेगम अख्तर ने रियाज शुरू किया और सही सुर लगाए।

के दशक में जब बोलती फिल्मों का दौर आया तो बेगम अख्तर के सामने कोलकाता की ईस्ट इंडिया फिल्म कंपनी ने अपनी फिल्मों में अभिनय की पेशकश की। इस तरह सन 1933 में बेगम अख्तर ने एक दिन का बादशाह, नल दमयंती जैसी फिल्मों में काम किया। इसके बाद मशहूर निर्देशक महबूब खान ने उन्हें सन 1942 में आई अपनी फिल्म रोटी की नायिका बनाया। इस फिल्म में चंद्रमोहन और शेख मुख्तार जैसे कलाकार थे। इस फिल्म का संगीत अनिल बिस्वास ने दिया था और फिल्म के तकरीबन 6 गीत बेगम अख्तर की आवाज में रिकॉर्ड किए गए।

सन 1945 में जब बेगम अख्तर की शोहरत अपने शबाब पर थी, तब उन्होंने इश्तियाक अहमद अब्बासी से निकाह कर लिया और अख्तरी बाई फैजाबादी बेगम अख्तर बन गई। वो गायकी छोड़कर पर्दा नशी हो गई। उन दिनों में वो बीमार रहने लगी। डॉक्टरों ने बताया कि बीमारी की एक वजह ये है कि वो अपने पहले प्यार यानी गायकी से दूर हैं और उनके शौहर ने उन्हें प्रेरित किया। सन 1949 में एक बार फिर वो गायकी की दुनिया में लौटी और आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से गाना गाने लगी।

रेडियो में गाना शुरू हुआ तो बेगम अख्तर संगीत सम्मेलनों में जाने लगी। इस बीच फिल्मों में भी वापसी हुई। महान संगीतकार मदन मोहन के कहने पर बेगम अख्तर ने 1953 में प्रदर्शित फिल्म दाना पानी का एक गाना गाया।

सन 1954 में उन्होंने फिल्म एहसान का एक गाना गाया। सन 1958 में सत्यजीत रे की फिल्म जलसा घर में भी

बेगम अख्तर मदन मोहन को तब से जानती थी जब वो लखनऊ रेडियो स्टेशन पर थे। बेगम अख्तर दिल्ली आई हुई थी और उन्होंने रेडियो पर मदन मोहन का एक गाना सुना। फिर आधी रात को बेगम अख्तर ने मदन मोहन को फोन किया और कहा कि वही गाना सुनाओ, कदर जानी ना। मदन मोहन ने फोन पर ही गजलों की रानी बेगम अख्तर को यह गाना सुनाया और करीब 22 मिनट तक मदन मोहन फोन पर ट्रंक कॉल के जमाने में बार बार ये गाना सुनवाते रहे और बेगम अख्तर सुनती रही।

0: बेगम अख्तर की सबसे बड़ी खासियत है उनका क्लासिकी गजलों को गाना और क्लासिकी अंदाज में गाना। गजलों की शुद्ध दुनिया को उन्होंने बिल्कुल वैसा का वैसा रखा, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की, नए साजों का कोई इस्तेमाल नहीं किया। बेगम अख्तर गजलों की दुनिया की एक क्लासिकी आवाज के तौर पर हमेशा बहुत इज्जत के साथ याद की जाती है।
1: बदलते हुए जमाने ने जहां हर चीज को कुछ नयापन दिया, वहां मौसीकी ने भी नई कदरों की कद्र की है। मैं नयापन की मुखालिफ नहीं, लेकिन ये नयापन वहीं तक मुनासिब है जहां तक आज के फनकार और मौसीकार नयापन के चक्कर में तहजीब का दामन न छोड़ें। गजलें पहले भी गाई जाती थीं, आज भी गाई जाती हैं, मगर असल में गजल वही कहलाने की मुस्तहक है जिसमें गजल का रवायती अंदाज मौजूद हो। मिसाल के तौर पर गजल की ये बंदिश सुनिए जो मुझे बहुत पसंद है।

0: भारत सरकार ने बेगम अख्तर को सन 1968 में पद्मश्री से सम्मानित किया। सन 1972 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिला और सन 1975 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
1: गजल में एक ऐसी कैफियत है और अच्छे शोरा की गजलों में तो सुभान अल्लाह सुभान, अरे सुन के तबीयत खुश हो जाती है। तो बताइए ये सिर्फ पढ़ के जो लुत्फ आता है और गाने के बाद इसमें क्या लुत्फ पैदा होगा कि अगर वो उस अंदाज से गाई जाए जिस तरह गजल गाया करते थे, तो मेरा ख्याल है कि इंसान बगैर रोए तो नहीं उठना चाहिए उसको।

बेगम अख्तर की आवाज का जादू अपने शबाब पर था। उन्होंने गजलों की दुनिया को रोशन कर रखा था, पर तभी 30 अक्टूबर 1974 को अचानक उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। गजलों की दुनिया की एक शम्मा हमेशा के लिए बुझ गई, लेकिन शुक्रगुजार हैं उन रिकॉर्ड्स का जिनके जरिए बेगम अख्तर की आवाज को हमने संजो कर रखा।

ये था बेगम अख्तर की याद में हमारा विशेष कार्यक्रम। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी।

0: विविध भारती देश की सुरीली धड़कन छायागीत कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।
1: वही मोनो, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
2: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जानी कीता।
1: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, एचआईवी किवें फैलदा है?
2: एचआईवी
1: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, एचआईवी किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जां खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं एचआईवी दी बीमारी हो सकदी है।
3: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
4: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

सामिन, कुछ रिश्ते जैसे जन्म जन्मांतर के लगते हैं, क्योंकि ये रिश्ते केवल इस जीवन के नहीं होते, सात जन्मों से साथ हैं जैसे यूं लगता है कभी कभी। हालांकि प्यार सिर्फ साथ होने का नाम नहीं है, पर प्यार में लगता है कि हम हर पल साथ रहें, एक दूसरे में खोए खोए से, एक दूसरे में गुथे हुए से, क्योंकि ये प्यार सिर्फ प्यार नहीं, आदत भी नहीं, रूह का एक हिस्सा बन

0: मैंने उस दिन पहली बार अपने भीतर उतर कर देखा, वहां मैं थी और वो था। उसने मेरी आंखों में झांक कर कहा था, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। उसने कहा था, तुम्हारा चेहरा चांद जैसा नहीं है, पर तुम एक प्यार से लिखी हुई किताब हो जिसे मैं पढ़ना चाहता हूँ। तुम जैसी हो तुम वैसी ही पूरी हो। कहते कहते उसकी आंखें शरारती हो गई थी।
1: रूप तेरा मस्ताना प्यार।

0: मुस्ताना।
1: मैं चाहती थी कि कोई मेरे जज्बात को बिना बोले समझे। फिर तुम मिल गए। साधारण सा प्यार भी असाधारण हो जाता है तुम्हारे साथ जैसे। न कोई बड़े सपने, न दीवानगी, न झूठा रोमांस। तुम्हारा प्यार किसी फिल्मी डायलॉग से शुरू नहीं होता, वो तो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। पर हाँ, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरी आंखों में झांक कर शरारती अंदाज में कुछ कह जाते हो। कुछ कह जाते हो।

इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर कोई थोड़ा सा भी थाम ले तो मन थिरकने लगता है, जिंदगी खुशगवार हो जाती है तब। हाँ, छोड़कर चले जाना तो आसान है, लेकिन थामे रहना, जैसे तुमने थामा मुझे। सैकड़ों को प्यार करने की जरूरत नहीं होती, तुम्हीं ने तो कहा था बस एक को 100 तरीके से प्यार किया जाए वही काफी है। प्रेम की जरूरत होती है सच्चाई, विश्वास और धैर्य। जरा थाम कर तो देखिए किसी को, कभी किसी तरह।

उसका यूं गले लगाना एक अजीब सुंदर सा एहसास है। वो थोड़ा सा स्पर्श, वो थोड़ी सी करीबी, अहा, एक आवेग नहीं, पल भर की शांति है वहां जैसे। उसका वो आलिंगन एक विश्वास देता है मेरे मन को। उसकी बाहों की खामोशी मेरी टूटन को जोड़ देती है। उसका यूं गले लगाना जैसे दिल की गहराइयों में पना देता है मेरे समूचे अस्तित्व को।

सिर्फ एक अनुभव नहीं, प्रेम साथ रहने का नाम भी नहीं, ये तो एक रूपांतरण है। हाँ, एक रूपांतरण। तपिश है, नरमाहट है, गर्माहट है, विश्वास है, प्राण वायु है। ये तो उसका प्रेम सर्दियों में सुबह की सूरज की गर्मी जैसा है। उसका चाहना गर्मी की तपन से दूर एक ठंडक का एहसास देता है। कभी कभी ये प्रेम बसंत में हवा की हल्की सी सरसराहट जैसा लगता है, और कभी कभी वो प्रेम सितार की मधुर तान जैसा बन जाता है। प्रेम की वो गर्माहट, वो तपिश, आह कितना सुकून है इस प्रेम में।

0: और अब छायागीत कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: होना और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाँच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: दिलों सुनो पंजाबी की तरह सजा प्रोग्राम सुरसांझ।

0: एड्स, एचआईवी, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
1: एचआईवी एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं एचआईवी एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
0: पहला,

0: और चौथा है एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, एचआईवी एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाँच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं एचआईवी टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को एचआईवी एड्स फ्री बनाएं। एचआईवी एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे,
3: SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

0: ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਲਕਾ ਯਗਨਿਕ ਦੇ ਗਾਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰ ਸਾਂਝ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਐਫਐਮ 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ 'ਤੇ। 11 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਰਿਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। श्री मोदी ने सुबह नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
2: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य। हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
1: श्री मोदी ने कहा कि पहले आयात बढ़ाने के प्रयास किए जाते थे, जबकि आज भारत निर्यात के नए रिकॉर्ड बना रहा है। जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्ष की जनसेवा पूरी करने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में अपने 25 वर्ष पूरे होने पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन 7 से 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। ये आयोजन सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। IMC 2026 का विषय सीमाओं के बिना विस्तार है। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाले इस बैठक में GST विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही रेपो दर बढ़कर 5.5% हो गया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी। सरकार ने कहा है कि देश में प्याज की उपलब्धता बेहतर हुई है और इसकी कीमतों में भी कमी आ रही है। उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार इस साल खरीफ प्याज की खेती बढ़ी है, फसल की स्थिति अच्छी है और मंडियों में प्याज की आवक भी बढ़ रही है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान से नई खरीफ प्याज की आवक शुरू हो गई है। आने वाले हफ्तों में इन राज्यों से आवक और बढ़ने की उम्मीद है। इससे त्योहारी मौसम में बाजार में प्याज की उपलब्धता बेहतर होगी। भारत ने पिछले 1-2 दिनों में काला सागर क्षेत्र में हुए वाणिज्यिक जहाजों पर सिलसिलेवार हमलों की निंदा की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस तरह के हमले वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन के लिए गंभीर खतरा है और नाविकों की जान जोखिम में डालते हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने लगातार लंबे समय से चल रहे युद्ध को समाप्त करने की वकालत की है और शांति को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों में रूस और यूक्रेन दोनों के साथ बातचीत की है। कनाडा के प्रधानमंत्री के वरिष्ठ राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सलाहकार डेविड मॉरिसन का भारत दौरा आज समाप्त हो गया। डेविड मॉरिसन 3 दिन के भारत दौरे पर थे। वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के निमंत्रण पर भारत आए थे। विदेश मंत्रालय के अनुसार नई दिल्ली में हुई बैठक दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर पर चल

0: सही द्विपक्षीय सुरक्षा वार्ता के अंतर्गत आयोजित की गई। एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रमोद भगत और भाविना पटेल भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। ये खेल 18 से 24 अक्टूबर तक जापान के आईची नागोया में आयोजित होंगे। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद ने 2014 से 2023 के बीच एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण और 4 कांस्य सहित 6 पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਫ ਐਮ 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ 'ਤੇ 11:05 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸਭਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 5:55 'ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੈ
0: ਹਿੰਦ ਅਜਿਤ ਡੋਭਾਲ ਕੇ ਨਿਮੰਤਰਣ ਪਰ ਭਾਰਤ ਆਏ ਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਈ ਦਿੱਲੀ ਮੇਂ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੋਨੋ ਦੇਸ਼ੋ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਤਰ ਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦਵਿਪੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਰਤਾ ਕੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀ ਗਈ। एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रमोद भगत और भाविना पटेल भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। ये खेल 18 से 24 अक्टूबर तक जापान के आईची नागोया में आयोजित होंगे। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद ने 2014 से 2023 के बीच एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण और 4 कांस्य सहित 6 पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਫ ਐਮ 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ 'ਤੇ 11:05 ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸਭਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 5:55 'ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੈ ਹਿੰਦ।